ये आकाशवाणी उदयपुर है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 मई 2026। सवेरे के 5:57 होने को है। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमरीका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिन कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केन्द्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना

अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा।

0: बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी उदयपुर, सवेरे के 6:05। आइए करते हैं प्रभु की स्तुति कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अभी तो आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना

भक्ति का मौलिक सूत्र यही है कि हमारी पुकार परमात्मा को ले आती है। एक बार हृदय से पुकारो तो आसन, योग, श्रवण, मनन किसी की जरूरत नहीं। केवल भाव करो, प्रेम से पुकारो तो ईश्वर जरूर आता है।

ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 6:35 हुए हैं। आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे आज प्रसारित और रिले होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों से।

सवेरे 6:40 पर, यानी कि अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:50 पर खेती में आज कार्यक्रम आप हमारे केंद्र से सुनेंगे। 7 बजे सदाबहार नगमे होंगे। 7:45 पर सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर का वक्त रहेगा 8:30 पर, जिसमें आज गर्मियों की छुट्टी और दादा दादी नानी के यहाँ बिताए पल और प्रमुख स्थानीय खबरें होंगी। साथ ही साथ आईपीएल अपडेट आपको देंगे। कठपुतली कला और मनोरंजन पर होगी बातचीत, और साथ ही साथ मनोरंजन जानकारी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की लोकप्रियता पर देंगे। जानकारी में हम नई शिक्षा नीति और पारंपरिक शिक्षा की तुलना विषय पर प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा से बातचीत करवाएंगे गजेंद्र सिंह राठौड़ की।

सवेरे 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, 10 बजे शीर्षक गीत, 11 बजे शास्त्रीय संगीत और 11:30 पर सुगम संगीत। 12:30 पर फिल्म म्यूजिक होगा और 1:05 पर महिला बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी।

दोपहर 2:30 पर कृषि जगत होगा, जिसमें किसान की बात होगी महिला किसान की बदली भूमिका पर, साथ ही साथ राजस्थानी लोकगीत भी आप सुनेंगे। शाम 5 बजे आप सुनेंगे युववाणी, युवा श्रोताओं का प्रोग्राम, शहर की बात होगी, आज का युवा विषय पर बातचीत होगी, मेगा प्रोजेक्ट्स पर बात होगी, साथ ही साथ आज के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। शाम 6:05 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत 6:30 तक, और 6:40 पर जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से, 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार होंगे, और 7 बजे खेती और घर

खेती और घर में आप सुनेंगे चौपाल की बात, महिला स्वयं सहायता समूह, राजस्थानी लोकगीत आपको सुनवाएंगे, मौसम की जानकारी आपको देंगे, साथ ही साथ योजनाओं पे बात होगी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। 8 बजे फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुनेंगे, साथ ही साथ 9:15 पर सुगम संगीत और रात 9:30 पर अखिल भारतीय संस्कृति पत्रिका कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

तो ये थे प्रोग्राम हमारे केंद्र से आज रिले होने वाले और बजने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 6:40 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीत सतीश भाटिया का।

शिवजी का धनुष कठोर है, उसे सुकुमार श्रीराम किस प्रकार तोड़ पाएंगे। उधर पिता का अटल प्रण। पुष्प वाटिका में गौरी पूजन को जाती सीता मन ही मन विलाप करने लगी, किंतु भगवान के प्रताप का स्मरण होते ही उनके हृदय में हर्ष का संचार हुआ और वो जगत जननी के पूजन में लीन हो गईं। भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली हे देवी, आपकी सेवा करने से चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। गौरी की प्रतिमा मानो सीता जी की विनय और प्रेम के वशीभूत हो गई। गले में झूलती माला खिसक आई और प्रतिमा मुस्कुराती हुई जान पड़ी। लगा कह रही हो, हे सीते, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नारद जी का वचन पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें अवश्य मिलेगा।

राम राम किसान भाइया, राम राम। खेती में आज कार्यक्रम सुनो वाला सगला किसान भाई ने पेमा भाई रो राम राम। देखो सा किसान भाइया, अपना कार्यक्रम मी टेम वी और मो आयो आपने घनी सारी जानकारी देवार वास्ते। तो देखो सा, आज अपना कार्यक्रम रा महीने जानकारी देवा कि खेती रा महीने आपी गहरी जुताई गर्मी का मौसम में क्यों करना चाहवा और कितर करना चाहवा। तो बात यह है कि बाणो चल रही है गर्मी री टेम और ई टेम पे मतलब मानो मई रो महीनो है और तावड़ो जो है तगड़ो पड़ रो है और गर्मी जो वत्ती पड़ रही है। तो खेतारा महीने खाली पड़ा देखा जो खेत है जमीन है वन की गहरी जुताई आपी करना चाहवा तो भारतीय कृषि को एक पारंपरिक और वैज्ञानिक आधार इन्हें मान्य गयो है। अब कृषि विज्ञानों मलिद की जानकारी आप कहवा कि जो देखो कि गर्मी की जो तैयारी वे वन का हिसाब हो या पचे धूल की जो जुताई है तो वन का हिसाब हो इन आप ही कही सका। तो अब इनमें बात यह है कि गहरी जुताई वे कही है और आप इन्हें कणी तरह करना चाहवा कणी तरह जान सका। तो बात यह है कि देखो रबी की फसल मतलब कि गेहूँ और हरों की कटाई का केड़े अपना जो है खरीफ की फसल मतलब धान है मक्का है बाजरा है आना की बुआई पहली जो अपना मिट्टी ने पलटवा देवा का काम अपने करना पड़े और अणि में देखो कि 25-30 सेंटीमीटर या पचे 10-12 इंच जिन्हें आप कह सका गहरी और खोदो वाला जो प्रक्रिया है वरने गहरी जुताई आप ही कह सका। सही टाइम री बात करा तो देखो कण के लिए अपना सब उपयुक्त तो जो समय है वो है मई रो महीनो और या पचे अगलो जून रो महीनो। तो अणि टाइम पे कही है कि धूप जो है तावड़ो बहुत तेज को पड़े है और तापमान जो है वो अपना 40-45 डिग्री तक रहवे था। तो अणि टाइम पे आप ही जो है मौसम में देखता दिखाई जी मैं काम करना चाहवा और मौसम को लाभ जो यो है कि अणि टाइम पे जुताई करा तो अपने मिट्टी की निचली परत जो है वह ऊपर आई जावे और जो तेज तावड़ो जो पड़े वणी की सीधा संपर्क में आवाओं कही है कि जमीन का निचला जो है प्राकृतिक उपचार जो है वह अच्छी तरह वे जावे इन आप कैसे कहा गर्मी रे टाइम पे वे वाली गहरी जुताई। अब गहरी जुताई का मुख्य लाभ कही है इनकी बात करना तो देखो गर्मी रे टाइम पे गहरी जुताई अपने किसान भाई करे है तो वणियों कही है कि भौतिक और रासायनिक और जैविक तीन तरह का लाभ व्या करे। अब कीट का बात है और बीमारियों का बात है प्राकृतिक नियंत्रण वो काम इनमें वे है अंडा है लार्वा है विनाश में को वही जावे फसल को नुकसान पहुंचाओ वाला जो काम है वन में देखो हानिकारक कीट वन में तो देखो सफ़ेद लट दीमक तना छेदक और अणा का जो है अंडा है वना की मिट्टी रे ऊपर जो 6-8 इंच की परत जो है वन में सुषुप्तावस्था में रेवे है। तो गहरी जुताई जो आप करा तो वणियों की है कि अंडा है लार्वा ये सब बाण आई जावे और जो है तेज तावड़ो पड़े तो वणियों ये नष्ट हो जावे और अणि को जो लाभ है वो पक्षी के द्वारा किदो देखो शिकार है। जुताई की टाइम पे आप यदि मिट्टी पलटवा की स्थिति देखा तो अपना छिपिया तका जब भी कीड़ा है वे बाण आई जावे खेत में आ वाला जो पक्षी है जिनमें बगला है कागला है ये जो है वाला कीड़ा ना चुन चुन जो खाई जावे। अणि कही है कि बिना कणी भी केमिकल पे भी देखो अपने बायोलॉजिकल कंट्रोल जिन्हें आप कह सकें जैविक नियंत्रण वो अपने आप वही जावे और फंगस बैक्टीरिया को खात्म भेजा हुआ मिट्टी में मौजूद हानिकारक फंगस जिन्हें आप उगटा या पचे विल्ट रोग भी कही सका जो फैलाव को काम करे वे कवक वे और बैक्टीरिया जो है तेज तावड़ों जो है इनके कारण मर जावे जीव कही कि आ वाली जो फसल है वन में बीमारियां लागवा को खतरा है जो वो हितरों 80% तक जो कम भेज जावे और इका लाभ देगा खरपतवार नियंत्रण को। तो इनको अस्थाई या पर स्थाई रूपों जो है खात्मा भेजा हुआ जड़ा का सूखवा को काम वह मोथा दूब घास या पचे कांस जैसी जो है जिद्दी खरपतवार जो व्या करे वना की जड़ा रमाई ने या पचे वना की गांठा है जो जमीन रमाई ने काफ़ी गहराई तक पवे सामान्य जुताई ये जो है नहीं निकल पावे और अण में कही है काफ़ी गहरी जुताई करा तो देखो वन में कटन कटे खात्म वही जावे बीज चक्र को टूटवो वेवे गहरी जुताई का आप भी करा तो उन्हीं कही है खरपतवार जड़िया जो दिखा जड़ा उखड़ ऊपर आई जावे ज्यों कही है कि अपना

मई का महीना में यदि तेज धूप पड़े, तेज हवा चले, गर्म जिन्हें लू के वहाँ पी, तो वणियों कही है कि ये जो सब इनकी घाटा है, इनकी जड़ा है या सूखन जो है बेजान वही जावा, जीव की है कि खरपतवार जो है अपना खत्म वही जावा। और खरीब की फसल है वणि में खरपतवार को जो खर्च व्यवड़ो वो है लगभग आधो वही जावा। और अण को और फायदारी बात करें तो देखो जल संचयन क्षमता में बढ़ोतरी वह। हार्ड पेन मतलब कड़ी परत जो व्या करे वणी को टूटनो। देखो लगातार ट्रैक्टर चाले या पचे हल्की जुताई करवाओ कोई एक जमीन का निचले 6-8 इंच को एक कड़क परत व्या करे वह बन जावे। ज्यों कोई है कि बारकारी टाइम पे अपने पानी का नीचे की जो रही जावे। और गहरी जुताई अणु कही है कि परत ने तोड़ देवे, तो यो लाभ बन में वे। भूजल स्तर में सुधार को लाभ वे। मानसून जो मतलब वर्कारी टाइम जो है वणु पहले अपने वर्का को पानी जो है वो बेन बेकार परो जावे। वी का बजाय जो अपना मिट्टी ने अगर आपकी गहरी जुताई कर देती हुए तो वह थोड़ी एक स्पंजी मिट्टी वे जावे, मतलब गुदगुदीदार मिट्टी वे जावे, जिन्हों कोई सीधो जमीन के अंदर गहरो पानी भी में समावे। यूं कही है कि मिट्टी में लगातार जो अपना लंबा समय तक नमी बनी दिखी रहे। और खरीफ की फसल है वन के शुरुआती जो है वन की बढ़ोतरी वन में बहुत ही बढ़िया काम करे है। अब देखो और फायदा है मिट्टी को कटाव रुकनो। जुताई के बाद में आपकी खेत उबड़ खाबड़ और ढेला वाला वही जावे तो अणियों कही है कि वर्षा को पानी जो है वो बहाव धीमो वही जावे, ज्यों उपजाऊ मिट्टी बेन जो है जावा वाली है वह वंच जावे, तो यो भी एक फायदा में मिले। अब और वो बात करें देखो मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार। मिट्टी में वायु संचार को सुधार वे, मतलब कि गहरी जुताइयों कही है कि मिट्टी भुरभुरी वही जावे, जड़ियों वन में कई ऑक्सीजन को प्रवाह जो है वो बढ़ जावे। हवादार मिट्टी में पौधा की जड़ा जो है विको विकास बहुत ही अच्छी तरह वही सके। और दूजो फायदा है कि पोषक तत्व को उपलब्धता बढ़ो। आपने जमीन में निचली परत जो है वन में जमा वीद की फिक्स न्यूट्रिएंट्स मतलब कि फास्फोरस और पोटाश जड़ियों को यह है कि जुताई का कारण ऊपरी परत पे आई जावे, ज्यों अपना पौधा की आसानियों जो है अपना फास्फोरस और पोटाश को ग्रहण कर सके, जिको बिना पौधा ने फायदा मिले है। और उनको फायदा देखो कि मित्र जीव जो व्या करे विकी सक्रियता बढ़ जावे। धूप यदि हानिकारक बैक्टीरिया ने मारे तो, लेकिन मानसून आवा की स्थिति में मतलब वर्षा आवा की स्थिति में केंचुआ है और अन्य जो फायदेमंद सूक्ष्म जीवी व्या करे वना की अधिक सक्रियता बढ़ जावे। और मिट्टी के जो है जैविक शक्ति जो है वह भी उनमें बढ़ोतरी हुई जावे। और फायदा की बात करो तो आपकी जो गहरी जुताई करा तो वणियों केवल अपना पैदावार ही नहीं बढ़े बल्कि खेती में खर्च भी कम हो जावे। और उनमें देखो कि कीट और जो फंगस पहले जो मर जावे तो वणि के कारण किसान भाई ने महंगी रासायनिक दवा को खरीदवा की जरूरत नहीं पड़े है। मिट्टी के जल धारण क्षमता बढ़े है। खरीफ की फसल में यदि बरखा की टाइम पे यदि सूखा के लंबो अंतराल पड़ जावे तो वणि स्थिति में फसल ने जल्दी नहीं सूखवा देवे या स्थिति अपने खेत में बन जावे। और रासायनिक खाद जो है कीटनाशक है वणा को प्रयोग कम करवा की स्थिति में अपना जमीन में और पर्यावरण प्रदूषण जो है वणियों भी वंचाव हुई जावे। अब गहरी जुताओं कुछ आप कृषि यंत्र काम में लेवा तो कशा कशा यंत्र काम में लेना चाहे इनकी बात करा। MB प्लाऊ नाम को यंत्र यो मिट्टी रे महीने पूरी तरह जो है नीचे ऊपर पलट देवे और हरी खाद जो है वणी ने अपने मिट्टी रे महीने दबान जो है गहरी जुताई का वास्ते अपने सबों बेहतरीन मान्यू गए। दूजो यंत्र है डिस्क प्लाऊ। अपने पथरीली या सूखी जो सख्त मिट्टी है वणी में यो बहुत ही उपयोगी काम करे है और गोल डिस्क जो है वह मिट्टी ने जो है काटवा और पलटवारो काम करे। छेनी हल जो एक और यंत्र बताई रखियो है सिर्फ नीचे की सख्त परत नहीं तोड़वा को काम करे है बल्कि इनका जो और भी उपयोग आप ही कर सकें 30-40 सेंटीमीटर की गहराई तक भी जो है यू मार करे तो विको फायदा मिले है। तो किसान भैया या तो भी जानकारी कि गर्मी के टाइम पे जो है आप ही गहरी जुताई करना तो विको अपने कई फायदे मिले है और अपने इन्हें काम में लेना चाहे सा, तो या तो भी जानकारी और कार्यक्रम में बजावारी टाइम वेरी है तो चला सा राम राम सा।

रहे थे अपना कार्यक्रम खेती में आज। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 7 बजने को है। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमों के साथ मैं हूँ आपका दोस्त भगवती लक्षकार, और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जमीर फिल्म के गीत से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। इसका संगीत तैयार किया है सपन चक्रवर्ती ने।

आशा फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। अब आपके रेडियो सेट पर आ रहा है बगावत फिल्म का ये गीत।

0: कौन है यहाँ?
1: गोरा बदन छुपा के गोरी नहा रही है।
0: ये जुर्रत, ये गुस्ताखी, जानता नहीं हम कौन हैं?

0: को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर
1: फास्ट
0: एक्सप्रेस के यात्रियों
1: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: हो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

ये आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अपनापन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत है।

खानदान फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर की ही आवाज़ में मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत तैयार किया है और गाया है एक बार फिर लता मंगेशकर ने।

मेरे हम सफ़र फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे प्रोग्राम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आगाज़ इस गीत से

0: आर्यंस की आवाज़ में इस गीत के साथ ही सुगम संगीत प्रोग्राम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी उदयपुर है, सवेरे के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष

हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति

0: बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट UCC.MP.GOV.IN का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से

0: नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ते की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपये के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh,

0: बिल्कुल, कल्चर पॉप सैटरडे में आपका करते हैं स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त भगवती लक्षकर,
1: और मैं हूं आपके साथ अनीता। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और साथ ही कल्चर पॉप शनिवार में आज क्या है खास भगवती, तो बता दें अपने श्रोताओं को कि आज हम याद करेंगे अपने बचपन को, जब नानी दादी के घर जाया करते थे गर्मियों की छुट्टी में। तो गर्मी की छुट्टियों में नानी दादी के यहाँ बिताए पल, वीकेंड की शुरुआत सेगमेंट में आपसे बातचीत करेंगे इस विषय पर, और साथ ही आपको देंगे स्थानीय खबरें और आईपीएल मैच की जानकारी भी देंगे, और लोक परंपरा में बात करेंगे कठपुतली कला और मनोरंजन की।
0: बिल्कुल, मनोरंजन जानकारी पर हम देंगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की लोकप्रियता के बारे में, साथ ही साथ जानकारी अवेयरनेस हम कराएंगे आपको नई शिक्षा नीति और पारंपरिक शिक्षा की तुलना विषय पर प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। करते हैं आगाज़ इस गीत से।

0: बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां हो गई
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, गर्मी की छुट्टियां हो गई। और देखो भाई भगवती, जो बचपन हमने बिताया है, जो बचपन के मज़े हमने लिए, शायद आजकल के बच्चे वो बचपन नहीं जीना चाह रहे हैं या उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियां जैसे ही शुरू होती थी, जो हम अपने बचपन की अगर बात करें, तो चाहे कितनी भी तेज़ गर्मी हो, जो दिल को सुकून मिलता है, जो दिल को जो ठंडक मिलती है, वो नानी दादी के घर जाकर ही मिलती है। और जैसे ही स्कूल के आखिरी दिन की आखिरी घंटी बजती है, तो उस दिन तो मानो पैरों में पंख लग जाते हैं और इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए हम अपने घर पहुँचते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा खुशी होती है, एक तो छुट्टी खोने की खुशी, दूसरी है नानी दादी के घर जाने की खुशी।
0: बिल्कुल, उन पलों को हम कैसे भूल सकते हैं जब ट्यूबवेल या कुएं के ठंडे पानी से नहाते थे और बागों में दौड़े लगाते थे, कहीं जामुन तो कहीं आप कोई ना कोई फल तोड़ कर लाते थे, गिल्ली डंडा, कबड्डी, लुक्का छिपी, और वही भरी दोपहरी में चंगा पे थी, है ना?
1: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि है ना, जब ये दोपहर के समय जब नानी के घर हम जब जाते थे, तो उस समय क्या होता था कि मौसी के बच्चे भी होते, मामा के बच्चे भी होते, और अपने भाई बहन, सारे भाई बहन मिलकर, जब ये नानी सो जाती दोपहर में, मौसी, मम्मी सब सो जाते थे, लेडीज सो जाती है ना थोड़ी सी दोपहर के समय में, तो हम लोग क्या करते थे, जब गाँव में, क्योंकि नानी का घर हुआ करता था, तो उस समय हम सब चुपचाप घर से निकल जाते थे। और आपने देखा होगा जब खेतों में जाते हैं तो अमियाँ लगी होती हैं, है ना, पत्थर से वो तोड़ना, है ना, खेतों में वो घूमना, और जो हैंडपंप से पानी पीना, उस समय कुछ ऐसा कुछ नहीं था, कहीं भी खाया कुछ भी पिया सब ठीक हो जाता था। तो वो जो पल होते हैं ना, वो हमने जिए हैं।
0: बिल्कुल जी हैं। और देखिए, आज भले ही ये सारे गेम जो है मोबाइल में कैद हो गए हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है, लेकिन हम उन पलों को नहीं भूल सकते जब घर में लाइट चली जाती थी तो छत पर जाकर तारे गिना करते थे, तारों की एक श्रृंखला बनाया करते थे, और छत से गुजरते हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जो रात में उड़ते थे, उनकी लाइट्स जो जलती थी वो बड़ा सुकून देती थी।
1: बिल्कुल सही बात है भगवती, वो समय जब ऐसा था कि जब, है ना, पंखे तो छोड़ो, घरों में लाइट भी नहीं हुआ करती थी, है ना, और जब लाइट भी होती थी तो कूलर एसी किसी के घर में नहीं होते थे, तो क्या होता था वो बचपन में, जब सारे कजन्स मिलकर, सब भाई बहन मिलकर छत पर सोते थे या आंगन में सो जाया करते थे, क्योंकि इतने सारे लोग होते, सबके लिए बेड होते नहीं थे, सबके लिए अलग अलग रूम होते नहीं थे, और सबके साथ मिलकर जो सोने में आनंद आता था, उसका मज़ा ही कुछ और होता था। जब आंगन में पहले, सबसे पहले पानी छिड़कते थे, क्योंकि भाई सारे दिन रहती है, वो आंगन गर्म हो जाता है, पानी छिड़क कर उसको ठंडा करते थे, फिर बिस्तर बिछाते थे, फिर उस पर जो लोट लगाते थे, और उसके साथ जो नानी कहानियां सुनाती थी, राजाओं की, महाराजाओं की, है ना, और आपने देखा होगा कि, और कई बार तो भूत की कहानी भी नानी सुना देती थी, जिससे डर लगता था, और हम अपनी मम्मी के पास चिपक कर सो जाया करते थे। वाकई में ये जो बचपन के दिन हुआ करते थे, जो हमने जिया है नानी दादी का घर, वो शायद आज के बच्चे कहीं ना कहीं मिस करते हैं। और जब हम नानी के घर जाया करते थे, तो नानी जो दरवाजे पर खड़ी होकर कहती थी, हाय तू कितनी दुबली हो गई है, तू कितना दुबला हो गया, ये जो हर नानी दादी का जो संवाद होता है ना, वाकई में ये अब आजकल मिस करते हैं,
0: बिल्कुल
1: है
0: मिस
1: ना।
0: करते हैं। और देखिए, तो फिर है ना, जब आपको बोलते हैं कि दादी या नानी कि तू बड़े दुबले हो गए हो, तो बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाकर हमेशा खिलाया करती थी, बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाती थी, और डांट अपनी मम्मी को और लगाती थी, यानी कि
1: हाँ,
0: उनकी बेटी को और लगाती थी कि बच्चों का ख्याल नहीं रखती है ना?
1: बच्चों का
0: और
1: ख्याल ही रखते
0: दादी
1: हैं। जब मम्मी डांट दिया करती थी ना किसी बात पर, तो नानी उनको डांटती थी कि आप बच्चों को कुछ नहीं कहोगे, खास तौर से हमारे सामने तो बच्चों को कुछ मत कहना। और उनको पता होता था कि मेरी बेटी आएगी, उनके बच्चे आएंगे, तो कुछ ना कुछ वो बनाकर पहले से ही रखा करती थी, उसमें जैसे आम का अचार हुआ, है ना, मिर्च का अचार हुआ, और घी बनाकर रखती थी, तो बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखती थी, सारे टाइम खिलाती थी भी और साथ में बांध भी दिया करती थी।
0: दादी नानी का प्यार निस्वार्थ और

0: अपनापन भरा होता था, उनकी छोटी छोटी सीख, संस्कार और स्नेह जीवन भर याद रहते हैं। गर्मियों की वे छुट्टियां केवल आराम का दिन नहीं था, बल्कि परिवार के साथ जुड़ने, रिश्तों को समझने और खुशियों को महसूस करने का अनमोल समय था।
1: आज के बच्चे वो सब एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बच्चों की भी अपनी मजबूरी है, माता पिता की भी अपनी मजबूरी है। नानी दादी के घर जाते तो हैं, लेकिन 2 या 3 दिन के लिए ही जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि एक तो छुट्टियां कम हो गई हैं, है ना। और उसके अलावा बच्चों को आजकल होमवर्क भी मिलता है छुट्टियों में करने के लिए, तो बच्चे बेचारे छुट्टियों में होमवर्क करते रहते हैं। या माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चों को कहीं हॉबी क्लास में डाल दें, जो उनका जो हुनर है उसको निखारने के लिए वो हॉबी क्लास में भी डाल देते हैं। लेकिन क्या करें, बचपन भी बचपन ही होता है, बचपन का आनंद भी लेना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, रिश्तों की अहमियत को बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों को अपनी नानी दादी के घर, मामा के घर ज़रूर ले जाइए, जिससे कि वो अपने बचपन को अच्छे से जी सकें।

ये म्यूजिक सुनते ही समझ में आ जाता है कि हम अपने श्रोताओं को अब देने वाले हैं आईपीएल मैच की जानकारी। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाज के शानदार प्रदर्शन से आईपीएल 2026 के अपने आखिरी मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। इसके बावजूद हैदराबाद की टीम तालिका में टॉप टू में जगह नहीं बना सकी और वहीं मैच हारने के बाद भी आरसीबी की टीम टॉप पर रही और दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटन्स ने

0: जगह पक्की कर ली है। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ये आरसीबी के खिलाफ हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। हैदराबाद को शीर्ष दो में जगह बनाने के लिए आरसीबी को 166 रन से पहले रोकना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। आरसीबी ने 4 विकेट पर 200 रन बनाए और टॉप पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली।
1: कप्तान शेष अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स टीम के लिए आईपीएल 2026 का ये सीज़न बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा और टीम ने शुरुआत में लगातार 6 मैच जीते, लेकिन इसके बाद पंजाब को ऐसी नज़र लगी कि टीम को लगातार 6 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा। पंजाब का अब आखिरी मुकाबला आज लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा, जो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है।
0: और अब बात करते हैं ऑरेंज और पर्पल कैप की। तो कल समाप्त हुए मैचों तक गुजरात टाइटंस की बल्लेबाज बीसीआई सुदर्शन 638 रनों के साथ आईपीएल 2026 की ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे नंबर वन पर हैं। वहीं पर्पल कैप की बात करें तो उस रेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार शीर्ष पर चल रहे हैं। शानदार फॉर्म में चलते रहे भुवनेश्वर 24 विकेट लेकर पर्पल कैप पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं।
1: अंक तालिका में बेंगलुरु नंबर वन पर है, गुजरात दो पर, हैदराबाद तीन पर, राजस्थान है चार पर और पंजाब पांच पर बना हुआ है।

0: और स्थानीय खबरों की बात करें तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में आकाशवाणी उदयपुर के साथ संयुक्त रूप से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में दृश्य कला विभाग के करीब 25 विद्यार्थियों ने भाग लेकर आकाशवाणी के 90 वर्ष विषय पर पोस्टर बनाए। रचनाओं में आकाशवाणी की ऐतिहासिक यात्रा, सूचना प्रसारण और योगदान और समाज से जुड़े सरोकारों को रंगों और प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
1: और यदि आप भी विदेश में अपने रिश्तेदारों और बच्चों को, कारोबारी साझेदारों को पार्सल भेजना चाहते हैं तो कुरियर कंपनी के महंगे चार्ज से परेशान हैं तो ये खबर आपके बहुत ही काम की है कि अब आप चेतक सर्कल स्थित मुख्य डाकघर के व्यावसायिक विकास केंद्र से 200 से अधिक देशों में दस्तावेज, गिफ्ट, सैंपल और व्यापारिक सामान भेज सकते हैं। निजी कुरियर कंपनियों की तुलना में यह सेवा काफ़ी सस्ती और भरोसेमंद है। इसी कारण यहाँ से हर महीने 250 से ज़्यादा पार्सल विदेश भेजे जा रहे हैं। विभाग ने ग्राहकों की ज़रूरत के अनुसार दो विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इसमें पहला विकल्प है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट प्रीमियम और तेज़ सेवा है और दूसरी दस्तावेज और कीमती सामान कम समय में भेजे जा सकते हैं। वहीं एयर पार्सल और रजिस्टर्ड पार्सल कम बजट में सुरक्षित डिलीवरी का विकल्प भी दिया है।
0: और अधिक मास चल रहा है भक्ति उत्सव और अलौकिक मनोरथों का उल्लास भी मंदिरों में है। शुक्रवार को शहर के जगदीश मंदिर में बगीचे में चौपड़ पासा मनोरथ हुआ और श्रद्धालुओं ने हरियाली मोर सज्जा और गद्दी पर विराजे ठाकुर जी के मनोहारी झांकी के दर्शन किए। और उत्सवी माहौल में शहर स्थित श्रीनाथजी की हवेली में वैष्णवों का रेला लगा रहा और नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथजी की हवेली में भी राजभोग दर्शन में खूब जो है दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ा।

0: वाकई में गीत संगीत सुनना भगवती सबको ही अच्छा लगता है, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो। ये अपने को तरोताज़ा कर देता है, बिना संगीत के सब नीरस लगता है, लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल भी जाता है। आज के समय की बात करें तो आप कहीं भी जाएं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपको ज़्यादा सुनाई देता है। और उसके बाद में कहा भी जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये कहावत इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पर पूरी तरह से खरी उतरती है। जब किसी संगीत में शब्द नहीं होते तो उसे समझने के लिए किसी भाषा के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। एक भारतीय श्रोता विदेशी सिंफनी या पियानो की धुन पर उतना ही आनंद ले सकता है जितना एक विदेशी नागरिक जाकिर हुसैन के तबले या पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी का आनंद ले सकते हैं। और इसका उदाहरण हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे शहर में पर्यटक संगीत पर कितना झूमते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और फिल्में और वेब सीरीज में भी आप बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और युवाओं में लो फाई और मेडिटेशन म्यूज़िक का बढ़ता क्रेज़ भी इंस्ट्रूमेंटल संगीत की लोकप्रियता का एक कारण है। और ये संगीत मन को शांति देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, और कई शोधों में माना भी है कि मधुर संगीत तनाव कम करने और मानसिक स्वास्थ्य से बेहतर सहायक है। आप जब कामकाज कर रहे होते हैं या फिर कोई फंक्शन चल रहा होता है तो एक धीमा धीमा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपको एक सुकून देता है और आपको बड़ा अच्छा एहसास कराता है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, गिटार, बांसुरी, पियानो, सितार, वायलिन, आधुनिक सिंथेसाइजर की धुनों ने लोगों के दिल में एक खास जगह बनाई है। बांसुरी, संतूर और पियानो की धीमी धुनें तनाव को कम करने के आपको रिलैक्स रखती है। रात को सोते समय आप स्लीप म्यूजिक या रिलैक्सिंग धुनें भी सुन सकते हैं। तो आज के समय में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उसका लचीलापन है, जो आपके बांधे रखता है। आज के डिजिटल युग में भी हर उम्र के लोगों की ये पहली पसंद बना हुआ है।
1: बिल्कुल पहली पसंद बना हुआ है। और देखिए, इंस्ट्रूमेंटल तो आप किसी भी भाषा में सुने या किसी भी उसकी कोई भाषा है नहीं, और जब इंस्ट्रूमेंटल की बात आती है तो फिर उसमें एक चीज़ और जुड़ती है, और वो है कठपुतली कला। ये भी एक मनोरंजन का एक साधन है। और जब कठपुतली के साथ जो इंस्ट्रूमेंटल आप बताएं तो एक पुपाड़ी की आवाज़ और बांसुरी की आवाज़ और ये जो साथ में बजाए जाते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल, तो वो आपको बहुत ही अच्छा संदेश भी देती है।
0: भगवती आपने बिल्कुल सही कहा, आपने देखा होगा कि एक समय था जब मनोरंजन के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, किंतु कुछ ऐसी कलाएं हुई हैं जो प्राचीन होते हुए भी आज भी मनोरंजन का साधन बनी हुई हैं। लोक और परंपरा में आज भी ऐसी ही कला के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका इतिहास सदियों पुराना है, और वो है कठपुतली। भारत की सबसे प्राचीन और लोकप्रिय पारंपरिक कलाओं में से ये एक है। ये केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और लोक कथाओं को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम भी है।
1: सही कहा आपने, अमर सिंह राठौर जैसी ऐतिहासिक कहानियों का मंचन इन्हीं पर होता है। और कला की अगर हम बात करें तो भारतीय कठपुतली कला को मुख्य रूप से जो है चार श्रेणियां हैं। एक तो धागा पुतली होती है जो कि

0: धागों पर संचालित किया जाता है। एक होती है छाया पुतली, जिसमें चमड़े से बनी आकृति की परछाई पर्दे डालकर आपको दिखाई जाती है, और एक होती है दस्ताना पुतली, जिसमें हाथ में दस्ताने की तरह पहनकर उंगलियों से पुतले का संचालन होता है, और एक अंतिम होती है छड़ पुतली, जो कि छड़ों के सहारे कठपुतलियों को नचाया जाता है।
1: कठपुतली दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द काठ यानी लकड़ी और पुतली यानी गुड़िया। पुराने समय में जब टीवी मोबाइल सिनेमा नहीं हुआ करते थे, तब कठपुतली के नाटक गांवों और शहरों में मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करती थी। मनोरंजन के साथ साथ इस कला का उपयोग सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूकता फैलाने, राजा महाराजाओं के इतिहास को लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। कुछ कठपुतलियां आकार में बड़ी होती हैं, जिन्हें धागों की बजाय डंडों से नियंत्रित करा जाता है। अब आज के ज़माने में हाईटेक साधन आ गए, किंतु कठपुतली का क्रेज आज भी बरकरार है। पर्दे के पीछे से जब कलाकार सीटी बजाकर अजीब सी आवाज़ें निकालता है, तब दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कठपुतली का क्रेज आज भी बरकरार है, यह हमें देखने को मिलता है हमारे लोक कला मंडल में, जहां लोग दूर दूर से इस कला को देखने आते हैं। ये कला हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, जिसे जीवित रखना और कलाकारों को प्रोत्साहित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।

मुख्य समाचार। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800

0: करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के चार शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। देश में आज 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 47 स्थानों पर लगने वाले इन मेलों के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इधर प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में, कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी अजमेर में और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से करीब 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेल विकास कार्य प्रगति पर हैं। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। श्री वैष्णव कल पाली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद राजस्थान के लिए 46 नई रेल सेवाओं की शुरुआत की गई है।
1: सारी नई गाड़ियां चालू हो पाएगी, साथ ही साथ 85 स्टेशनों का नव निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जिसमें करीब 15 स्टेशन का काम कंप्लीट हो गया है। बाकी सब जगह बहुत अच्छे तरीके से तेजी से काम चल रहा है और देश भर में 1300 स्टेशनों का नव निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में रेलवे की और कई नई सुविधाएं देश को मिलेगी।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्य में मोबाइल मेडिकल सेवाओं और निशुल्क जांच शिविरों के जरिए गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच रही है। श्री बिरला कल कोटा के रामगंज मंडी में जिला अस्पताल के शिलान्यास समारोह के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 बेड के इस आधुनिक अस्पताल के बनने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा सुलभ हो सकेगी।
2: बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ जिला अस्पताल हो। 62 करोड़ की लागत से बनने वाला जिला चिकित्सालय का शिलान्यास हुआ है। ये सारा इलाका जहाँ मजदूर बड़ी संख्या में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कोटा या झालावाड़ इलाज के लिए जाना पड़ता था, आने वाले समय में सभी का इलाज यहाँ पर होगा। तो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, अस्पताल हो, दो दो महाविद्यालय हो, टेक्निकल महाविद्यालय हो, तमाम चीजें जो एक आवश्यकताएं थी
0: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। 15 मई को 3 रुपए, 19 मई को 90 पैसे बढ़ाने के बाद अब ईंधन की कीमतें फिर बढ़ने से हाल के दिनों में अब तक लगभग 5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच ये निर्णय लिया गया। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को पुणे से गिरफ्तार किया है। मनीषा संजय हवलदार नाम की ये महिला परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी। इसे एनटीए ने विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इस प्रकरण में सीबीआई ने देश भर में जयपुर सहित कई स्थानों पर छापेमारी कर अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी लेने के आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदक के अत्यधिक और तकनीकी व्यवधान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के वास्ते 2 दिन का समय मिल सकेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का अनुमोदन किया गया। साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी, पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण, जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान

0: की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक उत्पादन, अक्षय ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को मंजूरी दी है। उद्योग मंत्री ने बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
1: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या एसएसओ आईडी से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण।
0: बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के साथ ही अराजपत्रित अधिकारियों को भी एसएसओ आईडी से जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिलों में अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन आवंटन की मंजूरी भी दी गई। कांग्रेस पार्टी का चिंतन और प्रशिक्षण शिविर आज से पुष्कर में शुरू हो रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सहित कई अन्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 4 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री के पार रहा। 44.2 डिग्री सेल्सियस के साथ चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा। वहीं 25 स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट आई है। हालांकि भीषण गर्मी और तपिश का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने और हीटवेव की संभावना जताई है। कुछ हिस्सों में आज तेज रफ्तार धूल भरी हवाएं चल सकती है। इस बीच बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली की प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर के अर्पणा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए। या
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 19वें रोजगार मेले का आज देश में 47 स्थानों पर आयोजन। 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राजस्थान में 76,800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। और प्रदेश के 4 शहरों में दिन का पारा 44 और 25 स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तो श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत करते हैं हम आपका नमस्कार उदयपुर में।
4: जी, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनीता और मेरे साथ है भगवती लक्षकर। और अब हम अपने श्रोताओं को बता रहे हैं नई शिक्षा नीति और पारंपरिक शिक्षा की तुलना विषय पर प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा से गजेंद्र सिंह राठौड़ की बातचीत।
5: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा और ये रिटायर्ड प्रोफेसर है और इनसे हम बात करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है हमारे देश में जो आई है सन 2020 में, उससे और अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा और शिक्षण की जो पद्धति बदली है इसके कितने लाभ है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत, नमस्कार सर।
6: नमस्कार। नमस्कार
5: डॉक्टर जयंत। अगर हम बात करें, जब हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं 2020 में, जब नई शिक्षा नीति आई

0: और उससे पहले जो शिक्षा नीति जो वर्षों से चली आ रही थी,
1: जी जी जी
0: और जो वर्तमान और पुरानी परंपरागत शिक्षा नीति, जब हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखते हैं, तो आप इसमें क्या अंतर पाते हैं और किस तरह से ये नई शिक्षा नीति पुराने से भिन्न है?
1: देखिए, पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में जो एक मूलभूत अंतर है वो है कि नई शिक्षा नीति पहले से अधिक लचीली ये शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति जो है वो रटने के बजाय समझ पर अधिक जोर देती है। और एक और विशेष बात कि नई शिक्षा नीति कौशल आधारित शिक्षा नीति है। और एक विशेष बात जो है नई शिक्षा नीति में जो है वो है कि नई शिक्षा नीति मातृभाषा पर शिक्षा देने पर ज़्यादा अधिक जोर देती है।
0: तो जब हम बात कर रहे हैं, जब तुलनात्मक रूप से हम बात की कि नई
1: जी
0: और
1: जी
0: पुरानी में,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: नई
1: जी
0: व्यवस्था में कुछ लचीलापन है, ये आप जैसा बता रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन अगर हम बात करें कि जो मुख्य प्रावधान है, जिसको हम कहें कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो
1: जी
0: पुरानी शिक्षा नीति में स्ट्रक्चर था कि बच्चे जो स्कूल में दाखिला लेते थे,
1: जी जी
0: उसके
1: जी
0: बाद एक शुरुआत का अल्मा माटर, प्राइमरी शिक्षा जिसको कहने के बाद,
1: जी
0: फिर उसके बाद आप स्कूल शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम, फिर उसके बाद कॉलेज, और फिर उसके बाद पीजी कोर्सेज, ये जो स्ट्रक्चरल हमारा जो था पुरानी शिक्षा नीति
1: जी
0: में,
1: जी
0: उसमें किस तरह से बदलाव किया गया जिससे ये नई शिक्षा नीति में लचीलापन आया या आकर्षक बनी है?
1: जी हाँ जी हाँ देखिए, नई शिक्षा नीति में मैं जैसे कि मैंने अभी बोला कि मातृभाषा पे शिक्षा का ज़्यादा जोर दिया गया है और मातृभाषा और स्थानीय भाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया। रिसेंटली भी आप देखा होगा तो हम चूंकि राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा जो एक उस पर हमारे हाई कोर्ट ने ये इस प्रकार का अपना निर्णय सुनाया है, निश्चित रूप से राजस्थानी भाषा का इसमें विशेष महत्व रहेगा। 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, 3 वर्ष 3 से 5 वर्ष की शिक्षा है और फिर मिडिल स्तर की जो शिक्षा है वो 6 से लेकर 8 तक की शिक्षा है वो 3 वर्ष की है। फिर 4 वर्ष बच्चा जो है 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा पढ़ेगा और उसके पश्चात 4 वर्ष की उसकी जो है स्नातक परीक्षा रहेगी। और कक्षा 6 से जो है बच्चा व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा, जिसको अपन कहते हैं ना स्किल बेस्ड एजुकेशन, वो रह पाएगा। एक और प्रावधान इस नई शिक्षा नीति में जुड़ा है और वो है एमफिल को पूर्णतया जो है समाप्त कर दिया गया है। इसमें एक और जो बात कही गई है कि एकल उच्च शिक्षा नियामक संस्था बनाई गई है, उस नियामक संस्था का ये भूमिका रहेगी कि वो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को इस देश में और राज्य राज्य स्तर पर जो है उसको वो नियमन करे, उसकी देखरेख और निगरानी करे।
0: प्रोफेसर साहब,
1: जी जी
0: अगर हम
1: जी
0: बात करें जो नई शिक्षा नीति में जो आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस बताए,
1: जी
0: प्राइमरी शिक्षा और जो बीच की जो शिक्षा है 10वीं तक या बोर्ड एग्जाम, तो उसमें जो बदलाव किए गए, उसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पूर्व में जब या यूं कहें हमने जब पढ़ाई की है, उस समय हमारे पास विकल्प काफ़ी सीमित हुआ
1: सीमित हुआ
0: करते,
1: करते, बिल्कुल सही बात
0: जब
1: है।
0: हम अगर 10वीं पास की तो 10वीं के बाद हमें विषय का चयन करना होता था,
1: जी
0: तो
1: जी
0: विषय के चयन के लिए हम ये आमतौर पर हम ही देखते थे कि हमारे नज़दीकी स्कूल कॉलेजेस या वहाँ पर कौन कौन से विषय के कॉम्बिनेशंस उपलब्ध हैं, और अगर कोई विद्यार्थी अगर आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है और लेकिन उसे साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में रुचि है,
1: जी
0: तो वो उस सब्जेक्ट को नहीं चुन पाता था क्योंकि वह कला वर्ग में उपस्थित नहीं था।
1: जी जी जी
0: उसी तरह अगर कोई साइंस का विद्यार्थी अगर इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में रुचि रखता है,
1: जी
0: लेकिन वो भौतिक विज्ञान, रसायन और
1: इसमें भी रुचि है उसकी।
0: जीव विज्ञान
1: जी
0: इन्हीं पर ही वो रेस्ट्रिक्ट हुआ हो जाया करता था, तो इस तरह जो इसमें लचीलापन लाया गया है कि कोई सा भी विषय किसी भी स्तर पर आप चयन करके उसे पढ़ सकते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं?
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि विशेष रूप से उच्च शिक्षा में बहुविषयक व्यवस्था को जोड़ा गया है नई शिक्षा नीति में। बहुविषयक व्यवस्था को मैं थोड़ा यहाँ स्पष्ट कर दूं कि बहुविषयक का अर्थ होता है कि यदि विद्यार्थी कला में रुचि कर रखता है, कला विषय में, तो उसके साथ साथ वो वाणिज्य के विषय भी ले सकता है, संगीत के विषय भी ले सकता है और यहाँ तक कि विज्ञान का कोई विषय उसको रुचि कर लगता है तो उसको भी वो ले सकता है। ये उच्च शिक्षा में बहुविषयक व्यवस्था की जो है बात जोड़ी गई है।
0: एक आपने महत्वपूर्ण बात इसमें बताई थी कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें कक्षा 6 के बाद जो
1: जी
0: प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद बच्चों को कौशल विकास के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन जिसको कहें, उस पर जोर दिया गया है,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: इससे कितना लाभ हो सकता है? और अगर हम देखें वर्तमान स्थिति में, तो क्या ये स्किल बेस्ड शिक्षा स्कूलों में दी जा रही है?
1: दी जा रही है। वर्तमान में यदि हम देखें तो जैसे आईटीआई कॉलेजेस जो खुले हुए हैं वो स्किल बेस्ड एजुकेशन का ही एक सर्वोत्तम

0: उदाहरण है, जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है।
1: और अगर जो आपने स्थानीय भाषा की बात की, और हाल ही में कुछ दिनों पूर्व हमने अखबार की सुर्खियों में और यहाँ पर भी हमने देखा कि आप मातृभाषा और स्थानीय भाषा का चुनाव तो आप नई शिक्षा नीति के तहत कर ही सकते हैं, लेकिन अभी की जो न्यूज़ है उसमें यूँ कहा गया है राजस्थान सरकार द्वारा कि प्रत्येक सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में राजस्थानी को अनिवार्य रूप से आप शिक्षण या पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो इसका इससे आप कितना बदलाव देखते हैं?
0: एक आमूलचूल बदलाव मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं उच्च शिक्षा में पिछले 45 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब कभी राष्ट्रीय स्तर पर जाता हूँ तो वहाँ पर देखता हूँ वहाँ के लोग या तो अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, और यहाँ तक कि ऑफिशियल जो उनका कन्वर्सेशन का रहता ना, तो वहाँ पर भी वो अपनी जो जैसे मान लो कोई तमिल भाषी है या गुजराती भाषी है तो वो तुरंत उस गुजराती भाषा पर आ जाएंगे। ये गुजराती भाषा या तमिल भाषा या केरला की जो कन्नड़ भाषा वगैरह है, इससे व्यक्ति का आपस में बहुत जल्दी जुड़ाव होता है। यदि हम राजस्थानी भाषा को यदि इस स्तर पर जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर सामने वाले व्यक्ति का और आपके बीच का जो संवाद का जो जरिया है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रगाढ़ स्थापित हो पाएगा।
1: प्रोफेसर साहब, आपने कार्यक्रम में जब हमने बात की नई शिक्षा नीति के लचीलेपन की बात की, लेकिन हम जब पुरानी शिक्षा की बात करते हैं कुछ चीज़ें अभी भी पुरानी शिक्षा की जैसे चल रही है, और जैसे उसमें सबसे प्रमुखतया देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम्स
0: जी।
1: लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को पुराने समय में जब कहा जाता था कि एक मुख्य परीक्षा होती एक तरीके से एक स्टेप है आगे बढ़ने का कि जब तक आप ये नहीं पार करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, और उसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था बोर्ड परीक्षाओं को पास करना। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि थोड़ा लर्निंग जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल लर्निंग की बात की गई, इसमें बच्चों में काम होमवर्क से ज़्यादा उनको रटने की बजाय उनको
0: समझ
1: प्रायोगिक रूप से उसको समझाते हुए शिक्षा देने की बात की गई। तो क्या ये बोर्ड परीक्षाएं जो पुराने तरह से चल रही थी और अब नई शिक्षा नीति में जो बदलाव आया उससे इनमें भी बदलाव अपेक्षित है या फिर ये इसी क्रम से चलती रहेगी?
0: नहीं नहीं, निश्चित रूप से बदलाव की बयार मैं देख रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा वह है जो हमको ज्ञान नहीं कराती है अपितु समझ पैदा करती है। यदि ये समझ बच्चों में विकसित होगी तो वो शिक्षा ज़्यादा जो है फायदेमंद होगी, मेरे नज़रिए से, मेरी राय में। इसलिए शिक्षा को एक ऐसा हम स्रोत बनाएं जिससे कि बच्चा रटने की बजाय समझने में अधिक जो है सक्षम बन सके, और वही शिक्षा ज़्यादा प्रभावी है जिससे कि बच्चा है जब वो शिक्षित होकर निकलता है तो वो दुनिया में अपनी समझ यदि उसकी अच्छी होगी तो उसकी वो शिक्षा काम में आएगी।
1: प्रोफेसर जयंत, एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि हम यहाँ पर वैसे तो तुलना कर रहे हैं पुरानी और नई शिक्षा प्रणाली की, लेकिन एक अगर दौर की बात करें, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई और उसी साल हमने महामारी का भी दौर देखा, तो जहाँ पर हम एक फिजिकल एजुकेशन या आमने सामने बैठ के जो अध्ययन अध्यापन का कार्य हो रहा था वो एकदम रुक सा गया था, और उसी समय घर बैठे लर्निंग, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ वर्क फ्रॉम स्टडी भी आ गया था, और उस समय में डिजिटल शिक्षा पर काफी
0: जोर दिया गया
1: जो समय की उस समय मांग भी थी। और आज हम ये भी देख पा रहे हैं कि कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाह रहे हैं या IIT और कोई प्रसिद्ध जो बहुत नामी संस्था है वो आज डिप्लोमा और काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज आपको ऑनलाइन या डिजिटल मोड पे करवा रहे हैं। तो क्या ये नई शिक्षा नीति में जो ये डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है आने वाले समय में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा?
0: देखिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि और आपने भी जैसे बोला कि 2020 और 2021 का जो विशेष समय था, महामारी का दौर था, कोविड समय था, उस पर वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन जो है टीचिंग का एक बहुत बड़ा प्रचलन हुआ था। निश्चित रूप से ये डिजिटल ये इस नई शिक्षा व्यवस्था में नीति में जो है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और न सिर्फ इसके ऊपर बल्कि मैं तो और कहूँगा कि टोटल हमारी जो भारतवर्ष की GDP है, इस नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था भी की गई है कि शिक्षा पर टोटल GDP का 6% इसके ऊपर व्यय किया जाए, जो कि बहुत अच्छा एक सरकार का कदम कहा जाएगा। और डिजिटल शिक्षा एक निश्चित रूप से बहुत अच्छी प्रभावी शिक्षा है, लेकिन फिर भी मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो ऑफलाइन टीचिंग का जो मेथड है, और एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महामारी के टाइम पर हमने जो है ऑनलाइन टीचिंग देखा, ऑनलाइन ठीक है कि बहुत उस पर खर्चा कम आता है, लेकिन

0: बच्चों में जो समझ विकसित होती है वो ऑफलाइन टीचिंग से ज़्यादा बेहतर होती है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि एक टीचर का अपने स्टूडेंट से आई कांटेक्ट ऑफलाइन टीचिंग से ही होता है, बजाय कि ऑनलाइन टीचिंग से। ऑनलाइन में जस्ट टीचर अपना जो लेक्चर होता है उसको वो रिकॉर्ड कर देता है और वो रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चों में दिया जाता है, ये ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था है। जबकि ऑफलाइन में टीचर को पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट जो बैठा हुआ है वो मेरी बात को प्रभावी रूप से सुन रहा है और कितना वो समझ रहा है, इस पे विशेष ध्यान देता है।
1: प्रोफेसर साहब, अगर हम बात की जाए, अगर हम जो नई शिक्षा नीति की प्रगति की बात करें, या फिर यूँ कहें कि हमारे प्रदेश में अगर नई शिक्षा नीति से आप कितना बदलाव विगत कुछ सालों में देख पा रहे हो और कितनी आपको इसमें उम्मीद है, उसके बारे में आप बताएं।
0: जहां तक राजस्थान प्रांत की बात है, राजस्थान प्रांत में यह शिक्षा नीति अभी शैशवकाल में है और निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों में इस नई शिक्षा नीति ने प्रगति तेज की है, किंतु ग्रामीण परिवेश में बात करें तो अभी भी शिक्षकों की कमी है, जो सरकारी संसाधन हैं और जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था मुहैया कर रही है वो बड़ी अभाव में है, बड़ी कमतर स्थिति में है, ये बड़ी बाधा मैं अपने आप को मानता हूँ कि ये यदि शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए जाएं, संसाधन समुचित रूप से उपलब्ध कराए जाएं और प्रशिक्षण सही ढंग से दिया जाए तो राजस्थान में इस नई शिक्षा नीति को प्रभावी तौर पर जो है लागू किया जा सकता है।
1: प्रोफेसर जयंत, अगर हम बात की जाए कि जो हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं और अगर संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में हम देखें,
0: जी
1: तो इसको अगर सफल बनाना है, इस नई शिक्षा नीति के क्रिया इस पर यह होगा कि इसके क्रियान्वयन की बात अगर हम
0: जी
1: करें,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: किस तरह से हम इसकी जो मूलगत जो मूलभूत जो नीतिगत इसका ढांचा है उसको अगर सुदृढ़ जैसा सोचा गया है,
0: जी जी
1: जैसी
0: जी
1: हमने परिकल्पना की गई है, उसी तरह का बने, उसके लिए आप क्या मतलब आप देख किस तरह से उसको आप देखते हैं, क्योंकि आप खुद विगत 45 वर्षों से शिक्षण और शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हैं, तो आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि भले मैं उच्च शिक्षा में विगत 45 वर्षों से लगा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा से कहीं अधिक बच्चों में संस्कार स्कूली शिक्षा की वजह से आते हैं। आज बच्चा अपने स्कूली टीचर से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है बजाय कि वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तुलना में, क्योंकि स्कूली टीचर जो है बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसकी जो है ध्यान देता है कि बच्चा आज कैसा आया, कैसा नहीं आया है, पढ़ने में कैसा रह रहा है, क्या नहीं है, जबकि ये उच्च शिक्षा में या शिक्षण व्यवस्था में दिखाई नहीं पड़ता है। हम लोग ये ध्यान देते हैं कि कौन सा बच्चा कॉरिडोर में बैठा हुआ है, क्लास में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस ओर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बच्चा हमारी क्लास में आ गया है हम उसको जो है अपना लेक्चर डिलीवर करके और बाहर आ जाते हैं। तो ये एक मोटा अंतर है स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में। अब फिर आपने जो बात पूछी कि राष्ट्रीय स्तर पर इस शिक्षा नीति को और अधिक किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है मेरी नज़र में, तो उसके लिए कुछ मेरे जो विचार में बातें हैं। एक तो ये कि जो क्रियान्वयन में राजनीतिक इच्छा शक्ति है उस पर अच्छा जोर दिया जाए, क्योंकि विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर बहुत काम आती है। दूसरा है कि अभिभावकों एवं समाज की भागीदारी को भी इसमें सुनिश्चित किया जाए, यानी देखिए सिर्फ सरकार और कुछ नहीं कर सकती, अकेली कुछ नहीं कर सकती है, शिक्षक कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, शिक्षण संस्था भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि अभिभावक जो कि जिसके जिसके पास बच्चा अधिक समय बिताता है वो जब तक न जुड़ जाए, और यहाँ तक कि समाज जो हमारा स्थानीय समाज है वो भी अपनी भागीदारी जब तक सुनिश्चित नहीं कर ले तब तक इस शिक्षण नीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा क्रियान्वयन में प्रादेशिक स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर बराबर निगरानी हो, उसका मूल्यांकन किया जाए। साथ ही साथ जितने भी राज्य हमारे भारत में हैं उन राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर इन सभी में, इन दोनों में जो है एक प्रभावी कोऑर्डिनेशन जो है सुनिश्चित किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। जैसे मैंने अभी कहा आपको, डिजिटल शिक्षा को जो है अधिक विस्तार दिया जाए। निश्चित रूप से GDP का 6% जो खर्च करने की बात कही है, मुझे ध्यान आता है कि दूसरे देशों में शिक्षा पर इससे कहीं ज़्यादा व्यय किया जाता है, क्योंकि शिक्षा पर किया गया व्यय एक व्यय नहीं है अपितु एक विनियोग है, ये मेरा एक व्यक्तिगत मान्यता है, सोच है। शिक्षा में हम जितना अधिक व्यय व्यय करेंगे दूसरे खर्चों पे हम उतना कम हमको खर्च करना पड़ेगा, इसलिए ये व्यय न होकर एक विनियोग है। जैसे मैंने आपको कहा कि मातृभाषा में

0: गुणवत्तापूर्ण सामग्री इसको उपलब्ध कराई जाए। फिर ग्रामीण स्कूलों में जो हमारे देश में, क्योंकि ग्रामीण जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन ग्रामीण स्कूलों में जो है आधारभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, और यही एक कारण है जिसकी वजह है शिक्षा सही ढंग से स्थापित नहीं हो पाई है। और शिक्षकों की भर्ती पर्याप्त मात्रा में की जाए और उनको प्रशिक्षण दिया जाए। मैं चूँकि उसी शिक्षा में हूँ, मैंने ओरिएंटेशन कोर्स किया, रिफ्रेशर कोर्स किया। ओरिएंटेशन में मुझे ये ट्रेनिंग दी गई कि किस प्रकार से मैं अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाऊं, और रिफ्रेशर कोर्स जो मैंने राजस्थान में और राजस्थान के बाहर जाके किया, तो अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को और अधिक कैसे इम्प्रूव करूं। तो बराबर यही बात एक शिक्षक के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी है कि जो इसको प्रभावी बनाया जाए।
1: तो आप थे प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा, और आज कार्यक्रम में आपने नई शिक्षा नीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे अवेयरनेस के तहत बातचीत, नई शिक्षा नीति और पारंपरिक शिक्षा नीति की तुलना। प्रोफेसर जयंत कुमार शर्मा से बात कर रहे थे गजेंद्र सिंह राठौड़।

0: और अब इसके साथ ही अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनीता, और मेरे साथ थे
1: भगवती लक्ष्कर। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार उदयपुर, ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुना रहे हैं हम गज़ल। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गज़ल के साथ।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुनिए ये गज़ल, और आइए अब गुलाम अली की आवाज़ में सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गज़ल।

श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी उदयपुर है। लीजिए अब सुनिए शीर्षक गीत। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके लिए शीर्षक चुना है इश्क।

0: तो श्रोताओं, शीर्षक गीत है आज का इश्क, और इश्क सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं, किसी की खुशी में अपना मुस्कान ढूंढ लेने का एहसास है। और जब आप इश्क में आते हैं तो बदले बदले से नज़र आते हैं। इश्क का वो खामोशी है जिसमें बिना कुछ कहे दिल सब समझ जाता है। कभी वह बारिश की पहली बूंद सा सुकून देता है, तो कभी अधूरी ख्वाहिश बनकर रातों में जगाता है। यही तो इश्क है।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब दिल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले,

बिल्कुल कहा भी है कि सच्चा इश्क इंसान को बदल देता है। उसकी सोच में नरमी, शब्दों में मिठास और आँखों में इंतज़ार भर देता है। ये सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं, रूहों का जुड़ाव होता है इश्क।

कमाल खान की आवाज़ में आपने इश्क की गहराइयाँ नापी और अब आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कि इश्क में दर्द भी होता है, पर वही दर्द इंसान को सबसे ज़्यादा गहराई में ले जाता है और जीना सिखाता है, क्योंकि मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर एहसास कविता बन जाता है।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

इश्क एक ऐसा एहसास है जो शब्दों में कम और खामोशियों में ज़्यादा महसूस होता है। जब किसी का नाम सुनते ही दिल मुस्कुरा दे, जब उसकी छोटी सी तकलीफ अपनी लगने लगे, जब बिना मिले भी उसकी मौजूदगी महसूस हो, शायद वही इश्क है।

श्रोता में इश्क में कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ अपनापन होता है। और वो इश्क रिश्ता है जहाँ एक इंसान दूसरे की दुनिया बन जाता है। कभी यह चांदनी रात जैसा सुकून देता है तो कभी तन्हाइयों में भीड़ से ज़्यादा शोर कर जाता है। लेकिन जो लोग सच्चा इश्क करते हैं वे टूट कर भी दूसरों को टूटने नहीं देते।

इश्क वो नहीं जो हर किसी को हो जाए, इश्क वो है जो किसी एक के बाद फिर किसी और का होने ना दे। ये दिल का सबसे खूबसूरत एहसास है, जहाँ किसी की आवाज़ भी सुकून बन जाती है, किसी का इंतज़ार भी अच्छा लगने लगता है और उसकी यादें अकेलेपन को भी ख़ास बना देती है।

इश्क में लोग अक्सर पागल कहे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया से ज़्यादा एक इंसान में अपनी पूरी दुनिया देख लेते हैं। सच्चा इश्क दिखावे से दूर होता है और आंखों में इजहार खामोशियों में वफा रखता है। उसमें मैं कम और हम ज़्यादा होता है। तो श्रोताओं, आज शीर्षक गीत में हमने सुना इश्क, और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए छोड़े जाते हैं। अब दीजिए इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

मेधावी आप श्रृणति कार्यक्रम शीर्ष गीत मीडियम है 266 देश में नजर जी मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 11 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

0: किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल इंप्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्म योगी प्रारंभ किया गया है जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्म योगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा यह भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे नौजवान सरकारी नौकरी के बाहर के विकल्पों की तरफ भी रुझान करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर स्टार्टअप्स की संख्या 2,26,719 तक पहुंच गई है और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से जनरेट होने वाले जॉब्स की संख्या 23 से 24 लाख, पेटेंट्स की संख्या 1,10,000 से अधिक। हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं जहां तक स्टार्टअप्स का ताल्लुक है और छठे दर्जे पर खड़े हैं दुनिया में जहां तक पेटेंट्स का ताल्लुक है। और महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें से 55% से अधिक पेटेंट रिजाइडिंग इंडियंस की हैं। यही पले बले, यही उनका शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, यही शोध किया और यहीं से पेटेंट दर्ज करवाया। आज भी इस समय देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों पर इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। पहले की तरह आज भी आपके द्वारा बटन दबाते ही 50,000 से अधिक नियुक्ति पत्र एक साथ जारी कर दिए जाएंगे जिनमें से 50% से अधिक रेल विभाग से ताल्लुक रखते हैं, जो इस बात की भी निशानदेही करता है कि किस तेज रफ्तार से मुल्क में आज रेल का विस्तार हो रहा है, खासतौर उन इलाकों में जहां कभी किसी ने कल्पना ना की थी। अभी पिछले ही साल आपने दरियाए चन्हाब पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का लोकार्पण किया और कश्मीर घाटी को जाने वाली वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ भी की। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हरेक योजना की कल्पना विकसित भारत के लक्ष्य को मद्देनजर रख करके की जाती है, तो ऐसे में ये युवा जब आपके हाथों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे तो साथ ही साथ उन्हें सन 2047 के भारत के निर्माण की जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। परमात्मा उनको सामर्थ्य दे, उनको क्षमता दे, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज पूरा विश्व तेजी से विकसित होते भारत की ओर उम्मीद और गौरव से देख रहा है। आज का ये रोजगार मेला भारत की विकास यात्रा में युवाओं के विशाल योगदान का संदेश लेकर आया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म।

0: ऐसी बढ़ता विकास के नित नए कीर्तिमान बनाता आज का भारत एक नए दौर में कदम रख चुका है, जहां सपनों की उड़ान केवल मेहनत और हुनर से तय होती है। रोजगार हो या स्वरोजगार, बीते करीब 12 वर्षों में करोड़ों युवाओं के सामर्थ्य को स्वावलंबन से जोड़ने के लिए सतत और सफल प्रयास हुए हैं। गांव, गरीब, किसान के बच्चे हो या मिडिल क्लास के, दूर सुदूर के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी हो या शहरों में रहने वाले, आज हर किसी के लिए सरकारी सेवा से जुड़ने का रास्ता भी एक ही है। लगन, परिश्रम और दृढ़ संकल्प, न सिफारिश, न जुगाड़ और न कॉन्टैक्ट, हकदार को ही आज मिलता है उसका हक, क्योंकि भारत सरकार की चयन प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी। इस प्रक्रिया के केंद्र में है UPSC, SSC, RRB और IBPS जैसी संस्थाएं, जहां हर योग्य युवा का सपना हो रहा है साकार। इन चयनित युवाओं को राष्ट्र सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है रोजगार मेला, जहां अपॉइंटमेंट लेटर पाकर ये युवा परिवार, समाज और राष्ट्र का बढ़ाते हैं मान।
1: रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं।
0: रोजगार मेलों के तहत अब तक लाखों युवाओं को इस पहल के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, और इसी क्रम को जारी रखते हुए आज रोजगार मेला के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रेल, इसरो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों में अनेक पदों हेतु नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इस सूची में शामिल है रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट तथा RPF कांस्टेबल, बैंकिंग सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, मैनेजमेंट ट्रेनीज व एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, इसरो में साइंटिस्ट, इंजीनियर तथा टेक्निकल असिस्टेंट, शिक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, सीनियर रेजिडेंट, CPSC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में मैनेजर, डिप्टी मैनेजर एवं असिस्टेंट मैनेजर, रक्षा क्षेत्र में नाविक जैसे विभिन्न पद। देश की समर्थ युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 के संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रही है। रेलवे को गति देने में, अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने में या वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में उनका योगदान हर क्षेत्र में दिखाई देता है। ये कर्मयोगी युवा सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं बदल रहे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार भी हैं और साक्षी भी। यही नए भारत की पहचान है, जहां हर उपलब्धि के पीछे मेहनत की कहानी है और अवसर की समानता का अटूट विश्वास है। रोजगार मेला युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति।
2: अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें।

साथियों, आज देशभर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है।

आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। साथियों, यहां तक पहुंचने के लिए आप सभी ने लंबी तैयारी और कड़ा परिश्रम जरूर किया होगा। इस उपलब्धि के लिए मैं आपको भी और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपको यहां तक पहुंचाने में आपके माता पिता और परिवार का योगदान कम नहीं होता है, लेकिन इतना भी यही है कि जैसे परिवार का योगदान होता है, समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होता है हमें यहां पहुंचाने के लिए। हम सिर्फ अपने कारण नहीं पहुंचते, सिर्फ अपने परिवार के कारण नहीं पहुंचते। इस विशाल देश के 140 करोड़ नागरिकों के योगदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और इसलिए हमारा दायित्व खुद के प्रति, खुद के परिवार प्रति, वैसे ही संपूर्ण समाज के प्रति भी रहता है। और मुझे विश्वास है इन सभी कामों के लिए आप अपने आप को और अधिक योग्य बनाएंगे। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको पता है अभी दो दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नीदरलैंड की मैं बात करूं तो नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी

और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ भारत के युवाओं को मिलने वाला है और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, एएसएमएल, एएसएमएल के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। एएसएमएल टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और एआई पार्टनरशिप्स, यूएई का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूए

और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूर पड़ती है, यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा। और स्वाभाविक है, रोजगार तो है ही है। भारत आज शिप बिल्डिंग से लेकर शिप रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का भी इकोसिस्टम विकसित कर रहा है। इसके लिए करीब 75,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपीज का निवेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत में ही हम पूरा एमआरओ इकोसिस्टम यानी मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटीज तैयार कर रहे हैं। इससे देश के एविएशन सेक्टर को बहुत मदद मिलने वाली है और भारत के युवाओं के लिए रोजगार का नया सेक्टर तो खुलना ही खुलना है। साथियों, भारत आज एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है और हम इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंप्लीट वैल्यू चेन भारत में ही बना रहे हैं। इसके लिए जो पीएलआई स्कीम चल रही है, उससे देश में रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हो रहा है और युवाओं को लाखों की संख्या में जॉब्स भी मिल रही है।

साथियों, ऐसे अनेकों अभियानों पर भारत का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। ये निवेश देश के युवाओं को देश में ही जॉब्स दे रहा है, उनके सपने पूरे कर रहा है। एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, जो कि आज नियुक्ति पत्र के भरने के बाद आपकी पहचान बनने वाली कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो उस नाते आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देश की कितनी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसमें ये मानी हुई बात है, आप भी जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब गांव, छोटे शहर और दूर दराज के इलाके विकास से जुड़ते हैं, तभी देश की प्रगति का लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। पिछले 12 वर्षों में रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कल्पना भर का तेज गति से विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, हर स्तर पर काम हुआ है। आज आप अपने क्षेत्र में किसी की भी दिशा में 100 किलोमीटर अगर जाएंगे तो भारत सरकार द्वारा कोई न कोई काम चलता हुआ नजर आएगा आपको। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। आज करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिला है। यानी दुनिया के कई देश हैं जिनके पास टोटल घर होते हैं उससे अनेक गुना घर हम नए बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो मेरा स्वच्छता का अभियान है उसको तो मैं कभी भी भूलने नहीं देता हूं लोगों को, और नहीं मैं भी भूलता हूं। उसमें शौचालय की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। करोड़ों घरों तक आज बिजली पहुंची है। रूफटॉप सोलर एनर्जी, कितने नए नए वेंडर्स मैदान में आए हैं। अब देखिए, जल जीवन मिशन से नल से जल पहुंचाना, मैं अभी देख रहा था कि मैं चाहता था कि शहरों में पीएनजी के कनेक्शन बढ़े, तो मुझे प्लम्बर नहीं मिल रहे थे, कमी पड़ रही थी, क्योंकि जल जीवन के मिशन में कई सारी बड़ी संख्या में प्लम्बर वहां लगे हुए थे। अब इधर मुझे एनर्जी के लिए बड़े शहरों में पीएनजी के कनेक्शन तेजी से बढ़ा रहे थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी कभी तो लोगों की जरूरत पड़े तो लोग कम पड़ जाते हैं। साथियों, इन बदलावों का असर सिर्फ सामान्य नागरिकों की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता। गांव तक सड़क पहुंची तो मार्केट तक आना जाना आसान हुआ, बिजली की सुविधा बेहतर हुई तो छोटे उद्योग धंधे आगे बढ़ने लगे, गांव में भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन होने लगा। पहले अगर वो लाल मिर्ची बेचते थे, अब बिजली आई तो लाल मिर्ची का पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना करके पैकेज बनाते हैं, पैकेज बना करके बेचते हैं। तो गांव में भी छोटे छोटे छोटे छोटे उद्योग इसके कारण बढ़ते जाते हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी तो गांव के लोग भी पूरे विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, आधुनिकता से जुड़ रहे हैं।

शहर और गांव का फर्क मिटता चला जा रहा है और इससे अर्थव्यवस्था की गति तेज हुई है और इन सब का पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है, लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री लिंक एजुकेशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दिया जा रहा है। IITs को मॉडर्न बनाया जा रहा है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को मजबूत किया जा रहा है, पीएम सेतु जैसे अभियान इसी दिशा में काम कर रहे हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 2,30,000 से ज्यादा, ये आंकड़ा याद रखिए, 2,30,000 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं और उसमें भी दो चार नौजवान भी जुड़े हुए होते हैं। अहम बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और मुझे इसका सबसे ज्यादा आनंद है। आजकल तो Tier 2 और Tier 3 शहरों के युवा भी बहुत बड़ी संख्या में स्टार्टअप और इनोवेशन की दुनिया में अपना ताकत दिखा रहे हैं, उनके सामर्थ्य की नोट लेनी पड़ रही है। ये परिवर्तन अब देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस बदलाव में हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। आज बड़ी संख्या में विमेन लेड स्टार्टअप्स, ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत

के लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है। सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही हैं। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे तो यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।

0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: देख तो अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

श्रोता भी आप सुन रहे थे हमारे दिल केंद्र से विशेष कार्यक्रम। मीठी भी 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का उत्थापन केंद्र है।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहां आयोजित किया गया है और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहेंगे?
2: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
1: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
2: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था।

0: था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की ज़रूरत है। तो मैंने ऑडिशन दिया, उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद। तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। तो जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। तो इस तरह मेरे रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या। तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
1: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
0: डर
1: हाँ, मन में डर जो होता है।
0: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
1: क्या बात है।
0: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे। तो कोई भी आते हैं तो वो पिताजी मुझसे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते ही रही। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
1: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से। क्या
0: बिल्कुल,
1: बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी। ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
0: हाँ शुरुआत तो मेरा कर्नाटिक म्यूजिक से था। 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था। फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह। तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही है, 11th कही है,
1: जी,
0: तो पास हो गई थी। पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो, और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो उन पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में
1: जी
0: ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल ओ बी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
1: अच्छा
0: तो पिताजी ने कहा तुम 8 सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के आओ। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था।
1: जी
0: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका, और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर
1: जी
0: हो
1: जी
0: जाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो

0: अदर्स वर्ड वॉज लास्ट, तो ले लिया मैंने। और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु के का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
1: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जितने

0: था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी। सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
0: जी।
1: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए दो शैली, वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी। तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
0: जी
1: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
0: जी।
1: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
0: और पंडित ओंकार नाथ जी के बारे में कुछ?
1: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
0: जी,
1: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मैं, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
0: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
1: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
0: जी।
1: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
0: हाँ जी।
1: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी, पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया
0: जी।
1: वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
0: जी जी,
1: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है, तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
0: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
1: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था।
0: हाँ।
1: फिर भी अगर हुआ होगा तो चैन नहीं होता था
0: जी, जी।
1: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
0: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सवाल ऐसा है,
1: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
0: अच्छा।
1: मेरे पेरेंट्स के।
0: हाँ।
1: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है।
0: हाँ।
1: चाहे लड़की हो या लड़का।
0: हाँ।
1: पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
0: हाँ हाँ जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय, भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी

0: छुहल का फुल का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन वायलिन को लेके
1: नहीं,
0: होता था?
1: मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
0: वाह, बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन,
0: जी
1: वायलिन
0: जी
1: में,
0: जी जी
1: इंस्ट्रूमेंट में,
0: इंस्ट्रूमेंट में।
1: जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
0: हाँ, क्या बात। अम्मा जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो उसके बारे में हमें बताइए, जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी
0: सेमी क्लास।
1: क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज़्यादा थे, पुरुष कलाकार ज़्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थीं। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत से लोगों का।
0: जी
1: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: वाह। अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है, उसकी बात करते हैं अम्मा जी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्ला खान साहब के साथ जो जुगलबंदी, वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
0: जी,
1: खूब उन्होंने प्रोत्साहन दे
0: और जो
1: दिया।
0: कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की थी?
1: बिस्मिल्ला खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
0: हाँ जी, हाँ जी
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली।
0: जी
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है और कहाँ वायलिन खत्म होता है, वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से
0: वाह,
1: समझ में आता
0: बिल्कुल
1: था
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लोगों को।
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन ने पिता तुल्य थे मेरे लिए। वो
0: बिल्कुल। और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके साथ
1: मेरे
0: जुगल?
1: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो तब वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं
0: जी
1: दोनों
0: जी
1: में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि
0: जी
1: सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या क्या समानता है।
0: वाह। सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपने, आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो समप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि

0: इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
1: जी जी
0: फिर भी लोग बनाते हैं, तो उससे मुझे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है। पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की।
1: जी
0: जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उन्हीं को हम उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है। तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया।
1: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
0: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है, उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
1: जी बिल्कुल,
0: बनारस में मेरे गुरुदेव गुरुजी भी रहते थे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
1: हाँ जी
0: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए। तो मेरा कार्य, हम टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो गा बजाते हैं ठीक से, उनके भी कार्यक्रम होते थे।
1: जी
0: तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे
1: हाँ
0: बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो वो पूछा इतने में करोगी तुम, मैं कोशिश करूँगी। तो उसके बाद उन्होंने बड़ा बड़ा ख्याल का सिखा दिया, बड़ा ख्याल
1: जी
0: स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल चल वहाँ से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहाँ हलचल हुई,
1: अच्छा
0: थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रहे थे लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो जो जो हलचल जो हो रहा था, तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो
1: अच्छा
0: मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे और मैंने उनको कहा, अब मैं निश्चिंत थी यही कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, हम बच्चों
1: जी
0: का
1: जी
0: प्रोग्राम। तो आए छड़ी ले करके वहां, वो उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए,
1: जी
0: तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। तो हाँ चल,
1: हाँ
0: मुझसे मैं उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके बाद वो आके बैठे। कब जब आए तो हाँ चल बजा, तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट राग देश बजाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो,
1: जी
0: मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका, एकलव्य का। तो
1: जी
0: लोग हाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और सुन मुझसे सीख करके आज बजा दिया
1: वाह,
0: है। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह वो।
1: अम्मा जी 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं। तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाए बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता
0: हाँ,
1: है आपको?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते

0: हैं, उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी,
1: जी
0: पर मैं यही सोचती हूँ, हमें ये इतना बड़ा समुद्र है, इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है,
1: जी
0: तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ,
1: क्या
0: उसमें
1: बात,
0: मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है आजकल, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो,
1: जी
0: बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच माजी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी की, आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। ये आपको ले चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में। फिल्म संगीत प्रारंभ करने से पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री,
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है,
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

कहते हैं कि दिल में दर्द छुपा कर रखा है, आंखों में सपना सजा कर रखा है, कहीं टूट न जाए ये नाजुक रिश्ता, इसलिए है कदम को संभाल कर रखा है।

क्या रहेंगे दिल की धड़कन बनकर दिल में रहोगे, हर खुशी बनकर साथ रहोगे, छूकर कभी देखना हमारी तन्हाई को, हर पल तुम्हारी याद में रहेंगे।

श्रोता कहते हैं कि दिल का रिश्ता बड़ा ही अजीब होता है, हर दर्द इसका नसीब होता है, जो निभाते रिश्ता उम्र भर वही सबसे करीब होता है।

0: श्वेता कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही खास होता है, कभी हंसी तो कभी एहसास होता है, छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है, पर दिल से दिल का हमेशा साथ रहता है।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो।
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
1: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोता फिल्म संगीत कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय दोपहर के 1 बजने को हुए, आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी पर है और उन्हें इस संकल्प के लिए भागीदारी निभानी होगी। देश में 47 स्थानों पर आयोजित 19वें रोजगार मेले में आज प्रधानमंत्री ने 51,000 युवाओं को वर्चुअल माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने अपनी हाल की 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के देश भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर।
0: प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में 1,60,000 से अधिक भर्तियों पर काम चल रहा है, जिसके लिए 4 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थी, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला ले तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित।
0: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में

0: काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। इन पर प्रति लीटर करीब 91 पैसे बढ़ाए गए हैं। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। हाल के दिनों में इन पर अब तक लगभग 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कोटा में एक नए इलेक्ट्रिक लोको शेड खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे बिजली के इंजनों के रखरखाव और दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। कोटा में इस लोको शेड के बनने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अजमेर में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार बनाया जाएगा। इस पर 28 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने आज इसका शिलान्यास किया। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत बजरी खनन भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई में 392 से अधिक मामले दर्ज किए। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पिछले महीने जारी निर्देशों की पालना में इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाया गया है। धौलपुर और करौली जिला पुलिस की ओर से चंबल नदी के प्रभावित तटीय क्षेत्रों में रेत कारोबारियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने जुड़ गए हैं आकाशवाणी उदयपुर को। इस समय दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में महिलाएं सुनेंगी अपना चहेता कार्यक्रम सेलियारी पाड़ी।

0: राम राम नीमा वैसा, राम राम।
1: राम राम अनीता वैसा, राम राम। और हेलिया रिवाड़ी कार्यक्रम होने वाली अपनी सभी सखी सहेलिया बिना हाथना ने आपनों
0: राम राम,
1: राम सा। देखो अपनों कार्यक्रम टेम व्यो ना अपने स्टूडियो में नरी हरी अपनी बिना आएगी है ये मोनू बैसा ना कई के ने जमकू बाई ने सीता बाई ने मांगी बाई ने शारदा बाई ने नीमा बैसा ना हंगला जना आई गया है अटे। और देखो अपने घरे भी रेडियो रे आसपास जी बिना अपनों कार्यक्रम होने रहेगा तो भी सोच रही कि भाई आज अपने कई कई जानकारी देगा और जानकारी तो दे गई लेकिन आप ही मनोरंजन भी करावांगा सा।
0: बिल्कुल सा। देखो आज आप अपनी बहना ने बतावा विचार वाली बात में कि जो हस्तशिल्प रा जो अवसर है वे अवसर कई कई विषय यानी कि हस्तशिल्प करीन बहना घनी तरह आगे बढ़ सके है मारो आर्थिक जो कारण में वे किस तरह आगे बढ़ सके है व्यावसायिक अवसर ने घनी तरह आगे बढ़ सके या पचापा कहाँ तो महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रो विकास घनी तरह वे सके है।
1: बिल्कुल सा। पहले तो देखो आज 20-25 साल पहले पहले मशीनों जी चीज बनती
0: बिल्कुल
1: बनाने ज्यादा पसंद करता।
0: हाँ जी गिरा।
1: लेकिन आजकल टाइम पे कई है कि हाथ वणी थकी चीज ज्यादा पसंद करे।
0: हाँ हाँ।
1: चाहे तो पैया वता देना पड़े लेकिन हाथ वणी थकी चीज ज्यादा मांग है।
0: बिल्कुल सा। और देखो सा वैसा हस्तशिल्प अगर क्षेत्रीय अगर आप बात करा तो आज टाइम पे केवल परंपरा ने सहजना तक ही सीमित नहीं बल्कि आप बात करा तो यो आत्मनिर्भरता ग्रामीण विकास वैश्विक व्यापारो एक बहुत ही बड़ो जरियो बन चुको है सा। और देखो अपने भारत और विशेषकर अगर अपने राजस्थान की अगर बात करा तो यानी मैं सांस्कृतिक रूप हूँ समृद्ध जगह पर हस्तशिल्प में करियर और व्यवसाय बेहतरीन अवसर मौजूद है सा।
1: और देखो आजकल रो जो युग है डिजिटल युग है अमेजन ऐसी और नई सरकारी पोर्टल भी है जे
0: हाँ।
1: और जरिए भी अपना जो कारीगर है वे सीधा अपना जो उत्पाद है वे अपने देश में ही नहीं विदेश में भी बेच सके। और जो बिचौलिया जो भूमिका वे जो कि वनो मुनाफो सीधो कारीगर ने नहीं मिले
0: बिल्कुल
1: वो कारीगर ने मिल सके खुद खुद करे तो है नहीं।
0: बिल्कुल सही बात की दिशा। और अन्य अलावा अगर आप बात करें तो देखो महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में भी अगर बात करें तो अपने स्वयं सहायता समूह जो कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला और स्वयं सहायता समूह जिस तरह की राजीविका है या अन्य जितना भी क्षेत्रीय कार्यक्रम है वनडे माध्यम भी संगठित वे हस्तशिल्प जो काम है शुरू कर

0: सकी है और करी भी रही है, वो ये ओनर आर्थिक रूप आत्मनिर्भर भी बनाने में सशक्त है सा।
1: बिल्कुल सा। और आजकल कही है कि देखो व्याह शादी तीज त्योहार जे भी वेवे या जन्मदिन में कहीं भी वेवे,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आजकल हाथ उवणी थकी चीजा वापस उपहार
0: उपहार
1: में
0: रूप में
1: लेवा
0: दीज।
1: में
0: हाँ हाँ
1: है, तो अगर आप इन्हें जो कारीगर है भी ऐसी चीजा बनावे जन व्याह मंडे में दे सका कर सका, तो और भी बना रो जो यो व्यवसाय है बहुत ही अच्छी तरीका
0: आगे बढ़े
1: आगे
0: सा।
1: बढ़े सा।
0: और अंडे लवा पवाद करा तो घरे बैठे भी रोजगार कर सके, जिस तरह की कढ़ाई है, सिलाई है, मोजरी बनाना है, सजावटी सामान तैयार करना, एक ऐसा काम है जने की महिला अपने घर का काम काज रहते रहते अपनी सुविधा अनुसार इन्हें कर सके ऐसा। और बात करा तो स्थानीय हुनरी पहचान भी वेगा, क्योंकि गाँव में जो पारंपरिक रूप उचारी थकी जो कला है, जिन्हें आपा की कठपुतली बनाना है, दरी बुनाई करना है, असी लाखरी चूड़िया बनानी, ये व्यवसायिक रूप ने दे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने और भी मजबूत करे है ऐसा।
1: और बिल्कुल सा। और जटे अपने पर्यटक क्षेत्र में वटे भी अपने जो ये कारीगर है अपने जो हस्तशिल्प ने लेन अगर कोई भी दुकान है या कोई भी छोटी मोटी जगह लेन अगर बैठे हैं, तो
0: हाँ
1: भी अनारी बहुत मांग रहे कारण बहुत ही अच्छी बिक्री बेच सके और ये हाथों हाथ बेचाई भी जाएगा, तो वहीं उन्होंने अच्छा मुनाफा भी मिल सके।
0: बिल्कुल सर। और अगर आप सरकारी योजना और सहयोग की बात करें

0: કરે સા
1: और बिल्कुल सा। और जटे अपने पर्यटक क्षेत्र वे वटे भी अपने जो कारी ये कारीगर है अपने जो हस्तशिल्प ने लेन अगर कोई भी दुकान है या कोई भी छोटी मोटी जगह लेन अगर बैठे है
0: हाँ
1: तो भी अनारी बहुत मांग रे कारण बहुत ही अच्छी बिक्री वही सके और ये हाथों हाथ वेचाई भी जाएगा तो वही उन्होंने अच्छा मुनाफा भी मिल सके।
0: बिल्कुल सर। और अगर आप सरकारी योजना और सहयोग की बात करा तो देखो सरकार हस्तशिल्प क्षेत्र ने बढ़ावा देवर वास्ते कई तरह की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। जेने में आप बात करा तो मुद्रा योजना जो कि कम ब्याज पर आना लोन ले सके है, नए हुनर है, व्यवसाय शुरू कर सके हैं, क्योंकि वे आना आसान भी रहेगा और उन्होंने लोन भी उपलब्ध करा सकेगा सा।
1: बिल्कुल। और अन्य अलावा सरकार प्रशिक्षण भी देवे और अन्य अलावा आप जो भी काम कर रहे हो वन में जो काम आवा वाला जी मशीन है टूल है कोई भी किट है आप रे तो वन में भी आप सरकार छूट देवे। अन्य अलावा जी भी प्रदर्शनी और मेला लागे है वन में भी आपने बहुत ही कम कीमत पे या और भी आपने पैसा दे इन वटे आपने दुकान मिल सके जटे आप हुनर जो भी है वटे आप बेची सको और बिक्री कर अच्छा मुनाफा कमाई सको।
0: तो नीमा भाई साहब कह सका कि अगर बेना चाहे तो हस्तशिल्प जो अवसर है यानी अवसर ने आगे बढ़ावे तो देखो वो बहुत सारे काम कर सके हैं, अपना व्यवसाय ने आगे बढ़ा सके और दो पैसे की आमदनी भी कर सके हैं सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो सा जानकारी तो आप ही नरी हारी लाया हाँ आगे अपनी बेना ने जानकारी देवांगा की सभ्यता संस्कृति ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कमाई आप ही किस तरह कर सका।
0: बिल्कुल सा
1: लेकिन वणियों पहली हुणावा राजस्थानी गीत
0: हाँ सा।

0: बोले तो मीठो लागे हुणे बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और अभी आपने बिना ने जानकारी दी रहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो वे वहीं पे कणी तरीका वो कमाई कर सके बिना।
1: बिल्कुल भाई साहब, बात की थी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आज के टाइम पे आप बतावा कि कमरों एक बहुत ही बड़ो और बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। ऐसा चाहे कोई छोटो व्यवसाय है या घर में काम करवा वाली महिला है या पचे कोई भी नया स्टार्टअप शुरू करना चाहे तो भी ई कॉमर्स सभी आप वना कणी दुकान रहे है या कोई भी शोरूम रहे वरना भी अगर आप चाहवा तो ये बिजनेस आप आराम घरों बैठे कर सका। हाँ सा
0: बिल्कुल सर। और देखो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में तो मुख्य रूप जैसे खुदरो प्रोडक्ट है या खुद
1: हाँ
0: आपने जो जैसो कि आप ये पहली बात करी कि हस्तशिल्प रहा है या और भी कोई भी चीज़ अगर आप बनाई रहा हो तो विने आप सीधा अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे भेज सको। यो बहुत ही बड़ो प्लेटफॉर्म भी है जिन पे अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो जैसे नरी हारी कंपनियाँ हैं जिनने माध्यम आप रजिस्ट्रेशन कराई और अपनों जो जो भी सामान है वो पूरा देश में विदेश में बेची सका सर।
1: बिल्कुल सर। और अगर आप स्थानीय और पारंपरिक सामान की बात करा तो अगर आप हस्तशिल्प आप बार बताए हो जिस तरह की अचार है, पापड़ है, पारंपरिक कपड़ा है, जैविक उत्पाद है, बनाना है, ये आना सबने भी आप प्लेटफॉर्म के जरिए आपने बहुत बड़ा बाजार मिल जावे तो आप वटे भी आसानी उन्होंने बेची सका। हाँ सा
0: बिल्कुल सर। और अन्य अलावा देखो आप अगर घरेलू महिला और आपके पास टाइम है और आप खुद कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं कर रहा हो
1: बिल्कुल
0: और
1: सा
0: जी उत्पादित कर रहा है वनारो जो सामान रो भी आप जैसे कर सको रीसेलिंग वनारो सामान भी आप बेची
1: हाँ
0: सको कि भाई यो उत्पाद है यो बहुत बढ़िया है वरने अच्छा या वनाई आपने बेच
1: बेची
0: सको।
1: सका। हाँ सा और अन्य अलावा देखो यदि कोई ग्राहक अपने जरिए ऑर्डर दे रो है तो अपने वने में अपनों प्रॉफिट मार्जिन वे
0: बिल्कुल मिले
1: विने
0: सर।
1: भी जोड़ी मंडो भी ऑर्डर जो वे वो भी आपने प्लेस कर सके हैं, कंपनी सीधो ग्राहक तक सामान पहुँच ही सके हैं, अन्य कोई वेगा कि बिचौलियों नहीं रहेगा और अपने जो मुनाफो है वो डायरेक्ट अपने बैंक में भी आ सके हैं। ऐसा
0: और देखो अभी आप ही बात कर रहा है कि यो काम किस तरह वे तो यानी प्रोग्राम हो आप ही मुफ्त में जुड़ सका। हाँ आपने कोई भी लिंक है या जो भी आप कंपनी चुनना चाहो या जानी
1: हाँ
0: कंपनी में आप काम करना चाहो वनो लिंक मिल जाए वनी लिंक को आप अपने जुड़ जाओ और बटू आप कोई भी सामान रो भी कहवे कि भाई अणी सामान रो माने जो रीसेलिंग करनी है या अणी सामान ने बेचनो है तो भी आपने वो प्लेटफॉर्म प्रदान करे
1: दे
0: सर।
1: देवे सा। और वहीं में
0: हाँ
1: देखो अपने कैश नहीं करना, अपने अगर कोई व्यक्ति आपने दी तो कोई लिंक है वहीं पे
0: हाँ
1: आपने क्लिक करना और वटे जटे भी सामान जो भी आपने खरीदना है वहीं कंपनी ने अपने खुद वणी में वंडो प्रतिशत भी लिखियो तो कोई कि कतरो वंडो कमीशन
0: कमीशन देनो
1: वेगा।
0: कतरो नहीं देनो।
1: हाँ तो ये
0: हाँ
1: सब वणी में लिखियो तो को आएगा, बस वहीं ने आपने क्लिक करना, बड़ो आसान तरीको है तो आपने बिना चाहे तो यू कर सके ऐसा।
0: देखो सर आजकल तो अनीता पैसा कही है कि मोबाइल सबरे पास है
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: आप ही
1: सा
0: हर कहीं रीला नहीं देखा ना आप ही काम रे चीज ही का
1: हाँ
0: क्योंकि आपा पया लगाइन अतरा हरा पया लगाइन मोबाइल खरीदियो है
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर
0: वनो कहीं ना कहीं तो बढ़िया इस्तेमाल करा। यूं नहीं कि देखते ही रहा रीला ना कहीं खराब करा ना अपनो पयो ही खाम करा टेम ही खैरू करा तो अणी बच्चे बढ़िया है अपनी बहना की कणी चीज ने थोड़ो सो हीक जाओ। अगर आपने नहीं आवे कही या चीज तो कणी जने आवे वणी के थोड़ो हीक जाओ और अणी तरीके अगर आप पैसों कमाओगा तो आप घर बैठे भी आप लोग खर्चो निकाल सको।
1: बिल्कुल सर। अगर आप ई कॉमर्स का मुख्य फायदा ही अगर आप बात करें तो सब अच्छी बात है, कहीं में कम लागत लगे, आपने कहीं भी बाजार में महंगी दुकान किराए पे नहीं लेनी पड़े, सजावारी जरूरत नहीं वे और डायरेक्ट
0: बिल्कुल
1: आप डायरेक्ट जाओ तो आप डायरेक्ट इन्हें बेच सके। हाँ सा और अन्य अलावा बड़ा बाजार है, दुकान है, अन्य भी अपने शहर है मोहल्ला है तक सीमित नहीं रहे बल्कि देखा तो पूरी दुनिया में पूरा देश में ये सामान आप खरीद सका ले सका घर बैठे आराम यू काम कर सका। हाँ सा।

0: तो आप कह सका है कि अगर आपने बेना चाहे तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कमाई रो एक बहुत बढ़िया माध्यम है। अगर कहीं भी छोटा मोटा भी काम करी अगर प्लेटफॉर्म पे बेचेगा तो देखो दो पैसा फायदा होना अवश्य वेगा सर।
1: बिल्कुल सर, देखो आगे और भी जानकारी देवांगा कि जूट रा बैग रो जो उद्योग है वनवे अपना जूट रा बैग किस तरह बनावा और वनवे उद्योग किस तरह लगावा, लेकिन वनवे पहले होना राजस्थानी गीत।

0: तो भाई सही, तो बढ़िया गीत आप अपनी बहना ने सुनाया सा और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा सा। और बात करा तो देखो मेला रा जितना भी बिकता थका स्थानीय उत्पाद हैं, वे कई कई उत्पाद वैसे के जो कि आप अपना मेला में बेच सका हो, अपना अपनी बहना चावे और बना उत्पाद ने घरे वणाई मेला में बेचेगा तो देखो 2 पैसा री आमदनी बना रही बत्ती वेवेगा सा। तो देखो ग्रामीण अंचल और सांस्कृतिक उत्सव में लागवा वाला जितना भी मेला है वाणी में स्थानीय उत्पाद रही अगर आप बात करा तो बिक्री केवल एक व्यापार नहीं बल्कि आप बात करें तो अपनी समृद्ध विरासत है, आत्मनिर्भरता है और ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है मंडी रीढ़ भी है सा। यदि मेला में स्थानीय उत्पाद बिके हैं तो वे सीधा तौर पर अपने ग्रामीण परिवार है, महिला स्वयं सहायता समूह है या पचे स्थानीय कारीगर रे पसीना री जब कमाई वे मंडी कला और एक बड़ो मंच देवे है सा।
1: देखो सा मेला में जितना भी उत्पाद है या जी भी सामान आप ले जावा वड़ा में पारंपरिक जो उत्पाद है जैसे अपने खाना में ले ला तो खाना में भी जैसे पापड़ है, अचार है, अपने जो दलियो है और मंगोड़ी है, अच्छा वड़ी है, जी भी चीज़ें आप ही घर में बनावा हाँ वही भी अपने बहुत ज़्यादा पसंद की हो जाए और उन्होंने बिक्री भी हाथों हाथ भी जावे सर।
0: और देखो स्थानीय मसाला और अनाज भी अगर आप बात करें तो शुद्ध जितना भी पीसा तक स्थानीय मसाला है जिनमें जैविक अनाज है, बाजरा है, मक्का है, मोटो अनाज है, यहाँ सब में कही कि पौष्टिकता जो उत्पाद है वो हाउ वे तो कही कि बाजार में हाउ तरह विके हिस्सा और मुनाफो भी हाउ मिले ऐसा।
1: और जटे बात करा कि मिठाई तो मिठाइया में देखो गजक है, चिक्की है या ऐसी चीज़ें है जी शुद्धता ज़्यादा रहे जैसे

0: भूंगड़ा है, मूफलिया है, तो अनारो भी अगर अपन घर में अगर कोई भूंगड़ा वणाइन या मूफलिया सेकिन बढ़िया भी खारी मूफलिया है, ये अनारो भी अगर उत्पाद बनावे तो ये भी अपने मेला में हाथों हाथ बिकी जाए।
1: और अनी तरह अगर आप हस्तशिल्प है या पे कुटीर उद्योग की अगर बात करें तो मिट्टी का बर्तन है जिससे की कलाकृतियां जन्मे कुमार द्वारा चाक पर बनाया था कवे सुंदर मिट्टी का घड़ा वे दिया है, खिलौना है, सजावटी बहुत सारा सामान अलग अलग
0: तरह में। देखो अनीता भाई साहब, पहली तो अब कुकर भी आवा लगे है मिट्टी, मिट्टी का कुकर आवे, मिट्टी री अपने पानी री बोतल आवे, घर आ बने था कि अपने हांडिया आवे,
1: हांडिया है बनाई है, बहुत सारी चीजें
0: तो ऐसी चीजें है जने आप उपयोग करा तो अपने स्वास्थ्य बातें भी ठीक रहे, और आप ही अगर मेला में लेन चाहिए तो नई चीज अगर बटा दिखेगा तो लोग बाग अनाने हाथों हाथ खरीद लेगा।
1: बिल्कुल सर, दिखवा में भी बहुत ही सुंदर लगे ऐसा। और अंडे लावा लकड़ी है, बांस की जितनी भी वस्तु है जड़े में भी आप देखा तो हाथ उतारे ऐसा तक लकड़ी रा खिलौना है, रसोई रा सामान है, बांस होने तक की खूबसूरत सुंदर सुंदर टोकरियां हैं, चटाइयां हैं, मेट है। याने की बात करा तो देखो ये भी बाजार में हाउतरों बिके हैं सा।
0: और देखो आपने राजस्थान ने तो कहवे रंगीलो राजस्थान,
1: बिल्कुल
0: और अटे अपने सब बेना है देखो रंग बिरंगा कपड़ा पहरे, और अटारे कपड़ा री तो बात ही अलग है, जटे अपने बांधनी री बात करा, लेरिया री बात करा है,
1: चुंदड़िया
0: और चुंदड़िया है, लेरिया है, और अपने ये जो पेच वर्क करा जटे काम
1: बिल्कुल
0: है, तो अणा हुई था कहूँ वणाई था कि जी डिजाइन है तो अणों जी वणा था का जो कपड़ा है वणा री मांग भी अपन बहुत ज्यादा है, और अणा कपड़ा ने अगर आप वणाई और हीविन भी अगर बेचोगा तो भी ये बहुत ज्यादा उत्पादित।
1: बिल्कुल सर, रानी तरह अगर आप बात करा तो खेती बाड़ी की अगर बात करा या पे बागवानी जुड़े थका उत्पादरी भी बात करा तो देखो जैविक खाद री और बीज री बात करा तो किसान द्वारा तैयार किया थका जैसे केचुआरी खाद है, जैविक कीटनाशक है, पारंपरिक फसल है, उन्नत बीज है। अंडारी भी बात करा तो देखो अणी में भी अंडो भी अगर आप देखो घरे तैयार किया थको हुए तो ये भी बाजार में हाउ तरह जावे ऐसा, क्योंकि वे सब चीजें जैविक वे हैं ऐसा।
0: और ये तो आप बात की थी खेती बाड़ी री घर रही, और जो ठेठ जंगल री अगर बात करा कि आपने जंगलात में देखो हेत वे तो हेत पे भी आप लाइन बनाने का बेची सका, अन्य अलावा नरी हारी ऐसी जड़ी बूटिया वे जी आपने वटे में जंगल में मिले सा,
1: हाँ सा।
0: तो भी लाइन आपने आना ने बेची सका,
1: बिल्कुल सर,
0: और दो पया कमाई सका।
1: हाँ, क्योंकि वे जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वे औषधि पौधा भी वे जिस तरह आप बात कर ला तो गिलोयरी बेल है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, बहुत सारी चीजें हैं जो जंगली जो पौधा आप जिन्हें पके वहाँ तो ये औषधि में काम आवे, तो ये भी काम अंडो भी अपने बेना चाहे तीन आगे बेच सके हैं मेला में, और अन्य तरह स्थानीय उत्पाद बिक्री करेगा तो वहीं वहां में फायदा भी हाउ मिलेगा सा।
0: और देखो अणियों कोई सीधो मुनाफो वे और अपनी संस्कृति जो संरक्षण भी वही जा तो अपनी बेना ने तो कहा कि देखो बार छुट्टी है तो बच्चा बच्चे भी घरे कई काम भी नहीं है तो थोड़ा होचो कि आपने अबे जीवन में कई करना, क्योंकि बच्चा अबे आपरा बड़ा वही गया है और आप नरो टेम है तो आप कहीं ना कहीं उत्पाद बनाई सको।
1: बिल्कुल सा, और अभी को तो अपनी बहना ने एक और बढ़िया राजस्थानी लोकगीत सुनाओ सा।
0: बिल्कुल सुनाओ सा।

0: यो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और अबे आपने बहना ने जानकारी देवा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी थकी कई कई योजनाएं, क्योंकि सरकार टेम टेम पे देखो आपने विकास रे बाते, आपने बेना रे विकास रे बाते, आपने बाल बच्चा रे विकास रे, आपने गांव रे विकास रे बाते, नरी हरी योजनाएं बनावे। तो मने कई कई योजनाएं बने जानकारी देवा सा।
1: देखो अपन बात करें तो भारत में ग्रामीण विकास रे गति देवार वास्ते जहाँ गरीबी उन्मूलन है, ग्रामीण आबादी रे जीवन स्तर ने सुधार वास्ते सरकार द्वारा घनी हरी महत्वपूर्ण योजना चली जा रही है। और अन्य योजना रो जो मुख्य रूप बात करें तो रोजगार है, बुनियादी ढांचा ने या पचे आवास और सामाजिक सुरक्षा है, असी क्षण में बांटे जा सके हैं ऐसा। तो मुख्य योजना री अगर बात करें तो रोजगार एवं आजीविका की बात करें तो मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जहाँ। और अंडो उद्देश्य की बात करें तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार ने एक वित्तीय वर्ष में कम कम 100 दिन तक कारंटीकृत अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान की दो जावे सा।
0: और देखो अन्य अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो डे NRMLM है, जो अंडो जो उद्देश्य है ग्रामीण परिवार जो है वनाने स्वयं सहायता समूह में संगठित करीन वनाने जोड़नो और वनानी आजीविका में सुधार करना है। अन्य अलावा प्रभावी बात करा तो अन्य तहत जितनी भी महिलाएं हैं वनाने कौशल प्रशिक्षण दियो जाए, वित्तीय सहायता दी जाए और स्वरोजगार का अवसर दिया जाए। अन्य अलावा जितना भी लघु उद्योग है जैसे अचार पापड़ सिलाई और कृषि आधारित जितना भी उद्योग है वे भी अणियों जुड़ सके।
1: बिल्कुल सर। और देखो बुनियादी ढांचा और आवास की अगर आप बात करें तो देखो प्रधानमंत्री आवास योजना चंडी बात करें तो अंडो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में जितना भी बेघर और जीर्ण शीर्ण घर में रेवा वाली परिवार है उन्हें बुनियादी सुविधा ने युक्त पक्को मकान बनाने वास्ते वित्तीय सहायता देना है ऐसा। और सहायता की भी बात करें तो देखो इनमें भी मैदानी क्षेत्र में कुछ अड़ा ने सहायता भी मिले हैं ऐसा।
0: और अन्य अलावा एक और योजना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अन्य उद्देश्य यो है कि मैदानी क्षेत्र में 500 और पहाड़ी क्षेत्र में मरुस्थल में 250 प्लस की आबादी वाला क्षेत्र में सड़क विहीन गांव में 12 मासी सड़क ने जोड़नो है सर।
1: और देखो जल जीवन मिशनरी अगर आप बात करा तो हर घर जल यानी अंडो उद्देश्य ग्रामीण भारत का प्रत्येक घर में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन करवाना है, वनडे माध्यम में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है ऐसा। और हाथ हाथी कृषि और संबंध जितना भी क्षेत्र है बटे भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रो काम की तो है, जिनमें अंडो उद्देश्य की हर खेत ने पानी देना है, प्रति बूंद अधिक फसल रहे सिद्धांत पर काम करना है, सिंचाई व्यवस्था ने आधुनिक और कुशल बनाना है।

सभी बहनें सुन रही थी अपना चहेता कार्यक्रम सैलियारी बाड़ी ही आकाशवाणी उदयपुर है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: चौदह कहते हैं कि प्यार तो वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो दिल से निभाया जाए, जो हर दर्द में आपके साथ खड़ा रहे, उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं।

श्रोता कहते हैं कि प्यार का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है। हर गम में एक सहारा होता है प्यार, जिसे मिल जाए सच्चा हमसफर, वही उसका हर दिन सुनहरा होता है।

किसी ने सच ही कहा है कि प्यार में शब्दों की जरूरत नहीं होती, हर एहसास की कोई सूरत नहीं होती। दिल से दिल जब जुड़ जाता है तो मोहब्बत अधूरी सी नहीं होती।

0: 1.9 FM के प्रसारण। तो मोबाइल ऐप के जरिए आप कहीं भी कभी भी हमारे प्रसारण सुन सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर लाइव रेडियो पर जाइए। बहुत सारे चैनल्स रेडियो के, उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए AIR उदयपुर FM लेक सिटी और हमारे प्रसारण को कभी भी कहीं भी मस्ती से सुनिए।
1: श्रोताओं, समय दोपहर के 2:10 हो चुके हैं और आइए सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में हमारा आज का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना।

प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न मध्यम आय वर्ग के परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत नए घर के निर्माण या पुराने घर के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता और होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का घर प्रदान करना है। सहायता राशि की बात करें तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 1.5 लाख तक और मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख तक की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में दी जाती है। आवेदन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों की पहचान आवास प्लस और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा के आधार पर की जाती है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर आप अपनी सूची देख सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों और मध्यम वर्ग के परिवारों को किफायती घर उपलब्ध कराना है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम LIG MIG श्रेणियों के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। लाभार्थी आधारित निर्माण में कुछ शर्तें हैं कि खुद की जमीन पर नया पक्का मकान बनने या विस्तार करने के लिए 2.5 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन की बात करें तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं और कंडीशन यह है कि आवेदन के पास पहले से भारत में कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आर्थिक आय की बात करें तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा उसकी आर्थिक आय नहीं होनी चाहिए और वह 6 लाख से 18 तक MIG में आना चाहिए। जो लोग PMAY 2.0 के तहत होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं वे आवास फाइनेंसर जैसे वित्तीय संस्थाओं या बैंकों के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे विकास चर्चा। हमारा आज का विषय था प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। समय है दोपहर समाचारों का, जिसे हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार बस कुछ ही पलों में।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित आईसीएफ में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी

0: के अंतर्गत आई गॉड प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
1: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल

0: पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रूपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रूपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स

0: से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। समय दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में किसान परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम अनिता भाई सा।
1: राम राम नीमा भाई सा। राम राम।
0: और अपन एक कृषि जगत कार्यक्रम होनवा वाला सब किसान भाया ने और बहना ने अपनो
1: राम राम सा।
0: देखो साथ आवड़ो घणो पड़ी रो है और दपेरी रो टेम वियो है।
1: हाँ सा।
0: तो अपने किसान भाई और बहन देखो दिन भर
1: सुबह काम
0: खेता में काम की तो डांडा चोपारो काम करियो और भोजन पानी करे थोड़ा फारिक वेन बेटा है तो आप ने बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दांगा। और देखो अबार बात करा आप ही के देखो तावड़ो घणो पड़ी रो है तो आपने खुद रो ही ध्यान रखनो डांडा जो पर ही ध्यान रखनो।
1: हाँ सर।
0: और लारे लारे देखो आपने अबार पुरुषोत्तम महीनो भी चली रो
1: बिल्कुल
0: है
1: सा, बिल्कुल
0: तो नरी थकी अपनी बेना और भाई लोग व्रत भी करी रहा है। तो देखो एक तो व्रत हो आप भूखा प्यासा रहो और एक तावड़ा में काम करो तो आपनो पूरो ध्यान रखनो और हाव चेत रहनो। तो देखो व्रत वास तो आप करी रहे हो।
1: हाँ सर।
0: लेकिन भजन आप माँ आपने हुनावा हुनो साया बहुत ही बढ़िया भजन।

0: बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल सुआ राम राम मीठी मीठी वाणी रे। हुणे बहुत ही बढ़िया प्यारो सो भजन और लारे लारे हुणे आपी संदेश। और अबे आपने बहना ने और भाई लोगों ने जानकारी देवा कि जैसे खेती बाड़ी रो जो काम है वणी में आपने जो लुगाया ही माया बाया ही बहना ही वी कही है कि पहली तो कही है कि थोड़ो खाली का मदद करनी
3: बिल्कुल
2: के भाई खेता पे रोटियां ले जानी या कहीं ढांडा चोपा ने पानी पावनो या
3: चारो
2: लावनो छोटो मोटो काम के भाई या थोड़ो माने जेलो करी रही। लेकिन अबे जो लुगाया है वो जेलो करवारो काम नहीं करी रही है सर। लुगाया अबे कंधो कंधो मिले न खेती बाड़ी करे रही है।
3: बिल्कुल सा। और परंपरागत रूप आप देखा तो अपनी बहना केवल बुनाई या कटाई में मदद नहीं करें लेकिन आप देखा अन्य टाइम पे अपनी बहना जो खेती में जुड़े तक का जितना भी काम है चढ़ में की बीजा रो चयन करनी तरह करना हो खेती बाड़ी

0: त तैयार करनी है, सिंचाई रो प्रबंधन कणी तरह कर सका या पछे खाद उर्वरक के बारे में जानकारी लेनी, फसल संरक्षण कणी तरह करनो, ये जितना भी काम है अणी में भी देखो तो आज आगे है और भागीदारी पूरी निभा रही है। सा
1: बिल्कुल सा बहुत ही मजबूत और सीधी भागीदारी है। और लारे लारे जटे अपनी बात करी रहा खेती बाड़ी री, तो खेती बाड़ी रो एक जुड़ियो थोको है अभिन्न पहलू जिन्हें की बिल्कुल अलग नहीं कर सका, पशु पशुपालन और डेयरी जो क्षेत्र है। कि भाई कई नहीं तो कम से कम एक दो डांडा चोपा तो वे इस वे
0: बिल्कुल सा।
1: तो वना डांडा चोपारो दूध काढ़वारो करवारो पोचावारो पोड़ो नागवारो यो सब काम बिल्कुल अपने लुगाया रे खांदा पे से लुगाया रे जिम्मेदारी है। और जटे श्वेत क्रांति री बात करा आपी तो वनी सफलता और जैसे ये नरी सहकारी अपने दूध डेरिया खुल गई जैसे अमूल डेरी है, तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डेरिया खुल कई व्यो है कि जो अपनी बेना है जी घरे रेवे वना एक दो गाया ली थी पचे अपना दूध ना ले ना ना वेचे पर धीरे धीरे पे आतो रही धीरे धीरे भी डेयरी उद्योग चलावा लगी।
0: बिल्कुल सा। और अन्य अलावा छोटा पैमाना पे आप बात करें तो ग्रामीण उद्योग में विस्तर मसाला है, पिसाई है, पापड़ निर्माण है, अचार है या अंडा ये जो प्रसंस्करण करें अंडे जरिए महिला अपनी जो उपज ने सीधो बाजारों लायक बनावे सा।
1: बिल्कुल सा। और कौशल विकास और कृषि विज्ञान केंद्र में भी अपनी जो बेना है जी खेती बाड़ी करे है या डेयरी उद्योग चलावे या छोटा मोटा उद्योग चलावे तो वना ने अगर अन्य जानकारी नहीं है तो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलावे, प्रशिक्षण कार्यक्रम भी देवे। अन्य अलावा किसान और जे आधुनिक यंत्र है और जैविक जैसे खाद है जैसे अपने अलसियरों खाद है तो ये सब चीजा वनाइन भी अपनी बिना खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा मदद कर रही है।
0: बिल्कुल सा। और जटे बात करा सब्जी री तो देखो खेतारी जो झंडी बड़ा बड़ा खेत है बटे भी बड़ा पैमाने पर सब्जी उत्पादन कर रही है, झंडे घर छोटा छोटा खेत है तो वे भी थोड़ी सी भूमि का में आप देखा तो बटे भी खेती बाड़ी करी ना सब्जी उत्पादन कर रही है।
1: अभी देखा कि जैसे आपने जो मोहल्ला में भी हो गलिया में भी सब्जियां वाली आवे तो उन्होंने एक बार में बात भी की थी कि भाई था कहीं करो कि माने मोटा मोटा खेत तो नहीं है भैसा लेकिन माने कही है कि माने खेतारे बड़े बड़े वाड़ो है मेड़े बटे माई थोड़ी घनी सागा उगई था नमक खुद ही सब
0: सरकार भी अपने देखो कृषि नीति के तहत महिला ने संयुक्त पट्टो देनो है, महिला क्रेडिट कार्ड ने बढ़ावा देनो है और अनुकूल छोटा जो कृषि उपकरण है मंडी विकास पर भी बहुत जोर
1: देखो
0: दे
1: हल नहीं ऐसी चीजें हैं कि ये कई बड़े लोग इस चले सके क्योंकि अन्य ज्यादा शक्ति की आवश्यकता वे लेकिन अब सरकार ऐसा ऐसा उपकरण बना रही है जना ने अपनी लुगाया भी आसानी चले सके।
0: और जब एक महिला किसान सशक्त वेगा तो नहीं केवल आप बात करें तो परिवार बल्कि पूरे ग्रामीण समाज भी आत्मनिर्भर और बढ़ेगा सा।
1: बिल्कुल सा। तो अपनी बेना ने तो अभी यूं ही कहा कि भाई आपने अगर जानकारी नहीं है तो प्रशिक्षण लो लेकिन अपने भाई लोग कंधों कंधों मिले अपने खेतीबाड़ी करो अपनो घर क्योंकि अपने घर में खुशहाली आएगा।
0: बिल्कुल सा। और खुशहाली रहते सुनाई एक बढ़िया राजस्थानी लोकगीत।
1: बिल्कुल सा।

0: होलियो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और अभी आपानी बेना ने और भाई लोगों ने जानकारी देवा कि स्वयं सहायता समूह रो कई काम है और यो आप किस तरह बनाई सका सर।
1: बिल्कुल सर, देखो यो ग्रामीण महिला वास्ते एक स्वैच्छिक संगठन में वे है। अंडो मुख्य उद्देश्य अगर आप बात करें तो आपसी सहयोग रे माध्यमों गरीबी उन्मूलन या वित्तीय आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण ने आगे बढ़ावे है सा।
0: देखो जटे भी अपने गांव में यो जो समूह बने वनमू 10 से 20 सदस्य वेवे और यो एक परिवार की तरह एक सदस्य वेवे और समूह रा जितना भी सदस्य वेवे वी हफ्ता में एक दान या महीना में दो दान कहिए कि नियमित अपने वटे बैठका करें
1: बिल्कुल
0: और
1: सर,
0: बैठक करी में भविष्य की योजनाएं तय करें। और बैठक के दौरान सदस्य सब सदस्य के भाई जैसे कि हो रुपया अपने
1: निश्चित करे
0: एक
1: से।
0: निश्चित
1: हाँ
0: करें भाई हो रुपया एक
1: राशि।
0: एक
1: हाँ
0: हफ्ता रा जमा कराना या 500 रुपया महीना रा जमा कराना तो वन हिसाब वी पया जमा करे जिन्हें भी साझा कोष भी केवे।
1: हाँ
0: और यदि वी सब पया जी भेड़ा वेवे अबे जैसे करने भी आवश्यकता पड़ गई कोई ने मांद हाज वेगी करने मरण मौत वेगी
1: बिल्कुल
0: या
1: सर।
0: करने कई दवाई दारू जरूरत वेगी
1: हाँ
0: दवायारी वगैरह तो वन में भी वना ने कही है कि वणियों लोन देवे सा
1: बिल्कुल सर।
0: बिल्कुल कम ब्याज दर पे लोन दे सके। अन्य अलावा उद्योग धंधो करने भी उद्योग लगाना जैसे सिलाई मशीन लावनी है या छोटे मोटे का खेती बाड़ी में कहीं टूट फूट वेगी भी लावनी है तो भी अणियों ये लेन और आराम अपनो घर चलाई सके
1: बिल्कुल सर।
0: सा।
1: अगर मिलिन सब जना करेगा तो देखो कंडे भी एक रे भी अगर कोई बड़ो काम आएगा तो समस्या रो समाधान कर सके ऐसा।
0: बिल्कुल सा
1: और अन्य अलावा गरीबी परिवार आज जितना भी सरकार महंगा ऋण में है वे वणियों वे बच सके ऐसा, क्योंकि आपा देखा कि आजकल घणो हरो ऋण में ही परो जावे या पाछे
0: बिल्कुल सर
1: ब्याज
0: जी
1: है।
0: साहूकार वेवे
1: हाँ
0: जो
1: हाँ
0: जीवित तो कई करे कि ब्याज तो लेवे ऊंचा ऊंचा ब्याज लेवे और पचे अगर आप ही वो नहीं दे सका टाइम पे
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल सर,
0: आपने कई भी पहले तो कई भी चीज घेने लेवे न पचे आपने
1: ब्याज देवे।
0: पया
1: हाँ
0: देवे
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: नहीं सा। तो पचे आप ही अगर नहीं चुका सकिया तभी आपने कोई भी घेणो है या कोई भी जगह जमी है तभी आपने जब्त कर ले तो
1: बिल्कुल
0: वन्यू
1: सर।
0: भी आपने जे छोटा जे किसान भाई यही बन सके। अंडे अलावा छोटा छोटा उद्योग है जैसे सिलाई है पापड़ बनानो अचार बनानो अगरबत्ती बनानो ऐसा जी उद्योग है

0: बिल्कुल सा। और देखो राज्य का राजस्थान सरकार महिला ने कुटीर उद्योग ने जोड़वार वास्ते भी लगातार काम कर रही सा। और शुरुआत में अगर बात करा तो ये समूह चलावर वास्ते सरकार री और एक छोटी प्रारंभिक जो अनुदान राशि है भाभी आने में दीदी जावे है सा।
1: बिल्कुल सा। तो अब आप अपनी बहना ने और भाई लोगों ने आप यूं कहवा कि भाई यो जो आप जने भी कहीं भी गांव में रहता हो
0: हाँ
1: तो यो स्वयं सहायता समूह बनाओ,
0: हाँ
1: ताकि कही है कि केवे कि खोटो टाइम के नहीं आवे,
0: बिल्कुल सही
1: है नहीं
0: बात है।
1: सा।
0: और छोटी
1: तो
0: छोटी
1: हाँ
0: रकम आप एक बड़ी रकम
1: हाँ
0: बनाई सका
1: कनन
0: सा।
1: कहीं भी आड़ू भाई जा तो आपने यूं नहीं वे कि भाई आपने कहीं वेगा तो
0: बिल्कुल
1: अपन
0: सा।
1: तो यू बनाओ सा और यू आपने बहुत ही सहायता देगा। और देखो अबे आपने हुणा वहां जाता जाता एक और राजस्थानी गीत।

भी किचन परिवार चुन रहे सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत ही आकाशवाणी उदयपुर है। कुछ ही पलों में हमारे दिल केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और

0: और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मेरी भी 286.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी दोपहर सभा के प्रसारण बस यहीं तक। संध्याकालीन सभा के प्रसारणों के साथ संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 268.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। युवा श्रोता सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: प्रेरणा, कभी कभी लगता है कि दुनिया कितनी फास्ट हो गई है कि अगर 2 मिनट हमें कुछ इंटरेस्टिंग ना मिले तो हम अपना मूड बदल लेते हैं। रील स्वाइप हो जाती है, सॉन्ग स्किप हो जाते हैं और चैट सीन। अटेंशन स्पैन का तो ऐसा हाल है कि लोडिंग सर्कल भी अब हमें इम्पेशेंट लगने लगा है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस फास्ट दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आज भी लोगों को रुकने पर मजबूर कर देती है। कभी कोई शहर अपनी बारिश और अपनी गलियों में रोक लेता है, कभी कोई यंग माइंड अपने आइडियाज से, कभी कोई प्रोजेक्ट अपने स्केल से लिटरली हैरान कर देता है।
1: बिल्कुल चिन्मय, और शायद यही आज के सफर

0: सबसे अच्छी बात भी है, क्योंकि आज हर सेगमेंट का अपना अलग मूड है। कहीं कोस्टल वाइब्स मिलेगी, कहीं साइंस और इनोवेशन की उड़ान, कहीं हिस्ट्री की डेप्थ होगी, और कहीं कुछ ऐसे नाम जो क्वाइटली अपनी फील्ड में लेजेंड बन गए हैं।
1: मतलब अगले कुछ मिनट थोड़े ट्रैवल डायरीज जैसे होंगे, थोड़े डिस्कवरी चैनल जैसे, और बीच बीच में थोड़े अरे ये तो पता ही नहीं था वाले भी।
0: कभी फील आएगी बारिश वाली किसी शांत सड़क की, कभी लगेगा जैसे फ्यूचर सामने खड़ा हो, और कभी कुछ स्टोरीज ये याद दिला देगी कि बड़े सपनों की कोई एज लिमिट नहीं होती।
1: तो अगर आप रेडी है थोड़ा चिल, थोड़ा क्यूरियस और थोड़ा हटके सफर के लिए,
0: तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा इमेजिनेशन को जगाइए, क्योंकि आज सिर्फ बातें नहीं होगी, थोड़ा फील भी होगा, थोड़ी एनर्जी भी और थोड़ा सा मैजिक भी।
1: जी हाँ, मैं हूँ आरजे चिन्मय और मेरे साथ है आरजे प्रेरणा, और आप सुन रहे हैं युववाणी, जहाँ यूथ की सोच है, आइडियाज है और एनर्जी नॉन स्टॉप है।
0: तो बिना किसी डिले के

0: आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर MLSU के विजुअल आर्ट्स विभाग में आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आकाशवाणी निदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में इस बार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विजुअल और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 25 से अधिक छात्रों ने

0: इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को अपने पोस्टर के माध्यम से दर्शाया। इस पोस्टर प्रतियोगिता का विषय रहा आकाशवाणी की यात्रा रेडियो से डिजिटल युग तक। प्रतिभागियों ने अपनी कल्पना को कागज पर उकेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। प्रतिभागियों ने अपने पोस्टर में एक तरफ पुराना एंटीना वाला रेडियो बनाया और दूसरी तरफ आज का मोबाइल फोन जिसमें न्यूज ऑन AIR ऐप बनाया। कहीं पर किसी प्रतिभागी ने आकाशवाणी को देश का सच्चा साथी के रूप में दिखाया। एक अन्य प्रतिभागी ने अपने पोस्टर के माध्यम से दिखाया कि कैसे बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाओं में जब मोबाइल नेटवर्क भी ठप हो जाता है तब आकाशवाणी की आवाज ही लोगों तक सही जानकारी और मदद पहुंचाती है। किसी अन्य प्रतिभागी ने बताया कि 90 साल का यह सफर सचमुच बेमिसाल है। इस पोस्टर प्रतियोगिता में जब हमने प्रतिभागियों से बातचीत की और उनकी थीम के बारे में जब हमने उनसे जाना तो उन्होंने अपनी बात को कहते हुए कहा कि
1: मैं दीपांश शर्मा, ये 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी के थीम पर मैंने पोस्टर बनाया। इसके अंदर मैंने वुमन फेसेस बनाए जो कास्ट को उनको छोड़कर और ये आकाशवाणी से कैसे जुड़े हुए हैं उसको बताया गया है। मैंने माइक्रोफोन बनाया है जो आकाशवाणी के उसको है और म्यूजिकल नोट्स बताए गए हैं इसमें। मगर आजकल के स्टूडेंट्स के उससे और मेरी स्टडी के हिसाब से मैंने ये बनाया।
2: मेरा नाम माही परियार है और मैंने 90 ईयर्स ऑफ आकाशवाणी पर बनाया है। इसमें मैंने इंडिया गेट, रेडियो और ये सीडी का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया है। इसमें मतलब ये बताने का है कि पुराने ज़माने में मेन रेडियो होता था, उससे लोग कनेक्ट होते थे। उसके बाद में फिर मैंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से बताया गया कि कैसे पुराने आकाशवाणी अलग अलग तरीके से कनेक्ट होती थी लेकिन उनका मेन माध्यम एक ही था, कनेक्ट होना।
3: मेरा नाम हंसिका सोनिया। आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो चुके हैं तो सबसे पहली थीम यही आई थी, उसका लोगो आकाशवाणी का, तो उसमें लिखा हुआ था बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, तो लोगों की हित और सुख के बारे में, तो सबसे पहले माइंड में इंडिया ही आया है। तो उसका पूरा थीम लेके हमने 3 कलर डाले हैं और उसके बाद जहाँ से मेन प्रसारण स्टार्ट था मुंबई में उसके बिल्डिंग को बनाया हुआ है, रेडियो बनाया है और आकाशवाणी का पूरा सीन उसमें दिख रहा है।
4: नमस्ते, मेरा नाम मयंक वैष्णव है और ये है मैंने थीम जो थी 90 वर्ष ऑफ आकाशवाणी, तो उसी चीज़ को लेके मैंने बादलों के साथ जो आकाशवाणी होती है आकाश की वाणी उसको लेके कुछ कंपोज किया है।
5: मेरा नाम तमन्ना नकवाल है। मैंने ये बनाया है, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे थे तो मैंने उसको सफ़र में दिखाया है कि इसका पूरा सफ़र कैसा हुआ है। इसके अंदर दादा दादी से लेके बच्चे बच्चे तक सब रेडियो एक साथ सुन रहे हैं। ऐसा मेरे घर में भी होता था, शाम को 5:30 बजे के आसपास हम सब साथ में बैठ कर सुनते थे, तो मैंने उसको वो भी दर्शाया है। तो मैंने इसके अंदर नए से लेके पुराने तक के सारे रेडियोस बनाए हैं। आजकल डिजिटल हो गया इसलिए मोबाइल के अंदर भी रेडियोस आते हैं, मैंने वो भी बनाया है। किसानों को भी दर्शाया है, किसान काम करते हुए रेडियो सुन रहे हैं, उनको सब पता चल रहा है, उनके अंदर कुछ भी आ रहा है, उनके जोश भी आ रहा है, गानों के विषय जोश भी उसके अंदर आ रहा है, तो ये सब करके मैंने ये बनाया है।
6: मेरा नाम प्रिंस टेलर है और इसमें मैंने एक भारत का मैप बनाया जिसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक बताया जा रहा है कि क्या कल्चर वहाँ का कैसा ट्रेडिशन है उसको लेते हुए क्या क्या बनाया है। इसमें ये हैंड से ही फोटोग्राफ ले रहे क्योंकि ये वेरी अच्छा ओकेशन है, 90 ईयर्स पूरे हो चुके हैं।
7: किरण गोस्वामी, जैसे ही सर ने ना कॉम्पिटिशन के लिए बोला, मतलब इसके लिए बोला कि 90 वर्ष हो रहे अपने रेडियो के आकाशवाणी के, तो मेरे माइंड में सबसे पहले एक तो ये म्यूज़िक आया था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। उसके बाद में लाइक ये स्टार्टिंग से जब से चालू होता आया है, जब किसान भी सुनते थे, फिर अपन मॉडर्न में भी सुनते आ रहे हैं, तो उन दोनों का कंबाइन करके करा था और एक म्यूज़िक बनाया जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अपन भी म्यूज़िक जैसे ही सुनते हैं और एकदम हैप्पी मूड में आ जाते हैं, तो बस उसी को लेके मैंने बनाया था।
0: इस अवसर पर डायरेक्टर फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट प्रोफेसर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि
8: देखिए ये एक बहुत अच्छा अकादमिक अवसर रहा जहां आकाशवाणी प्रसार भारती के माध्यम से, चूंकि 90 वर्ष आकाशवाणी के पूरे हुए हैं, इस अवसर पर आकाशवाणी की तरफ से एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और बेशक चित्रकला के बच्चों ने बहुत रोचक और रुचि से और अच्छा काम किया है जिसमें आकाशवाणी के 90 वर्ष और आकाशवाणी जिस तरह से

0: समाज में एक ऐसी अनुभूत सेवा दे रही है, इसको बहुत ही अच्छे और अकादमिक और बड़े कलात्मक ढंग से बच्चों ने अपने पोस्टर में इन सारी बातों को बताया है। लगभग 25-26 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और हर बच्चे ने अपनी अपनी ऊष्मा, अपनी ऊर्जा और अपने स्किल के माध्यम से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से परिलक्षित किया है। मैं आकाशवाणी का इसके लिए बहुत साधुवाद भी देता हूँ। धन्यवाद।
1: इस अवसर पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट विजुअल और फाइन आर्ट प्रोफेसर

0: क्रम में जो है बच्चों ने भी अपना वो सफर दिखाने का प्रयास किया है, और वाकई में जो है आकाशवाणी प्रसार भारती 90 वर्षों से आम जन के दिलो दिमाग में छाया रहा है। आज भी हम जो है आकाशवाणी को कहीं ना कहीं FM चैनल के माध्यम से भी सुनते रहते हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो ये वाकई में जिस तरह के जीवन चित्र जो है बच्चों ने बनाए हैं, ये चित्र वाकई में एक संयोजित रखने लायक हैं।
1: इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को रेडियो के इस ऐतिहासिक माध्यम के लिए जागरूक करना और देश के विकास में इसके योगदान को रेखांकित करना रहा। रंगों की इस प्रतियोगिता ने यह साफ कर दिया है कि समय भले ही बदल गया हो, लेकिन हवा में तैरती आकाशवाणी की यह जादुई आवाज आज भी हमारे दिलों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया है। इस पोस्टर प्रतियोगिता में तमन्ना और भक्ति के बनाए हुए पोस्टर बेस्ट पोस्टर के लिए चुने गए। इस तरह मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय के विजुअल और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के साथ ये पोस्टर प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस पूरे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजक मनोज कुमार अंबेश, वाचक स्वर RJ शमील का।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुनी आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर MLSU के वर्चुअल आर्ट्स विभाग में आयोजित पोस्टर मेकिंग कंपटीशन पर आधारित

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रेरणा, कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी स्लो हो गई है। ना ज़्यादा रश, ना हर वक्त की भाग दौड़, बस बारिश की हल्की सी आवाज़ और समुंदर की हवा। एक ऐसा माहौल जहां बिना किसी वजह भी अच्छा फील होने लगता है। और केरला के कुछ सिटीज़ एग्जैक्टली वही वाइब देते हैं, जहाँ सुबह काम लगती है, शामें ब्यूटिफुल और रोड्स ऐसी जहाँ चलते हुए जल्दी कहीं पहुँच जाने का मन ही नहीं करता।
1: बिल्कुल चिन्मय, केरला सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं लगता, पूरा मूड जैसा लगता है। कहीं बैकवाटर्स, कहीं बीचेस, कहीं ओल्ड स्ट्रीट्स और कहीं ऐसी फूड स्मेल जो दूर से ही मूड को अच्छा कर दे। और ऑनेस्टली केरला की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ मॉडर्न लाइफ भी है लेकिन नेचर की फील आपको कभी मिसिंग नहीं लगती। और आज हम बात करने वाले हैं केरला की तीन ऐसी खूबसूरत सिटीज़ की, कोची, कोल्लम और कोझिकोड।
0: बिल्कुल प्रेरणा, अगर हम शुरुआत करें कोची से तो इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। ये केरला के सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ में से एक है और सेंचुरीज से ट्रेड और कल्चर का एक बड़ा सेंटर रहा है। यही रीज़न है कि पोर्टुगीज, डच और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस आज भी आर्किटेक्ट और स्ट्रीट्स में दिखाई देता है। यहाँ आपको चाइनीज़ फिशिंग नेट्स भी मिलेंगे, ओल्ड कॉनोलियन बिल्डिंग्स भी मिलेगी और मॉडर्न कैफेज़ भी, और साथ ही अरेबियन सी की कूल ब्रीज और पूरे शहर को अलग फील देती है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगती है कि कोची साइमल्टेनियसली ओल्ड भी लगता है और मॉडर्न भी। एक तरफ फोर्ट कोची की हेरिटेज स्ट्रीट्स जहाँ पुराने बिल्डिंग्स और आर्ट कैफेज़ दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ फास्ट सिटी लाइफ और शाम के समय मरीन ड्राइव का पूरा माहौल मूवी सीन जैसा लगता है।
1: बिल्कुल चिन्मय, कोची की उन सिटीज़ में से है जहाँ घूमने से ज़्यादा बस वॉक करने का मन करता है, क्योंकि हर स्ट्रीट का अपना अलग कैरेक्टर लगता है। कहीं आर्ट गैलरीज, कहीं स्ट्रीट पेंटिंग्स और कहीं छोटे छोटे कैफेज़ जहाँ बैठकर वक्त का पता ही नहीं चलता। और शायद यही रीज़न है कि कोची सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, वो एक्सपीरियंस जैसा फील होता है।
0: अगर हम कोल्लम की बात करें तो इससे एक पूरा मूड बिल्कुल अलग हो जाता है। जहाँ कोची एनर्जेटिक और लाइवली लगता है, वहाँ कोल्लम काम और पीसफुल फील देता है। ये सिटी खासकर अपने बैक वाटर्स के लिए फेमस है और यहाँ सबसे बड़ी अट्रैक्शन है आशामुडी लेक, जहाँ हाउस बोट राइड्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जहाँ धीरे धीरे पानी पर चलते हुए चारों तरफ से ग्रीनरी, नारियल के पेड़ और साइलेंस फील होती है, और ऐसे मोमेंट्स फ़ोन तक साइड में रखने के लिए मना कर देते हैं।
1: बिल्कुल, कोल्लम ऐसा प्लेस लगता है जहाँ लोग घूमने कम, रिलैक्स होने के लिए ज़्यादा जाते हैं। कोई अननेसेसरी नॉइस नहीं, वहाँ कोई हरी नहीं, बस नेचर, शांत पानी और कूल कूल हवा। और शायद यही इसकी सबसे अच्छी बात भी है कि यहाँ एवरीथिंग फील स्लो लेकिन अच्छे तरीके से। कभी कभी ऐसे प्लेसेस मेंटल रीसेट करने जैसा भी फील कराते हैं।
0: और अब हम बात करते हैं कोझिकोड की, जिसे पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये सिटी बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि यही वो जगह मानी जाती है जहाँ वास्को डी गामा इंडिया पहुँचा था। यानी इस सिटी का कनेक्शन डायरेक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। लेकिन कोझिकोड सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये फूड लवर्स के लिए भी हेवन माना जाता है।
1: बिल्कुल, यहाँ का मालाबार क्यूजिन पूरे इंडिया में फेमस है, स्पेशली मालाबार बिरयानी, सी फूड डिशेज और ट्रेडिशनल स्वीट्स। और ऑनेस्टली कोझिकोड की फूड स्ट्रीट्स एक्सप्लोर किए बिना केरला ट्रिप अधूरी सी लगती है। लेकिन फूड के अलावा यहाँ की कल्चरल वाइब्स भी बहुत रिच है। लिटरेचर, आर्ट और लोकल ट्रेडिशंस आज भी यहाँ स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। यानी ये शहर आपको सिर्फ मॉडर्न लाइफ में नहीं भाग रहा है, अपनी रूट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दे रहा है।
0: अगर इन तीनों सिटीज़ में एक कॉमन चीज़ ढूंढनी हो प्रेरणा, तो वो है बैलेंस, नेचर और मॉडर्न लाइफ का बैलेंस, पीस और सिटी लाइफ का बैलेंस। और शायद यही वजह है कि केरला की ये सिटीज़ सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं लगते, ये एक्सपीरियंस जैसा फील होते हैं। ऐसी जगह जहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, वो खुद को स्लो करने जाते हैं।
1: तो चाहे कोची की कोस्टल वाइब्स हो, कोल्लम की पीसफुल बेक वाटर्स या कोझिकोड की कल्चरल वॉर्म्स, हर सिटी की अपनी अलग कहानी है। और शायद ट्रैवलिंग की सबसे अच्छी बात भी यही है कि कुछ जगहें सिर्फ फोटोज़ नहीं देती, थोड़ा सुकून भी देकर जाती है।

0: प्रेरणा, आज की जनरेशन को अक्सर लोग सिर्फ सोशल मीडिया की जनरेशन बोल देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली ये जनरेशन ऐसी भी है जो छोटी उम्र से बड़े आइडियाज़ लेकर आ रही है। कोई स्कूल में रहते हुए स्टार्टअप शुरू कर देता है, तो कहीं कोई टेक्नोलॉजी से नया एक्सपेरिमेंट कर देता है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है जिसके बारे में बड़े लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। और शायद यही आज के यूथ की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एज छोटी हो सकती है लेकिन सोच नहीं।
1: बिल्कुल चिन्मय, और आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे यंग इनोवेटर्स की जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने आइडियाज से लोगों का अटेंशन खींच लिया। दोस्तों, एक तरफ है इंडिया की यंग स्पेस एंथुसियास्ट रिफात शाहरुख और दूसरी तरफ यंग एंटरप्रेन्योर गैबी गुडविन, जिन्होंने अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को एक सक्सेसफुल आइडिया में बदल दिया।
0: बिल्कुल प्रेरणा, अगर बात करें रिफात शाहरुख की तो वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया था। इसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन तब मिला जब उन्होंने एक्सट्रीमली लाइटवेट सैटेलाइट डिज़ाइन किया जिसका नाम था कलमसत। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसे दुनिया के सबसे लाइटवेट सैटेलाइट्स में से एक माना गया।
1: और दोस्तों, खास बात ये भी है कि कलमसत का नाम फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से इंस्पायर्ड था। यह सैटेलाइट 3D प्रिंटेड कार्बन फाइबर मटेरियल से बनाया गया था और नासा कंपटीशन में सेलेक्ट भी हुआ था। मतलब दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि इतनी छोटी सी उम्र में उम्र और डायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स पर काम करना।
0: और शायद यही चीज़ यूथ को इंस्पायर भी करती है कि इनोवेशन के लिए हमेशा बड़ी एज या बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ क्यूरियोसिटी और लगातार सीखने की हैबिट ही सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाती है।
1: अब अगर हम गैबी गुडविन की बात करें तो उनकी स्टोरी भी इक्वली इंस्पायरिंग है। दोस्तों, गैबी जब छोटी थी तो उन्हें हेयर बैरेट्स यानी कि जो क्लिप्स होती है सिर में लगाने की, बालों में लगाने की, वो बार बार खो जाने की प्रॉब्लम होती थी। और इसी छोटी सी डेली लाइफ प्रॉब्लम से उनके माइंड में एक नया आइडिया आया कि ऐसी हेयर क्लिप्स को बनाना जो आसानी से गिरे नहीं।
0: और यही सिंपल आइडिया आगे चलकर एक बिजनेस बन गया। गैबी ने अपनी माँ के साथ मिलकर गैबी बॉज नाम से एक कंपनी शुरू की और स्पेशली डिज़ाइन डबल फेस डबल स्नैप बैरेट्स बनाए। यानी प्रॉब्लम छोटी थी लेकिन सॉल्यूशन स्मार्ट था।
1: और सबसे इंस्पायरिंग बात ये लगती है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू कर दी। यानी कई बार इनोवेशन बहुत बड़ी लेबोरेटरी से नहीं, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है।
0: अगर इन दोनों स्टोरीज में कॉमन चीज देखी जाए तो वो है क्यूरियोसिटी। एक ने स्पेस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लिया तो दूसरे ने डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन दोनों ने एक चीज सेम की, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, एक्शन भी लिया।
1: और शायद यही आज के यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। आज इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल है और अपॉर्चुनिटीज़ भी पहले से ज़्यादा हैं। यानी अगर आइडिया स्ट्रॉन्ग हो तो शुरुआत करने के लिए परफेक्ट एज का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं।
0: तो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो या डेली लाइफ इनोवेशन, बड़े आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं।
1: और शायद यही रीज़न है कि आज का यूथ सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं, फ्यूचर को शेप भी कर रहा है।

0: प्रेरणा कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस का सिंबल बन जाते हैं। ऐसी चीज़ जिसे देखकर पहली रिएक्शन यही आती है कि यार इसे कैसे बनाया होगा। और ऑनेस्टली इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ स्ट्रक्चर्स इतने मैसिव होते हैं कि वो सिर्फ बिल्डिंग्स या ब्रिजेस नहीं लगते, ह्यूमन इमेजिनेशन की लिमिट जैसे लगते हैं।
1: बिल्कुल चिन्मय। और इंडिया का एक ऐसा ही मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज जिसने इंजीनियरिंग, स्केल और करेज तीनों को एक साथ डिफाइन किया है। और दोस्तों, इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज माना जाता है।
0: चेनाब रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर पर बनाया गया है। ये उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज की हाइट लगभग 359 मीटर बताई जाती है, यानी आईफिल टावर से भी ऊंचा। और शायद यही फैक्ट सुनकर लोग इसके स्केल को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं।
1: और दोस्तों, सिर्फ हाइट ही नहीं, इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ये एक स्टील आर्क ब्रिज है जिसे माउंटेन्स और डीप वैली के बीच बनाया गया है। मतलब लोकेशन भी चैलेंजिंग, वेदर कंडीशंस भी डिफिकल्ट, और ऊपर से इतना मैसिव कंस्ट्रक्शन।
0: और शायद यही रीज़न है कि चेनाब ब्रिज को बनाना आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स को स्ट्रॉन्ग विंड्स, डिफिकल्ट टेरेन और एक्सट्रीम वेदर जैसी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। कई जगह कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाना एक बहुत ही बड़ा टास्क बन जाता था।
1: लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी चैलेंजेस होने के बावजूद प्रोजेक्ट को डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि ब्रिज हाई विंड स्पीड और अर्थक्वेक्स जैसी कंडीशंस को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। यानी यहाँ सिर्फ साइज इम्पॉर्टेंट नहीं था, सेफ्टी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती थी।
0: चेनाब रेलवे ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग अचीवमेंट नहीं है, ये रेलवे कनेक्टिविटी का एक बहुत ही बड़ा सिंबल है। इस प्रोजेक्ट की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, टूरिज्म, बिजनेस और लोकल कनेक्टिविटी पर भी इसका भारी असर पड़ेगा।
1: और दोस्तों, शायद हम यूँ कह सकते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही होती है कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं। क्योंकि जहाँ पहले डिफ़िकल्ट जर्नीज थी, वहाँ फ्यूचर में स्मूदर कनेक्टिविटी दिखाई देने लगती है।
0: और अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सप्रेसवेज, मेट्रो सिस्टम, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स और बड़े बड़े ब्रिजेस। यानी डेवलपमेंट अब सिर्फ सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं है, कनेक्टिविटी को नेशनल लेवल पर इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है।
1: और चिनाब ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स ये भी दिखाते हैं कि डिफ़िकल्ट जियोग्राफी होने के बावजूद इंजीनियरिंग और प्लानिंग के ज़रिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ी अचीवमेंट वहीं बनती है जहाँ चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं।
0: तो चेनाब रेलवे ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये विजन, इंजीनियरिंग और डिटर्मिनेशन का कॉम्बिनेशन है।
1: और शायद यही वजह है कि इसे देखकर सिर्फ ब्रिज नहीं दिखता, इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटी भी नजर आती है।

0: दोस्तों, इतिहास के पन्ने में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़ते, बल्कि हर गुजरते दौर के साथ और भी चमकने लगते हैं। किसी ने समाज को नई सोच दी, किसी ने विज्ञान को नई दिशा, तो किसी ने कला, खेल और इतिहास में ऐसे योगदान दिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गए।
1: तो दोस्तों, आइए आज के इस विशेष जयंती और पुण्यतिथि खंड में याद करते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने अपने कार्यों से दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी।
0: दोस्तों, इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज हो जाते हैं। एक ऐसे ही नाम शाही गरिमा, आधुनिक सोच और अद्भुत व्यक्तित्व की मिसाल, महारानी गायत्री देवी।
1: 23 मई 1919 को लंदन में जन्मी गायत्री देवी का संबंध कूच बिहार के शाही परिवार से था। उनके पिता महाराजा

0: जितेंद्र नारायण और माता इंदिरा राजे थीं। बचपन से ही उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिली। उन्होंने शांति निकेतन, लंदन और स्विट्जरलैंड जैसे संस्थानों में अध्ययन किया।
1: घुड़सवारी, पोलो, शिकार और कई भाषाओं का ज्ञान, गायत्री देवी हर क्षेत्र में बेहद ही प्रभावशाली थी। उनकी सोच अपने समय से काफी आगे मानी जाती थी।
0: दोस्तों, वर्ष 1940 में उनका विवाह जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ और फिर वे बनी जयपुर की महारानी। और उनकी ये जो पहचान थी वो वहाँ तक सीमित नहीं रही। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए।
1: 1943 में महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। उस दौर में जब लड़कियों को शिक्षा को लेकर समाज में झिझक थी, तब उनका यह कदम बेहद ही प्रेरणादायक और क्रांतिकारी माना गया। आज भी यह स्कूल देश की प्रतिष्ठा शिक्षण संस्थानों में से एक गिना जाता है।
0: दोस्तों, राजनीति में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। 1962 के लोकसभा चुनाव में जयपुर सीट से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और उनकी इस ऐतिहासिक जीत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ।
1: दुनिया की प्रसिद्ध पत्रिका वोग में ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में भी शामिल किया गया। लेकिन उनकी असली खूबसूरती थी सादगी, आत्मविश्वास और लोगों के प्रति अपनापन।
0: दोस्तों, आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि वे आज भी साहस, शालीनता और आधुनिक नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है।
1: 29 जुलाई 2009 को उनका निधन हो गया, लेकिन शिक्षा, संस्कृति और समाज के लिए उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
0: उनके व्यक्तित्व को समर्पित एक खूबसूरत सी पंक्ति, रुतबादा शाही मगर दिल बेहद सरल था, उनका हर कदम समाज के उजाले की पहल था।
1: दोस्तों, शाही व्यक्तित्व और समाज सेवा की इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अब हम बढ़ते हैं भारतीय सिनेमा की उस रंगीन दुनिया की ओर, जहां एक निर्देशक अपनी कला और अपनी कल्पना और रचनात्मकता से करोड़ों दिलों को जीतता है।
0: 23 मई 1942 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे के राघवेंद्र राव दक्षिण भारत सिनेमा के सबसे सफल और लोकप्रिय निर्देशकों में गिने जाते हैं। उनके पिता के एस प्रकाश राव स्वयं प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जिसके कारण बचपन से ही उनका जुड़ाव सिनेमा की दुनिया से हो गया था।
1: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की, लेकिन बहुत जल्द अपनी एक अलग पहचान बना ली। 1975 में आई फिल्म बाबू से उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और फिर सफलता का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया।
0: उन्होंने तेलुगु, हिंदी और कई भाषाओं की 100 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया। हिम्मतवाला, तोहफा, घराना, मुगुड़ू, अन्नामय्या जैसी कई सारी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा का बड़ा नाम बना दिया।
1: उनकी फिल्मों की खासियत यही रही कि भव्य दृश्य, मधुर संगीत और पारिवारिक भावनाओं का खूबसूरत मेल। उन्होंने कई बड़े कलाकारों के करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: दोस्तों, के राघवेंद्र राव का भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2006 में नंदी अवार्ड और कई प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। सिनेमा के प्रति उनकी रचनात्मक सोच ने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई।
1: सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, उनकी भक्ति और आध्यात्मिक विषयों पर भी शानदार फिल्में उन्होंने बनाई। उनकी फिल्म अन्नमय्या को आज भी भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में गिना जाता है।
0: आज भी उनका नाम भारतीय फिल्म उद्योग में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका सफर हमें यही सिखाता है कि कला में निरंतर मेहनत और नई सोच इंसान को अमर बना देती है।
1: जो सपनों के पर्दों पर रंगों को सजाते हैं, वही कलाकार समय के साथ इतिहास बनाते हैं।
0: और दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कला और सिनेमा की इस खूबसूरत दुनिया से आगे, विज्ञान की उस दुनिया में जहाँ एक वैज्ञानिक ने पूरी प्रकृति को पहचान देने का काम किया।
1: दोस्तों, जब भी हम किसी पेड़, पौधे या जीव का वैज्ञानिक नाम सुनते हैं तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि इसके पीछे एक महान वैज्ञानिक की सोच छिपी है। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पूरी प्रकृति को पहचान देने का काम किया, जिनका नाम है कार्ल निकोलस।
0: 23 मई 1707 को स्वीडन में जन्मे कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने जीव जंतुओं और पौधों को वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत करने की प्रणाली विकसित की थी।
1: बचपन से ही उन्हें प्रकृति और पौधों में गहरी रुचि थी। कहा जाता है कि वे घंटों पेड़ पौधों को देखकर उनकी विशेषताएं समझने की कोशिश करते थे। उनकी यही जिज्ञासा आगे चलकर विज्ञान की दुनिया की क्रांति बन गई।
0: दोस्तों, उन्होंने बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर यानी दो नामों वाली वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली शुरू की। इसी प्रणाली के कारण आज हर जीव और पौधे का एक विशेष वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे इंसानों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस।
1: कार्ल लिनियस ने हजारों पौधों और जीवों का अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सेनिटा न्यूरेंटी में जीव विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी। उनके शोध ने बॉटनी और जीव विज्ञान को व्यक्तित्व को आसान बना दिया।
0: दोस्तों, वे उपसाला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

0: भी रहे और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी प्रेरित करते थे। उनके विद्यार्थी अलग अलग देशों में जाकर नई प्रजातियों की खोज करते थे। उनके कार्यों के कारण आज वैज्ञानिक किसी भी जीव की पहचान दुनिया की किसी भी कोने में आसानी से कर पाते हैं। यह विज्ञान जगत में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से मानी जाती है। दोस्तों, 10 जनवरी 1778 को उनका निधन हो गया, लेकिन विज्ञान में उनका यह जो योगदान था वो आज भी हर जीव विज्ञान की किताब में जीवित है।
1: जिन्होंने प्रकृति को पहचान का नाम दिया और विज्ञान को नई उड़ान दी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
6: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है।

0: दोस्तों 23 मई इतिहास के उन खास दिनों में से गिना जाता है जब दुनिया ने विज्ञान, साहस, राजनीति और समाज से जुड़ी कई बड़ी घटनाएं देखी। तो आइए जानते हैं आज के इतिहास की कुछ रोचक बातें।
1: बिल्कुल दोस्तों, वर्ष 1844 की बात करते हैं। उस वर्ष आज के दिन सैमुअल मॉरिस ने पहली बार टेलीग्राफ संदेश भेजकर संचार की दुनिया में क्रांति ला दी थी और यहीं से आधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई।
0: 1951 में चीन और तिब्बत के बीच 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद तिब्बत

0: चीन का नियंत्रण स्थापित हुआ। इस घटना ने एशिया की राजनीति और भारत चीन के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया।
1: अब बात करते हैं वर्ष 1995 की, जहां आज ही के दिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च की गई थी। आज दुनिया की काउंटलेस वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जावा टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं।
0: 1984 की अगर हम बात करें तो 1984 में बद्रीलाल माल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे देश को नई गर्व और प्रेरणा दी।
1: दोस्तों 2016 की बात करते हैं अब, तो 2016 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का सफल परीक्षण किया था। यह भारत की सस्ती और आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाता है।
0: तो दोस्तों ये थी 23 मई से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिन्होंने दुनिया और भारत दोनों पर गहरा प्रभाव डाला।
1: दोस्तों इतिहास हमें सिर्फ अतीत नहीं बताता बल्कि भविष्य के लिए भी प्रेरणा देता है और इससे सीखना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है।
0: तो इसके बाद अगर हम बात करें आज के योजगार की, तो योजगार की जो जानकारी अभी आ रही है वो सबसे पहले है यूपीएससी की तरफ से।
1: बिल्कुल दोस्तों, यूपीएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ट्रांसलेटर, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और अन्य पदों पर 45 पद जारी किए हैं, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो रहने वाली है कोई भी डिग्री, डिप्लोमा। और आपको अप्लाई करना है इसके लिए तो आपको बहुत ही जल्दी करनी होगी, क्योंकि 29 मई जो है वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आपको जाना होगा upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर।
0: इसके बाद अगर हम बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर 11,127 पोस्ट पे विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और 22 जून से पहले आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको जाना होगा rrb.gov.in पर। इसके बाद बात करते हैं IAF की, तो IAF की तरफ से कमीशनड ऑफिसर पर 379 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है, जिस पर अप्लाई करने के लिए या तो आपने BSc, BTech या BE करनी होनी चाहिए। इस पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 19 जून और अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा fcat.co.in पर। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं हमारे बैंकिंग सेगमेंट में SBI की तरफ, तो SBI की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप जारी हुई है जिसमें पद है कुल 7,150, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है 8 जून से पहले, और आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा sbi.co.in पर।
1: दोस्तों अब बात करते हैं आरआरबी की, जिसमें टेक्नीशियन के 6,565 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी BSc ITI की, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 29 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, और अधिक जानकारी के लिए आपको जाना होगा rrbcdg.gov.in पर। साथ ही साथ UPSC की एक और विज्ञप्ति की बात की जाए तो वो है NDM, जिसके लिए 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जो पद संख्या है वो है 394। 9 जून से पहले आपको इसमें अप्लाई करना होगा, और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी जानते हैं upsc.gov.in। साथ ही साथ राजस्थान की भी बात कर ही लेते हैं, RSSB की तरफ से भी 3,540 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। दोस्तों इस जिसके लिए पद जारी किए गए हैं उसका नाम है टीचिंग एसोसिएट। एनी मास्टर्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अगर किसी ने भी मास्टर डिग्री ली है या फिर MPhil या PhD अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 3 जून से पहले इसमें अप्लाई करना है, और rssb.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप इसमें जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
0: और इसी के बाद अगर हम बढ़ते हैं खेल जगत की तरफ, तो कुश्ती जगत की खबर है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने गल्फ क्षेत्र में मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए 2026 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया है। यह प्रतियोगिता अक्टूबर में बेहतरीन आयोजन होनी थी।
1: दोस्तों IPL की बात करते हैं अब। IPL में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रन बनाए थे।
0: ईशान किशन ने नाबाद 79 रन की शानदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। RCB की ओर से रजत पाटीदार ने 56 रन बनाए, लेकिन टीम 200 रन तक भी ना पहुंच सकी।
1: और आज के IPL मैच की बात की जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। यह मुकाबला शाम 7:30 पर लखनऊ में खेला जाएगा।

0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना?
0: बस चल रहा है भाई।
1: व्हाट अबाउट यू?
0: हाँ चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक है ना?
0: हाँ ठीक है।
1: और तेरा?
0: बस चल रहा है।

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक?
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना।
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यही वादा है आपसे, मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा, मेरे साथ हैं चिन्मय, नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम पे 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत

0: की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म म्यूज़िक में जो पहला नगमा हमने आपको सुनवाया वो फिल्म थी ए दिल ए मुश्किल, अरिजीत सिंह की आवाज़ थी। अगले पायदान पर आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और संजीवनी की आवाज़ में ये नगमा।

करीब इस फिल्म का नगमा अभी आपने सुना, कुमार शानू और संजीवनी की आवाजें थी। अगला नगमा आशिकी 2 से अंकित तिवारी की आवाज में।

युवराज फिल्म के इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी होगी और 6:50 पर आप सुन पाएंगे राजधानी में प्रादेशिक समाचार। लेकिन सबसे पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे जयपुर अजमेर केंद्र से, प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत। कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस भरोसे को और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। भारत विश्व के कई देशों के साथ साझेदारी कर रहा है जिसका

0: का मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। देश में 47 स्थानों पर इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी विभागों और संगठनों के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। पूरे देश से चुने गए ये नए कर्मचारी रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी रेल सेवाएं देंगे। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में रोजगार मेले आयोजित किए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने नव नियुक्त युवाओं से राष्ट्र निर्माण में पूरे मन से योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे में 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम मानते हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो, इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है। लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं, उनका दायित्व उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है। इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 258 और बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 281 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पेट्रोल तथा डीजल की आपूर्ति स्थिर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने से अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले कुछ दुकानों तक ही सीमित हैं। 1 मई से 22 मई के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। पेट्रोल बिक्री में 14%, वहीं डीजल बिक्री में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के दाम तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर

लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू होगा। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अभियान की तैयारियों को लेकर आज सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ते हुए इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभियान की ग्राम पंचायत स्तर तक गतिविधियों की मॉनिटरिंग मोबाइल ऐप और रियल टाइम रिपोर्टिंग से की जाएगी। इस अभियान को लेकर विभिन्न जिलों में भी तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर कानाराम ने ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण आवास स्वच्छता और विकास कार्यों को तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। प्रदेश में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के लिए विलायती बबूल का उन्मूलन किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाकर काम करने को कहा है। आज जयपुर में विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के उन्मूलन से पौधों की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा और पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा। श्री दिलावर ने बबूल की लकड़ी से कोयला बनाने के लिए योजना बनाने को भी कहा। गौरतलब है कि विलायती बबूल अन्य वनस्पतियों को पनपने नहीं देता है। इसकी जड़ें 10 मीटर तक फैली होती हैं और ये अत्यधिक पानी सोखता है। 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा 2026 को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रदेश में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज परीक्षा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को मिलकर परीक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों और जिलों को विशेष निगरानी रखने, पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने तथा परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को कहा। ये परीक्षा राज्य में 611 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इसमें 2 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बीच मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और अब मौसम। प्रदेश में आज मौसम में आए बदलाव से पूर्वी इलाकों के कुछ स्थानों पर आंधी के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। आज दोपहर बाद राजधानी जयपुर सहित सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, दौसा, करौली और भरतपुर, कोटा, बूंदी जिलों में बादल छाए रहे और धूल भरी आंधी चली। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी तो कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। दूसरी ओर राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में तेज गर्मी का असर रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। इसके साथ ही इस दौरान कई जिलों में लू चलने के भी आसार हैं। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर डीग पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कों, बाजारों और कोचिंग सेंटरों के आसपास मंचलों पर शिकंजा कस रही हैं। पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ ने बताया कि ऑपरेशन डिकॉय के तहत महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में रहकर लड़कियों को परेशान करने वाले मंचलों पर नजर रख रही हैं। कॉलेज छात्रा पूजा ने बताया कि कॉलेज जाते हुए वे अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जैसलमेर के दांडेवाला फील्ड में नए गैस भंडार का पता लगाया। प्रदेश में पानी बचाने की मुहिम को लेकर सोमवार से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा और राज्य के पूर्वी हिस्सों में

0: आंधी के साथ हल्की बारिश से गर्मी से मामूली राहत, कल से तापमान में फिर से बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में बात करेंगे हालिया खबरों, गतिविधियों और जागरूकता कार्यक्रमों के साथ वन्य जीवों की। इन सब का ब्यौरा आप तक चिट्ठी में पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बालिकाओं की एक उपलब्धि की। जिले की विष्णोदा और मनिया की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों की बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ में हुई राष्ट्रीय जंबूरी में धौलपुर का नाम रोशन किया है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया, साथ ही स्टेट गेट प्रतियोगिता में भी पहले नंबर पर रही। इन बालिकाओं ने राष्ट्रीय एकता और महिला सशक्तिकरण का संदेश देती हुई शानदार रंगोलियां बनाकर ये उपलब्धियां हासिल की। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी की अध्यक्षता में बीते दिनों जनसुनवाई की गई। इस दौरान जमाबंदी में नाम सही करवाने, अतिक्रमण हटवाने और पीएम सम्मान किसान निधि की राशि दिलवाने तथा राजस्व सहित कई प्रकरण प्राप्त हुए। इनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति में दर्ज दो प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया गया। जिले में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नगर परिषद की ओर से 7 स्थानों पर विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इनमें पीने के ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। ये सभी आश्रय स्थल भीड़भाड़ वाले इलाकों में बनाए गए हैं, जिससे राहगीर, बुजुर्ग और महिलाएं जरूरत पड़ने पर राहत हासिल कर सके। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण जिला चिकित्सालय में भी मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में लू और तापघात के रोगियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर पिछले दिनों स्वैच्छिक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान प्रशासन की अपील पर लोगों ने 15 मिनट के लिए बिजली बंद रखी। इससे पहले प्रशासन की ओर से सभी लोगों से मॉक ड्रिल के दौरान घरों में रहने को कहा गया। मॉक ड्रिल से पहले संबंधित थानों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने परेड की सलामी ली और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान शहीद वीरांगनाओं को भी नवाजा गया। जिला पुलिस और आरएसी धौलपुर 6 बटालियन की ओर से संडे ऑन साइकिल अभियान रखा गया है। इसके जरिए पुलिस सेहत और सुरक्षा का संदेश देगी। इस दौरान योग सत्र भी होगा। पुलिस ने इस विशेष कार्यक्रम में आमजन और इच्छुक नागरिकों के साथ ही विद्यार्थियों से ज्यादा भागीदारी की अपील की है। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में अब महिला प्रताड़ना और पोक्सो के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल महीने तक जिले में महिला अत्याचार के करीब 250 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 86 मामले जांच में झूठे पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि झूठी एफआईआर और फर्जी आरोप लगाने के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों की अनदेखी पाए जाने पर 12 अस्पतालों का पंजीकरण 5 दिन के लिए निलंबित किया गया। वहीं 2 चिकित्सालयों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया। सीएमएचओ ने बताया कि निजी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, जवाबदेह और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए खास अभियान चलाया गया। इसके तहत राजाखेड़ा और मरीना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 ट्रांसफार्मर जब्त किए गए। जिले में जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से यातायात नियमों की पालना की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में जन सहयोग से हेलमेट वितरित किए गए। वहीं बाइक रैली निकालकर लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए तकनीक का सहारा लिया जाएगा। खनन विभाग ने धौलपुर जिले में 16 संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो। प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेज सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करयो जावेला। और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिश गर्मियों थोड़ी साता मिली। कालू पारो ओजू चढ़वारा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि सरकारी नौकरियां लोगों की जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो है। वह आज राखी जिया 19वां रोजगार मेला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहा है। प्रधानमंत्री कहो कि देश कर्म योगियां माथे भरोसो जतायो है और इनने मजबूत बनावन री जिम्मेदारी कर्म योगियां री है। श्री मोदी कहो कि पूरी दुनिया भारत री विकास यात्रा रो हिस्सो बनवारी मर्जी रखे है। प्रधानमंत्री कहो कि भारत दुनिया रा कई देशां सागे साझेदारी कर रियो है, जिनरो मकसद नौजवाना ने नौकरी धंधा रा मौका और दुनिया रो अनुभव दिरावनो है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री नवी नौकरी लागिया कर्मचारियों ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म बत्तों बत्तो इस्तेमाल करन शुरू कहो। आखा देश माए 47 ठोणा रोजगार मेला लगाई चिया। इन दौरान 51,000 बत्ता मोटियारा ने सरकारी महकमा और संगठना माए नौकरी लगन रा कागजात सौंपी चिया। प्रदेश माए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर माए रोजगार मेला लगार 1,100 बत्ता नौजवाना ने नौकरी लगन रा कागजात दिया चिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए शामिल थिया। ये मौके श्री वैष्णव नवी नौकरी लागण वालाओं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम रिसोच काम करण और देश बनावन रा काम माए पूरा मनु योगदान देवन री अरज कीनी। वह कहो कि रेलवे माए 1,60,000 बत्ता ओहदा माथे भर्ती रो काम चाल रियो है, जिन सारू 4 करोड़ बत्ता उम्मीदवार भाग आजमा रिया है। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार मेला माए केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोटियाराओं सरकारी नौकरी ने देश री सेवा रो जरियो मानता थका हर पात्र जना ताई सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण री भावनाओं काम करण बाबत कहो।
2: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली मित्रों, जब कोई देश कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
0: अजमेर माए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी 258 और बीकानेर माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 281 उम्मीदवार ने नौकरी लगन रा कागजात सौंपया। तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड राज्य रा दांडेवाला फील्ड माए नुआ गैस भंडार रो पतो लगायो है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि करीब 25,000 मानक घन मीटर

0: प्रतिदिन री रेटों प्राकृतिक गैस निकलबाऊ देशी ऊर्जा उत्पादन मजबूत बनैला। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहो है कि देश में तेल गैस री कोई कमी नहीं है और पेट्रोल डीजल री पूर्ति स्थिर है। कंपनी रे मुजब 1-22 मई बीच IOCL रा पेट्रोल री बिक्री माए 14% और डीजल री बिक्री माए करीब 18% री बढ़ोतरी भी। इन बीच तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल रा मोल माए और बढ़ोतरी करती नहीं है। ध्यान जोग है कि लारला 10 दिन माए तेल रा मोल माए तीजी दफा बढ़ोतरी करी ची है। लारला कुछ दिन माए करीब 5 रुपया प्रति लीटर री बढ़ोतरी भी है। केंद्र सरकार विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 रवारा माए जनतारी राय सारू मसौदा नियम जारी कीना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब कोई जनो हितधारक संगठन या संस्था 21 जून 2026 ताई मसौदा नियमों जुड़ी आपत्तियां या सुझाव दे सके है। विकसित भारत जी राम जी कानून 20 साल जूना मनरेगा रिठौड़ लाइचियो है। नुआ कानून रातेत 1 साल माए 100 दिन री मजूरी री कानूनी गारंटी न बधार 125 दिन करण रो प्रस्ताव है। विकसित भारत जी राम जी कानून 1 जुलाई सगला राज्यां और केंद्र रा राज वाला प्रदेशां माए लागू भै जावेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए सोमवार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू करियो जावेला। 5 जून ताई चलन वाला ई अभियान रे दौरान पानी बचावण जुड़िया काम करिया जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ई अभियान री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। मुख्य सचिव अहलकारा ने पानी बचावण री मुहिम जनता ने जोड़बा सारू कहो। ई अभियान री तैयारियां रातेत आज सवाई माधोपुर रा जिला कलेक्टर कानाराम ग्रामीण विकास डांग और पंचायती राज विभाग रा अहलकारा री मीटिंग लीनी और जरूरी हुकम दीना। प्रदेश माए जैव विविधता और पर्यावरण ने बचावन सारू विलायती बबूल ने हटाया जावेला। इन सारू पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज जयपुर माए अहलकारा सागे मीटिंग रे दौरान योजना बनार काम करण सारू कहो। श्री दिलावर बबूल री लकड़ी कोयलो बनावन री योजना बनावन बाबत ही हुकम दीना। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट 2026 परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू आज अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे परीक्षा ने निष्पक्ष साफ और सुरक्षित तरीकों करावन सारू संबंधित महकमा और प्रशासन ने मिलर काम करण बाबत कहो। मुख्य सचिव गड़बड़ी री शंका वाला परीक्षा केंद्र और जिला माए खास निगरानी राखण और जरूरी तादाद माए पुलिस रा जवान तैनात करण बाबत ही कहो। आ परीक्षा राज्य माए 611 परीक्षा केंद्र मत है। दोपहर पाछे 2:05 ताई ली जावेला। नीट री ई परीक्षा माए 2,00,000 विद्यार्थियां रे शामिल फेवन रा आसार है। मुख्य सचिव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रा बीकानेर रा प्रस्तावित दौरा री तैयारियां रो जायजो लेवन सारू ही अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे सरहदी जिला माए हिफाजत और निगरानी री व्यवस्था और असरदार बनावन रा हुकम दीना। डीग माए महिलावां और टाबरियां री हिफाजत सारू पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सड़कां बाजारां और कोचिंग सेंटर कने खास निगरानी राख रही है। SP कांबले शरण गोपीनाथ बतायो कि लड़कियां ने परेशान करण वाला रे खिलाफ ऑपरेशन डिकॉय रातेत महिला पुलिस सादा कपड़ा पहर कार्रवाई कर रही है। वे बतायो कि BNSS री धारा 170 रातेत बिना वारंट गिरफ्तारियां ही करी जा रही है।
1: जिले में जो कालिका पेट्रोलिंग जो टीम है वो अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रही है। जैसे बेसिक हेल्पलाइन जो होती है 1090 या 1098 1930 इस तरह से अलग अलग जो हेल्पलाइन है उसका अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंचा देना, साथ में जो सेल्फ डिफेंस है आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग है उसको भी अलग अलग स्टूडेंट्स को स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाके उनको देना, ये भी काम उनके द्वारा किया जाता है। राज का ऑफिस सिटीजन ऐप है, जैसे

0: हर महीने अगर आप देखोगे तो एवरेजन जो है वो 600 जो राजकोप एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करने का जो टारगेट है वो कालिका पेट्रोलियम टीम ले रही है और उसको पूरा भी कर रही है।
1: कॉलेज छात्रा पूजा बतायो के पुलिस री ओर खुद री हिफाजत री सिखावन देवनु कॉलेज जाते वक्त वा बत्ती हिफाजत महसूस कर रहे है।
2: यहाँ पर कालिका यूनिट है वो हमको गाइड करती है कि हमको जैसे घर से बाहर निकलते टाइम या जो कमेंटबाजी करते हैं छेड़खानी करते हैं उनको कैसे पुलिस तक उनकी सूचना देनी है उसके उसके लिए हमको एक ऐप भी बताया गया है राजकोप ऐप उसके थ्रू हम उनकी शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 1090 जिससे हम बाहर निकलते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत होती तो हम उसके थ्रू पुलिस को शिकायत कर सकते हैं।
1: अरे भाई मौसम प्रदेश का उगनी हल्का माए आज आंधी सागे भी हल्की बारिश हूँ गर्मियों थोड़ी साता मिली दोपहर पाछे सवाई माधोपुर जयपुर टोंक दौसा करौली भरतपुर कोटा और बूंदी समेत कई जिला माए बादला मंडिया रहा और आंधी चाली कठे कठे छांटो छिड़को भी हो तो कठे कठे हल्की बारिश हुई दूजी कानी राज्य रा आतूनी और उत्तराध हल्का माए तेज गर्मी रही। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2-3 दिन पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई और चढ़वारा आसार है जदक कई ठोड़ा लू बाजण री शंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित कराया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई दीतवार ने विचार बतावेला आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथ 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले राव सा 1-800-117-800 नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेरू सुन ले राव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो सरकारी नौकरियां जनतारी जिंदगी बेहतर और आसान बनावन रो खास जरियो तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसलमेर जिला रा दांडेवाला फील्ड माए गैस रा नुआ भंडार रो पतो लगायो प्रदेश माए पानी बचावन री मुहिम रा तेत सोमवार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू करियो चावेला और राज्य रा उगनी हल्का माए आंधी और हल्की बारिशों गर्मियों थोड़ी साता मिली कालू पारो ओजू चढ़बारा आसार इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266 मीटर यानी 125 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं शाम के 7 बजे हैं और आपको इंतजार होगा ग्रामीण परिवार सुनेंगे अब कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम नीमा बैसा राम राम
1: राम राम पेमा भाई राम राम
0: त्योर घर कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई ने अपनो राम राम
1: राम राम सा। देखो सर जिस तरह अपने कार्यक्रम रो टेम भी और चौपाल रे माते अपने देखो सब भाई किसान भाई और बहना सब भेड़ा भी गया है और देखो आप ही बात बात रही जानकारी देवा आने ने और लारे लारे देखो थके बच्चा धन भर रहा काम निपटी आया है तो सुख दुख री बात ही करा और अनारो मनोरंजन भी करावा जनू कहिए कि धन भर री थकान अपने दूर हुई जा और लारे लारे कुछ जान भी अपने मिल जावे सा।
0: सही कह रहा हो सा। देखो आपी बेटा हाँ चौपाल रा महीने और आज आपी बात करे महिला स्वयं सहायता समूह री तो महिला स्वयं सहायता समूह कई वेवे और इनको कई फायदो है आपी कणी त्रवण में शामिल वही सका और अपना भविष्य में कणी त्रवण में आपी काम कर सका ये सब जानकारी देवा सा।
1: बिल्कुल सा जटे अपने गाँव री जी लुगाया वेवे बनाने एक स्वैच्छिक संगठन वेवे अनमे कई अन्नो मुख्य उद्देश्य यो है कि सबरा सहयोग रे माध्यम गरीबी उन्मूलन करनो है और वित्तीय आत्मनिर्भरता यानी कि पया कोडरी जनान भी अपने जरूरत वेवे जनान अपने मली जावे और अने लारे लारे अण में महिला जो है जी अपने लुगाया माया बाया बिना है वना में आपनों खुद निर्णय लेवारी

0: शक्ति वेवे और वड़ी वड़ा ने कही है कि सशक्तिकरण बढ़ावो देनो है।
1: देखो सा एक समूह जो वेवे वंडे महीने गांव की 10-20 जो है सदस्य महिला शामिल वेवे और वे परिवार को एक सदस्य वे तो केवारो मतलब यो कि एक समूह महीने 10-20 परिवार की भागीदारी व्या करे और सब मिलन अपना वास्ते काम करे सा।
0: बिल्कुल सा और अनि में कही वेवे कि सब जी सदस्य वेवे वे या तो हफ्ता में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीना में एक बार अपनी बैठका राखे वणी बैठका में ये कही है कि एक निश्चित राशि वेवे कि भाई हफ्ता में 100 रुपया जमा कराना है या 15 दिन में 200 या महीना में 500 रुपया जमा कराना है तो भी सब कही है कि वर्णन पया लाइन भेड़ा करे और वना भेड़ा के दे थका पया ने साझा पूंजी के वे यानी कि सबरी पूंजी वेवे वा और जन्ने जरूरत वेवे के कंडे आड़ उब वेवे या कंडे खेती बाड़ी रा साधन खरीदना है वे कंडे मानधाज वेवे कंडे व्याम मांडा वेवे तो कंडे भी जरूरत री चीज अगर वने लेनी है तो वने ये स्वयं सहायता समूह इन्हें ऋण देवे और ऋण देवार लारे लारे ब्याज जो दर है वह बहुत ही कम वेवे सा।
1: सही कह रहा हूँ सा और यो काम जो देखो अपना गरीब परिवार जो है वना का साहूकार का महंगा ऋण जो मुक्ति दिलावनो है वना का जालू बचावनो है और छोटा जो उद्योग है सिलाई का काम है पापड़ अचार बनावना है अगरबत्ती बनावना है और हस्तशिल्प रो काम है अना सब उद्योग रा महीने वना ने मदद करनी है सा।
0: बिल्कुल सा और देखो अणु कही वेवे कि लुगाई रे हाथ में पया वेवे तो मना ने निर्णय करवारी क्षमता भी वेवे कि मारे मारे वाते कई हाउ है कई हाउ नहीं है अने लड़ लड़ देखो ये जो स्वयं सहायता समूह वेवे अणा ने सरकार भी सहयोग देवे सा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या एक योजना है जने तरत कही वेवे कि ग्रामीण गरीब परिवार वेवे मने स्वयं सहायता समूह में संगठित करियो जावे और वना ने कोई भी तरीका रो अगर भी उद्योग धंधो लगाई रहा जैसे सिलाई ही की रहा है या ब्यूटी पार्लर कोर्स करनो है या और भी कई भी अपने उद्योग धंधा लगाना है अचार पापड़ वड़ी या जेम रा बनाना है तो वनाने अनाने प्रशिक्षण देवे अगर जिन्हें नहीं आवे भी ने प्रशिक्षण देवे और लारे लारे वना ने मसीना कई भी सामान खरीद वाली बात है आर्थिक सहायता भी देवे सा।
1: सही कह रहे हो सर अपना राजस्थान री सरकार जो है महिला रा वास्ते राजीविका मका माध्यम जो है कुटीर उद्योग लगावरो काम कर रही वणा ने महिला ने जोड़वारो काम कर रही वणियों कही है कि वे देखो दो पैसे री आमदनी कर सके और समूह के रूप में एक सामूहिक रूप में भागीदारी निभाता दिखा काम कर सके सा।
0: देखो शुरुआत में समूह ने चलावा वाते सरकार री ओर एक छोटी शुरुआत री जो राशि वेवे वह दी जावे कि भाई अणु आप शुरुआत करो तो देखो यह सरकार री बहुत ही बढ़िया योजना है अपने लुगाई रे वाते तो अपने लुगाई ने या योजना रे तहत सब भेले वे इन पया भेला करो और अपने खुद रो विकास करो सर।
1: सही कह रहे हो सर अपना उदयपुर जिला री बात करा तो देखो जाडोल है फलासिया है गोगुंदा है सायरा है ये सब जगह जो आदिवासी क्षेत्र है वटे स्वयं सहायता समूह चली रहा है
0: बिल्कुल
1: और वटे महिला जो काम कर रही है देखो अपना आदिवासी अंचल की जो जड़ी बूटियां हर की चीजें वेगी वन हाँ। की उपज वेगी है और अपने जो पेड़ पौधों निकलो वाली चीजें है हाँ। और जो दरिया वनावरा काम वेगिया है अन्य तरह का काम कर रही और देखो आप सीताफल रो बहुत ही बड़ो काम है जने मैं कही कि स्वयं सहायता समूह का माध्यम जो है महिला सदस्य है वो सीताफल इकट्ठा करने लावे वनका सीताफल रो जो मौसम वे वणी दौरान
0: वन टाइम और देखो सा जटे आपी पे बाबा आपी देखा कि जटा होली रा दन आवे अपने तो आपी देखा कि या तो है कि झाड़ोल रे गुलाल है सा या हर्बल गुलाल है तो वी वना ने फूला ने इकट्ठा करीन वना ने गुलाल बनावे वी सब बेना और बेचे और वी हाथों हाथ विक जावे तो वणी भी वना बेना ने बहुत हारो मुनाफा मिले सा।
1: और जो सीताफल अटारो निकले वणी को पल्प जिने आप केवा वणी हाँ। वना निकालिन वो बहुत बड़ा शहरा महीने भी पहुंचाई रहा है और वणी घणी सारी मिठाई बनवा लागी
0: मिठाई भी बने वणी आइसक्रीम भी बने वणी रबड़ी भी बने तो वणी भी बहुत ज्यादा मांगे तो ये छोटे छोटे जो चीजा है अना रो उद्योग लगाई आप स्वयं सहायता समूह वणाइन उद्योग लगाई सको और सब यूनि के एक एकलो सब भेड़ा मिले नहीं मिले आप लगाई सको और अन्य मुनाफा कमाई सको
1: और देखो जेटे मुनाफो हुए वटे मेहता बेना सब राजी खुशी रेवे घर परिवार में आनंद रेवे
0: आनंद रेवे
1: जेटे आनंद री बात फेरी तो गीत संगीत भी आनंद आवे
0: बिल्कुल गीत संगीत आनंद भी आवे और दिन भर काम करे थकारी थकान भी उतर जावे सा।
1: तो सुनावा एक राजस्थानी गीत
0: बिल्कुल होना सा।

0: तो पेमा भाई, यो तो हुणियो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत। और देखो अबे अपने किसान भाइयों ने जानकारी देवा अपने मौसम री।
1: सही कह रहे हो साहब। देखो साहब, मौसम विज्ञान विभाग जयपुर मली लकी सूचना रे आधार पर कहवा कि आवा वाला दिना में जो है मौसम शुष्क रहे वाली संभावना वणी लकी है। हवारी गति जो है वह 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा रा वेगू पश्चिम दिशा में चालवा की संभावना है। अधिकतम तापमान 41-43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-27 डिग्री रही सके। सापेक्ष आर्द्रता की बात करें तो न्यूनतम 27-36% और अधिकतम जो है 8-11% तक रहवारी संभावना बनी लिखी है साहब।
0: बिल्कुल सा। और जटे खेती बाड़ी की बात करें तो खेता में अब आपने बिल्कुल खाली है खेत और आपकी गहरी जुताई बनारी कर दी है। और अगली फसल रे बात है अपने किसान ने सलाह दी जावे कि भी मिट्टी रो परीक्षण कर ले कि भाई वनारे खेत में कई फसल वावनी है कई नहीं वावनी है। तो वनडे रे बात है अपने कई करनो कि 30 सेंटीमीटर गहरे तक मिट्टी रो नमूनो इकट्ठो करनो है। और जो भी अपने प्रमाणिक संस्था है वटे जाई नहीं अपने सरपंच साहब ने या अपने पंचायत में जाइन पूछ लेनो के

0: કરા તો અણીમે પ્રહો ઓર ફલી છેદક કીટ લાગી જાવે. તો વણને વંચા વારે વાત હે આપણે પ્રહોને એકઠા કરીને આપણે વણાને નષ્ટ કરી દેના, જલાઈ દેના. ઓર યદી કીટની સંખ્યા જ્યાદા આવે તો સ્પિનોસેટ કીટનાશી 48 EC 1 મિલીલીટર પાણી મેં તી દરુ આપણે અવન મેં મિલાઈ લેણો ઓરડનો છિડકાવ કરનો. છિડકાવ વનાન કરનો જનાન આસમાન સાફ વેવે, વાદળા ની વેવે ઓર હવા ભી ની તેજ હવાની ચાલતી વે, વનાન અંડો છિડકાવ કરનો એસા.
1: और मूंग री खेती अपना किसान भाई करे तो वणान केवा कि देखो पाणत्री टेम है, ई टेम मूंग भी फसल में फूल आवा की स्थिति में जो फली बनवा लाग जावे, अणी अवस्था देख तो देखा अपन जो है अपन नमी की कमी जो है नी वेवा देनी और पैदावार जो घट जावे अणी स्थिति को पूरा ध्यान रखना है. हल्की सिंचाई अपने जारी रखनी और गर्म मौसम की टेम पे देखो अपना थ्रिप्स को प्रयोग प्रकोप जो दिखाई देवे वो बढ़ जावे तो अणी स्थिति में अपन नियमित रूप जो है निगरानी रखनी चाहे सा.
0: बिल्कुल सा. और वेलड़ा वाली सागानी जटे बात करा तो वणा में कही है कि भ्रंग कीट और अंकुरित व नई पत्तिया ने खाइन वणा ने फसल ने नुकसान पहुंचावे. तो अन्य रोकथाम रे बात है अपने कार्बेरिल 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर दरु सुबह या हांजे अपने भूरकाव करनो. और देखो सा तावड़ो नरो तेज पड़ रो है तो अपने खुदरो किसान भाया ने काम करता थका दने ध्यान रखनो है, लेकिन अपने ढांडा चोपरो भी ध्यान रखनो है. मना ने टेम टेम पे पानी पावनो है और सुबह 9 बजे लगन और हांजरी 4 बजे तक ढांडा चोपो कोई भी काम नहीं लेनो है. वना ने छाया में उबा करना है और टेम टेम पे देखो आपने प्यास लागे तो वना ने पानी बताओ तो रहनो, पानी साफ और स्वच्छ वेणो चाहे सारा.
1: देखो सा गर्मी री टेम पे कही है कि हरा चारा की कमी आम बात है तो अणी स्थिति में अपना हरा चारा वाली फसल जो है ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, अणा की बुवाई करण जो है बंदोबस्त करनो चाहे सा.
0: बिल्कुल सा. और अणा सब बातरो ध्यान अगर अपने किसान भाई रखेगा तो देखो आपने जानकारी तो आप यूज देवा कि पहले भी हावचेत रहे तो भी किसान भाई सब हावचेत रहेगा तो उन्होंने कड़ी तरीका री कोई भी समस्या रो सामनो नहीं करना पड़ेगा.
1: सही कह रहे हो सर. आप भी ध्यान रखा कि देखो किसान भाई जो पूरा ध्यान रखे तो वहां के कड़ी तरह की तकलीफ नहीं हुए और तकलीफ नहीं हुए तो निराहत देखो अपना जीवन जीवता दिखे जो आप आनंद मंगल करा हाँ और घर में जो है आप गीत संगीत और माहौल भी वहीं दिखो रहे.
0: बिल्कुल सर.
1: कार्यक्रम आगे बढ़ावा और सुना एक राजस्थानी गीत.
0: बिल्कुल होना सर.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: वाते अपने ढांडा चौपार अपने घर बार रे वाते नरिहारी योजना बनावे है। और देखो बड़ी मु एक योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना।
1: सही कह रहे हो सर, अपने राजस्थान सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील यह योजना है, जंडो नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। और अणी को मुख्य उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटना कटे वे जावे, अपने घायल जो वे जावा हादसा महीने तो अणी टाइम पे जो है अपने दुर्घटना पहली जो अपने जो एक घंटो व्या करे वो कतरो महत्वपूर्ण है अन्ने ध्यान में रखता दिखे जो घायल है वरना अस्पताल पहुंचाणो वंडी जान बचाव रो प्रयास करनो है सर।
0: बिल्कुल सर, अणी योजना री सब बड़ी बात यह है कि अबार अटनो जो नाम बदल दीदो है और अणी योजना रो नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना कर दीदो है। तो अणी में कई वेवे कि जो कोई भी एक्सीडेंट पे कंडो भी और अगर कोई भी व्यक्ति विने टेम पे अस्पताल पहुंचाई देवे वणी व्यक्ति ने पहली तो 5,000 रुपया मिलता, लेकिन अबे 10,000 रुपया मिले लारे लारे विने एक प्रशंसा पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भी दियो जावे सा।
1: और दुर्घटना महीने घायल व्यक्ति जो है वो ने देखो कि राज्य या पचे अणी श्रेणी का जो वे तो नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल महीने शुरुआत में देखो निःशुल्क उपचार मिले और 72 घंटा तक आपातकालीन स्थिति में जो है इलाज वरने पूरी तरह जो है निःशुल्क मिल जाए करे सा।
0: और देखो सर, पहली तो कही है कि कटे भी एक्सीडेंट हुए तो कहीं भी हुए तो मनक डरप था कि भाई अगर इन्हें अस्पताल ले जावांगा तो पुलिस वाला अपने पूछेगा न घड़ी घड़ी अपने पुलिस स्टेशन जानो पड़ेगा या कोर्ट कचहरी में जानो पड़ेगा, असो नहीं ऐसा। अबे अणी कानूनी झंझटू मुक्ति वेगी है और अणी योजना रे तहत मदद करवा वाला ने व्यक्ति ने पुलिस न तो अस्पताल लाएगा न ही कोई पहचान पत्र वंडो लेगा न ही कोई पूछताछ करेगा सा।
1: सही कह रहे हो सर, घायल ने जो आप अस्पताल पहुंचावा तो वो शुरुआत को जो एक घंटो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्या करे। सड़क दुर्घटना महीने घायल व्यक्ति ने जल्दी जल्दी जो है नजदीकी अस्पताल पहुंचाओ जिन्हें आप देखो ट्रोमा सेंटर कह सका, क्योंकि हादसा में जो घायल वे वन को सबो पहली इलाज ट्रोमा सेंटर में व्या करे। तो सरकारी अस्पताल रे महीने मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल रे महीने ट्रोमा सेंटर जिते वणियो लोग है वटे अन्ने ले जाए आप जो इलाज इनको कराई सका सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे आप बात करी की विने अस्पताल ले जानो, अस्पताल ले जाई ना अपन वटे छोड़ीस नहीं देनो वटे कोई डॉक्टर वे स्टाफ वे मनाने विने हुपीन पचे आवनो है। और आपने अगर कोई भी प्रोत्साहन राशि अगर आप प्राप्त करनो चाहो कि भाई माने ये पयो मिलनो चाहे इन्हें लेन आयो तो वटे आप अपरो स्वेच्छाओ अपरो नाम मोबाइल नंबर बैंक रो खाता रो विवरण जो भी वे वटे मौजूदा स्टाफ ने आप वटे लिखाई सको। और पचे कई वे की जो डॉक्टर वेवे वटारा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेवे वी कई करेगा यो सत्यापन करेगा कि आप इन्हें गंभीर स्थिति में ले गया हा और टेम पे नहीं लाता तो कहीं भी वे सकते हो सा।
1: और यदि सत्यापन आप ही करा तो अणी प्रक्रिया महीने चिकित्सा या वजह स्वास्थ्य विभाग की तरफ जो है 10,000 रुपए के सम्मान राशि सीधा अपना बैंक खाता महीने डाल दी जावे। तो यो देखो सम्मान जो है बहुत ही बड़ो सम्मान है और इनाम जो है कण की जान बचाव ऊपर है। तो अपने यू प्रयास करनो है कि अगर हादसा महीने कोई घायल भी हो है तो वन की जल्दी जल्दी विना अस्पताल पहुंचे वन की जान बचाव प्रयास करनो है।
0: बिल्कुल सा, यो तो करनो ही है। और लारे लारे ये बात भी ध्यान रखनी है कि यह जो प्रोत्साहन राशि खाली सड़क दुर्घटना रे वाते ही है सा। अगर आप कोई लड़ाई झगड़ो वे गयो या कोई बीमारी वे गई यार आपस में कोई लड़ गया वीने लेन जाओगा तो वनडे कोई भी राशि नहीं मिलेगा सा। और यदि घायल ने अस्पताल पहुंचावा वाला एक दो व्यक्ति या वणियों ज्यादा है तो यह 10,000 रुपया जो राशि है वह सब में बराबर बांटी दी जावे।
1: एम्बुलेंस कर्मचारी और ड्यूटी पर रहने वाला पुलिस कर्मी और अस्पताल का जो कार्मिक है अणी योजना महीने इनाम राशि को लाभ बनाने नहीं मिल सके। यह राशि जो है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ने मिल सके जो सड़क पर चालता दिक्कत कण की जान बचाव वास्ते प्रयास की दो है।
0: बिल्कुल सा। तो या तो ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। और देखो आगे और भी नरी हरी जानकारी देवा का अपने किसान भाई ने और बहना ने, लेकिन पहली हुणायो बहुत ही बढ़िया राजस्थानी गीत।

0: तो निर्मला भाई साहब, बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोकगीत सुनाया सर। कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा और अबे जानकारी देवा महिला सशक्तिकरण के बारे में।
1: बिल्कुल सा। और देखो, महिला सशक्तिकरण रे जटे आप ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो जी लुगाया आपणी बेना है, माया बाया है, बेन बेटिया है, तो अणा ने जुड़ अणाऊ जुड़ियों तक तो हर छोटो बड़ो निर्णय लेवारी अणा ने स्वतंत्रता देनी चाहे, वणा ने आर्थिक रूपों, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक रूपों मजबूत वणाणो महिला सशक्तिकरण रो उद्देश्य वेवे। क्योंकि जत्ते एक महिला सशक्त वेगा तो एक व्यक्ति ने पूरो परिवार, पूरो समाज और पूरो देश सशक्त वेगा और प्रगति पत्र पे अग्रसर वेगा सर।
0: सही कह रहे हो सर। अपना देश में देखो, भारत जो है वो विकासशील देश है और विशेष तौर अपना गांव जो है, अब ग्रामीण क्षेत्र जो है वणी में, और महिला सशक्तिकरण की जो भूमिका है अंडे महीने अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वही जावे। और आप ही देखा कि कुछ बिंदु जो है व्या करे जनियो आप महिला सशक्तिकरण अपना देश में और साबित कर सका, तो वणी में कई एक सबों पहला बिंदु आवे आर्थिक आत्मनिर्भरता। अब आर्थिक आत्मनिर्भरता कई व्या करे महिला सशक्तिकरण में अन्य किस तरह बढ़ाना पड़े।
1: बिल्कुल सा। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब यो है कि भाई आप जो कोई भी माया माया लुगाया है वणा ने करने को रुपया नहीं मांगना पड़े, यानी कि वणा ने खुद रो खर्चो भी खुद चले सके। अन्य बात देखो, पहली आपी जानकारी दीदी ही बेना ने कि भाई अथाने खुद रे खर्चो वेवे या कई भी काम वेवे, तो स्वयं सहायता समूह री जानकारी दीदी, तो वणने माध्यमों भी बेना आपने छोटो मोटो कई भी व्यवसाय करीने आर्थिक रूप सशक्त हो सके। अन्य अलावा देखे खेतीबाड़ी रा जतरा भी काम है वणमे आपने कौशल विकास रे माध्यमों या तकनीक रे माध्यमों, डिजिटल साक्षरता रे माध्यमों, छोटा छोटा लघु जो उद्योग वेवे वणारो प्रशिक्षण ले सके और उद्योग लगाई सके और अर्थव्यवस्था में आपनो योगदान दे सके सर।
0: और देखो सर, रोजगार का अवसर की बात करना तो अपना देश रो महीने मनरेगा जो योजना चले वन के माध्यम को एक महिलाएं जो है वह भागीदारी निभावे, स्थानीय स्तर पे वणा ने रोजगार जो है वो उनको बंदोबस्त व्या करे और सुरक्षा रोजगार के वणा के वही सके। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना तो देखो, शिक्षा में बेहतर स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की नींव जो रखी थकी है। शिक्षा में देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है अणके माध्यम कदम आगे बढ़ावता दिखा अपना साक्षरता बढ़ रही है, बल्कि महिला जो है अपना अधिकार के प्रति जागरूक व्यती जा रही है सा।
1: बिल्कुल सा। और देखो, जटे बेटी पढ़ाओ री बात करी या बचाओ और पढ़ाओ री, तो अन्य माध्यमों अबार देखो आप गांव में कि नरीहारी जो आपानी बेटियां है वी स्कूल में जा रही है और आपनो नाम रोशन कर रही है। और अबार अपी गांव में देखा कि नरीहारी भणी पढ़ी बहना भी आई रही है, वे छोटा मोटा काम भी कर रही है और लारे लारे खेती बाड़ी कर रही। और पोषण और स्वास्थ्य जटे बात करा तो जी महिला है वनारे कही है कि नवजात बच्चा है या पचे जी अपनी बेना है वनारे स्वास्थ्य में खून री कमी भी वही जावे, नवजात बच्चा री भी मृत्यु वही जावे, तो अन्य वास्ते आपने पोषण और स्वास्थ्य भी योजना चले रखी है जनयू कही है कि वनारे जीवन स्तर में सुधार भी रोई सा।
0: और सामाजिक और कानूनी अधिकार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अणी की बात करें तो महिला जो है अपना समाज में इन्हें बराबरी को दर्जो है, सुरक्षा वाणा अनिवार्य रूप दी जा सके। और रूढ़िवादिता और मुक्ति की बात करें तो बाल विवाह, पर्दा प्रथा और लिंग भेद जैसी जो स्थिति है समाज में वर्ण में सुधार वारा वास्ते, सामाजिक कुरुतियां ने खत्म करवारा वास्ते जो यो काम वेरो है। कानूनी जागरूकता की बात करें तो महिला महीने

0: घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और संपत्ति संबंधी अधिकार जो है वन के बारे में जो है जागरूकता दी जा रही है और महिला जो है निडर वेन अपनों हक मांग रही है।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि जटे आप शिक्षा की बात कर रहा था, शिक्षा जिस तरह शिक्षा बढ़ी है, विस्तर विस्तर महिला अपन एक हक रे प्रति जागरूक वेख रही है। और राजनीतिक भागीदारी जटे बात करा तो पंचायती राज व्यवस्था में जी महिलाएं ने वे आरक्षण रे वास्ते बहुत ही बड़ो बदलाव है। आज गावा में महिला जो है सरपंच है, वार्ड पंच है और अन्य अलावा विकास रे गांव रे विकास रे नीतियां भी आपने जो लुगाया माया बया है भी खुद तय कर रही है। और कटे भी पंचायत रही अगर सभा वे कहीं भी वे तो वटे महिलाएं बढ़ चढ़ना हिस्सों ले रही है सर।
0: और महिला सशक्तिकरण काली एक दिन रो आंदोलन नहीं है बल्कि यो एक निरंतर चालवा वाली प्रक्रिया है। अंडे महीने सरकार की योजना का लारे लारे समाज में सोच बदलाव और पुरुष जो है वहाँ के सहभागिता देखो जरूरी व्या करे है। और अभी देखो महिला सशक्तिकरण है कहीं विशेष पहलू के माध्यम या योजना का और कानून अधिकार ग्रामीण विकास के माध्यम जो है समाज में बदलाव ला सका और विस्तार जो आपकी महिला सशक्तिकरण ने दे सका सा।
1: बिल्कुल सा, तो देखो या तो ही जानकारी महिला सशक्तिकरण के बारे में। और देखो अबे हुना एक और राजस्थानी गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो निर्मला वैसा राजस्थानी लोकगीत सुनियो सा और अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और जानकारी देवा आज रो दन कई खास है क्योंकि देखो अपना कार्यक्रम में मैंने आप ज्ञान रिवाज जो हमेशा ले नवा तो आज रो दन जो खास वे आज का दन को कई इतिहास वे और आज का दन को महत्व कही है अणी की जानकारी देवा क्योंकि अपना गाँव रहा महीने अपना बच्चा पढ़वा वाला जो है या सरकारी जो नौकरी रे वास्ते आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें तो ये सब जानकारी जो है अपना ने वेणी चावे तो अंडे वास्ते कही आज जो दिवस है आप विश्व कछुआ दिवस आज का दिन मनाया जावे और विश्व कुश्ती दिवस भी आज मनाया जावे तो ये दो दिवस की जानकारी आज आप ले आया हाँ सा।
3: तो देखो आज आप 23 मई यानी कि आज रे दिन विश्व कछुआ दिवस मनाई रहा और जनो उद्देश्य यो है कि वना ने प्राकृतिक आवास और संरक्षण ने लारे लारे लोगों ने भी जागरूक करना है। तो पेमा भाई कतरे जाना आप कटे गया वांगा तो आप कंडे घर में देखे हुए

0: गाय के भी कछुआ पाले है नहीं सा। और कटे व्याह मंडा में या कड़ी भी होटल में कटे भी जावा तो वो बड़ा बड़ा कछुआ ले रखे और बनाने मतलब दूसरा ने दिखावे और करे। तो यो अन्य बातें कही है कि यो वनाने बिल्कुल ही प्राकृतिक वातावरण में राखनो, क्योंकि घर का वातावरण में वनाने संरक्षण नहीं मिले। तो अणि वाते अणि दिवस री शुरुआत 2000 में अमेरिकी संस्था अमेरिकन टॉर्टोइज रिसर्च ने की दी ही। और आज जो जो दिवस है दुनिया भर रहा पूरा संरक्षण में महत्वपूर्ण अभियान में शामिल भी हो।
1: सही कह रहा हूँ सा, कछुआ जो जीव है धरती रे माते प्राचीन जीवा की गिनती में आवे सा। और वैज्ञानिक कहवे कि लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पे यो जो है कछुआ नाम को जीव है मौजूद है। और जीव जो यो है वो जल और पर्यावरण संतुलन बनाए रखवार वास्ते बहुत ही बड़ी भूमिका निभावे। नदी रे महीने, तालाब रे महीने, समंदर रे महीने, देखो जो कछुआ जो है अपना जो मृत जलीय जीव है, शैवाल है, जैविक अपशिष्ट है, अणी ने खावारो काम करे और जो पानी रे महीने साफ करवारो काम करे। तो अणी हिसाबो कही कि जल स्रोत की सफाई कर्मी आप अन्य कही सका सा।
0: बिल्कुल सर। और कछुआ रे हाँ में अगर आप खतरा री अगर बात करा कि भाई यो दिवस मनावनो अपने क्यों जरूरी पड़ गयो, तो अन्य बात है कछुआ रे हाँ में नरे यारा खतरा है। देखो कछुआ रे अस्तित्व रे बात है प्लास्टिक रो जो प्रदूषण है, नदिया और समुद्र रे तट रो दूषित वेणो है, अवैध तस्करी है, शिकार और तटीय क्षेत्र में अंडो बढ़नो है, निर्माण बढ़ रहा है, अंडा सब खतरा रे कारण। और समुद्र में कतरी थकर आप देखियो है कि प्लास्टिक फेंके। और बनियो कही है कि ये जो आप जैसे बात कि भी ये सब निकले है तो कछुआ मनाने भोजन समझ ने निगल लेवे, जणियो मनारी मृत्यु भी वही जावे।
1: सही कह रहे हो सर। अपना देश रे महीने भी देखो भारत जैव विविधता में का लिहाज जो कछुआ है वणा के महत्वपूर्ण केंद्र है। अपना देश में लगभग 30 प्रजातियां का जो है मीठा पानी में रहने वाला कछुआ, 5 जो है समुद्री कछुआ प्रजातियां पाई जावे। और जना को देखो कि अपना देश में अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं वणा को क्षेत्र का हिसाब अलग अलग महत्व है सर।
0: और देखो सा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसा राज्य में कछुआ संरक्षण में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभा रहा है। अंडे लावेला रे उत्तर प्रदेश में नमामि गंगे परियोजना के तहत भी कछुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया है सा।
1: सही कह रहे हो सा, ये बहुत ही बढ़िया जानकारी जो विश्व कछुआ दिवस की दीदी। और लारे लारे जो आज दूसरा दिवस आप मनाई रहे हैं विश्व कुश्ती दिवस तो आने के बारे में जानकारी दे सा।
0: बिल्कुल सा, विश्व कुश्ती दिवस जो कि आज 23 महीने आज ही है सा। और अन्य जो प्राचीन और लोकप्रिय, क्योंकि देखो सा अपने प्राचीन भारत में जटे आप बात करा तो जिन्हें इन्हें दंगल कहता है नहीं सा। और धीरे धीरे पचड़नो कुश्ती रो नाम भी हो। और अनमे कही है कि खिलाड़िया ने योगदान देवारे वाते सम्मान देवारे वाते क्यों जावे। कुश्ती खाली एक खेल ही नहीं है बल्कि अनमे अनुशासन, ताकत, रणनीति और मानसिक दृढ़ता रो प्रतीक माने जावे। यानी कुश्ती में कई वे की ताकत रे लारे लारे फुर्ती रो भी बहुत ही वेणो जरूरी है।
1: अब विश्व कुश्ती दिवस क्यों मनाया जावे अंडी जानकारी देवा तो देखो कुश्ती खेल के प्रति युवा ने प्रेरित करवारो काम करे है। प्रारंभिक और जो परंपरागत रूपों आधुनिक कुश्ती जो है वण की शैली ने बढ़ावा रो काम वही रो है। खिलाड़ी जो है वण की उपलब्धियां है, वण को संघर्ष है, वण ने सम्मान देवारो काम है। और अपना जो शरीर की जो बनावट है वण ने सही राखवारो काम है। अनुशासन और खेल भावना ने संदेश देवारो काम है। और ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल जतरा व्या करे वण में कुश्ती को महत्व ने बढ़ावा रो काम भी यो दिवस करे सा।
0: बिल्कुल सा। और अगर आपने भारत में कुश्ती री परंपरा जटे बात करा तो भारत में परंपरागत रूप कुश्ती ने मिट्टी रो खेल किया जावे। और अबार भी जटे भी अपने भारत में अगर आप ग्रामीण इलाका में या आसपास इलाका में जावा तो वटे कुश्ती रो जो वो वेवे वटे मिट्टी वीची थकी वे बारीक महीन मिट्टी वीची थकी वे। और गांवारा जो अखाड़ा उलेन अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अपने भारतीय पहलवान अपनी पहचान बनाई है। जन्मे की नरहियारा अखाड़ा आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है और भारत में है सा।
1: और देखो प्रमुख विशेषता की बात करना तो देखो हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और अपना राजस्थान रमाइने कुश्ती को प्रमुख केंद्र है। और पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति आज भी ग्रामीण भारत में जो है जीवित है। भारतीय कुश्ती में देखो देशी दाव पेच लगाव रो काम है, शारीरिक अभ्यास को काम भी को विशेष भूमिका रखे। दूध, घी, बादाम और पौष्टिक आहार पहलवाना ने जो है दिनचर्या को हिस्सों बने यो भी काम में व्यवसाय।
0: बिल्कुल सा। तो यह तो ही आज विश्व कछुआ दिवस और विश्व कुश्ती दिवस रे उपलब्ध में जानकारी। लेकिन जावर पहली आप ही एक और गीत जाता जाता अपने किसान भाई और बहना ने हुनाता जावा सा।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम खेती और घर। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। और आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का प्रोग्राम। जिंदगी के रंग तभी जमते हैं जब कोई रंग जमा कर जाता है। फिल्म का नाम नसीब। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाजें।

चलिए, रंग भी जम गया और चक्कर भी चल गया, लेकिन ये सब तभी होता है जब कोई याद करने वाला आपके साथ हो। अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ें। फिल्म है नरसिम्हा।

कुछ क्षणों के लिए बिजली व्यवधान के चलते आप इस नगमे को पूरी तरह से नहीं सुन पाए, जिसका हमें खेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रंग भी जम चुका था और बातें भी हो चुकी थी जान देने की, लेकिन बात वहाँ आकर टिकती है कि जो तेरा मेरे बीच में जो कुछ है वो क्या है, जरा सुन लीजिए।

0: और दोस्तों, जब आंख फैलती है तो फिर फिसलने का डर तो रहता ही है।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

फिल्म संगीत का ये अंतिम सौगात आपके लिए पेश है, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दुनिया,

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमरीका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती

0: हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047 जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी।

0: वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानव से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States' approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China. And Indian grapplers Suraj Vashishth and Sagar Singh clinch silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. Jaishankar and NSA Ajit Doval were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors, including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared the US perspective on various regional and global issues, including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. He requested Secretary Rubio to convey his warm greetings to US President Donald Trump and said he looked forward to their continued exchanges. Secretary Rubio is on a 4-day visit to India to take part in the Quad Foreign Ministers meeting on the 26th of this month. U.S. Secretary of State Marco Rubio today said that India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific. Inaugurating the U.S. Embassy Support Annex building in New Delhi, Mr. Rubio said this is evident in the $20 billion that Indian companies invested in the United States and in India signing up for Pax Silica.
2: Expanded commercial ties now with more than $20 billion in investments. $20 billion in investments from Indian companies in the United States. We've deepened a security partnership through military exercises in the Indo-Pacific. And of course, as part of that, we recognize that an orderly and a secure consular system

और इस गज़ल के साथ ही आज का हमारा सुगम संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से विज्ञान भारती, प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुंच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुंचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थी। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया

0: के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग अल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4% कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिन्दुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी वासिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीडअप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान

0: करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मेटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ अल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या एक नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें NRF से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
3: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी की गिनती शुरू हुई और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ

0: एनवायरमेंट के द्वारा व्हाट्सएप बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
2: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट शेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असंरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
3: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिक पाएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, पोषक तत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं, इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
1: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अल्गी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
4: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
2: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
5: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाइकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीक नजदीकी तारे हैं उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है। तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है उसको स्टडी करने के लिए एक डायनमो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर

0: नमो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था। हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी सचित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवंत साक्षी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी शून्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण

0: शुद्ध गांव खेतों खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका देती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आगे की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सब में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सब के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, या सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे आनंद सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना करते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष, जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं और हमारा अगला प्रोग्राम होगा दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार।
2: ये आकाशवाणी
1: टी शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार
2: होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के साथ संगत कर रहे हैं। वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही विल बी अकंपनीड बाय विद्वान तिरुविरा विजु एस आनंद ऑन वायलिन, विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार ऑन द मृदंगम एंड श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार ऑन द घटम।
0: श्री चंगनाश्री माधवन नंबूदरी अपने गायन की शुरुआत स्वाति तिरुनाल की रचना परम पुरुषम से कर रहे हैं, जो राग ललित पंचम पर आधारित है और खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री सीपी माधवन नंबूदरी बिगिंस हिज वोकल रिसाइटल विद परम पुरुषम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ स्वाति तिरुनाल इन द राग ललित पंचमम सेट टू खंड चापू ताल।

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्ले की एक कृति श्री बालकृष्ण पाहिमाम जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्ण पाहिमाम अ कंपोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्ले इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है.
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री.

0: ये था तनियावर्तनम। मृदंगम पर थे विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: That was तनियावर्तनम played on the मृदंगम by विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार and on the

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottiyam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि यह भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह

को एतजान कालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Punjab Kings made 200 for 3 in 18 overs. Earlier, Punjab Kings won the toss and opted to bowl. Put into bat, Lucknow Super Giants posted 196 runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा आप यहीं समाप्त करते हैं। पहली सभा लेकर कल सवेरे 5:55 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।